मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्स और FM 101.6 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोलामारू चैनल है। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 7वीं तिथि, तदनुसार 28 मई सन 2026, प्रातः के 5:57 होने को हैं। हमारी आज की पहली सभा आरंभ होती है।

0: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रातः के 6 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित ना रहे बल्कि नियमित निगरानी, जन भागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक में प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने में सहयोग करेगी।
1: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जो सरकारों के एजेंसीज राज्य में एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिमुनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी, तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगे। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का 3रा राज्य होगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दिए जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है, जो उत्कृष्ट सेवा, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति समर्पण के लिए प्रदान किया जाता है। गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ चौकियों और कंटीले तार की बाड़ लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि बीएसएफ को सौंप दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए कदम उठाया गया है। राज्य सरकार ने पहले चरण में कई जिलों में भूमि हस्तांतरित की है। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2,217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जिसमें से लगभग 1,600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में खरीफ अभियान के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा, राज्यों की भागीदारी, सामूहिक विचार विमर्श और प्रस्तुतियां शामिल होंगी। ईद उल अजहा आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। विभिन्न राज्यों से ईद मनाए जाने की खबर मिल रही है। उत्तर प्रदेश में भी प्रशासन ने बकरी ईद के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक व्यवस्था की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद उल अजहा की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि ये त्योहार भक्ति, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। उन्होंने नागरिकों से समाज में प्रेम और सद्भाव को बढ़ावा देने के संकल्प को मजबूत करने का आग्रह किया। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए। सनराइजर्स हैदराबाद 196 रन ही बना सकी। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन बनाए। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कल क्वालिफायर 2 मैच में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। इस मैच की विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेंगी। फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं आज का विचार। विषय है ईद उल जुहा। वाचक स्वर अब्दुल कयूम का है।
3: या बकरीद भी कहा जाता है। इसको ईद कुर्बान इसलिए कहा जाता है

हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:10 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। पहले स्तुति अनूप जलौटा के स्वर में।

तन के भीतर पांच लुटेरे डाल रहे हैं डेरा। ये कौन है पांच लुटेरे जो दिन रात हमें लूटा करते हैं और हमें मालूम नहीं होता ये हमें लूट रहे हैं और हम इन्हें अपने साथ रखते हैं हमेशा। तो इन्हें पहचानना।

हरिओम शरण नंदिनी शरण और साथियों की गई इस भक्ति रचना के साथ ही आज का वंदना कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है रामचरितमानस गान का सस्वर पाठ। इस पाठ में आज आप सुनेंगे

मुनि याज्ञवल्क्य ने ऋषि भरद्वाज को राम कथा सुनाते हुए पार्वती की कठोर तपस्या का वर्णन किया। शिव पार्वती के विवाह के प्रसंग में उन्होंने संक्षेप में कार्तिकेय के जन्म की कथा भी सुनाई। शिवजी का चरित्र सुनकर मुनि भरद्वाज अत्यंत प्रसन्न हुए। उस कथा को आगे सुनने की उनकी लालसा और भी बढ़ गई। ये जानकर मुनि याज्ञवल्क्य अतिशय प्रेरित हुए, बोले, शिवजी के चरणों में जिनकी प्रीति नहीं होती उन्हें श्री राम की कृपा भी प्राप्त नहीं होती।

रामचरितमानस गान के साथ स्वर पाठ में अभी आपने सुना बालकांड के दोहा संख्या 103 के पहले छंद से दोहा संख्या 105 की अंतिम चौपाई तक का पाठ। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:40 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

शाम 4 बजे हमारी विशेष सभा आरंभ होगी कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स से। ये कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

शाम 4 बजे हमारी विशेष सभा आरंभ होगी कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स से। ये कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

रात 10 बजे हम आपको सुनवाएंगे प्रांतीय नाटक। जिले की चिट्ठी आप सुन सकते हैं शाम 6:40 पर और सिंधी कार्यक्रम का प्रसारण होगा दोपहर 12:10 पर। ये कार्यक्रम जयपुर केंद्र से रिले किए जाएंगे। सुगम संगीत का आनंद आप ले सकते हैं रात 9:30 पर और शाम 7:45 पर। ईद उल जुहा पर रेडियो रिपोर्ट आप सुनेंगे रात 8 बजे। वाचक स्वर महेश उपाध्याय का, प्रस्तुति रेवत राम लेघा की और संयोजन अमित सिंह का होगा। ग्रामीण श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम ग्रामीण जगत शाम 7 बजे। कार्यक्रम में चर्चा के विषय रहेंगे अधिक उत्पादन के लिए कार्बनिक खादों का प्रयोग, स्वस्थ जीवन शैली के सूत्र, गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना, मानसून का गर्भकाल है नौतपा। इसी के साथ आप सुनेंगे लोक संगीत। आज का कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे कुंजीलाल स्वामी और संदीप कुमार पारेख। युवा श्रोताओं का कार्यक्रम होगा युववाणी शाम 5:05 पर। आज की बात का विषय है साइबर बुलिंग से बचें। इसी के साथ साथ वी डी सावरकर जयंती, संक्रामक रोग, जंतर मंतर, अक्षांश, देशांतर के बारे में लघु जानकारियां दी जाएंगी और फिल्म संगीत सुनवाया जाएगा। आज का कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगी पूजा रंगा और दिशा भाटी।

दोपहर 1:05 पर सुनिए कार्यक्रम घर आंगन। कार्यक्रम में चर्चा के विषय रहेंगे आत्मरक्षा के आधुनिक गुर, ई कॉमर्स के जरिए हस्तशिल्प को बिक्री, वीडी सावरकर जीवन दर्शन में मातृभूमि, गर्मी में त्वचा और बालों की देखभाल, ईद उल जुहा। इन चर्चाओं के साथ आप सुनेंगे लोकगीत। आज का कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगी संतोष चारण और रामा छंगानी। एनसीईआरटी का स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम उमंग आप सुनेंगे सुबह 9:30 पर। सौरभ कार्यक्रम का समय रहेगा सुबह 8:30। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे ईद उल जुहा त्याग और बलिदान का पर्व। इस विषय पर एक वार्ताकार हैं कमर नियाज मोहम्मद।

0: यह था हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलमारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:45 हुए हैं। खेती की बातें कार्यक्रम में आइए सुनते हैं। मोटा अनाज उत्पादन की ओर बढ़ता भारत, इस विषय पर अश्विनी व्यास की ये वार्ता।
1: किसान भैया राम राम। आज आप बात कर सा मोटे अनाज रे उत्पादन बढ़तो भारत। तो मोटो अनाज को है वो शरीर वास्ते बहुत ही लाभदायक है। मोटे अनाज रे मायने जई, बाजरो, जो, रागी, सावो, कांगली आदि कई तत्व है जिकाने मोटे अनाज रे मायने शामिल करयो गयो है। और वो मोटो अनाज सर्दी रे मायने भी शरीर ने सही रखे, गर्मी में भी ठीक रखे और बरसात रे मौसम में भी शरीर ने पूरा पोषण दे सके।

0: ई हिसाब सु अगर आपा देखा तो उत्पादन रे हिसाब में और शरीर ने पोषण तत्व मिलने रे हिसाब में मोटो अनाज बहुत कारगर है। तो मोटे अनाज रे मायने अगर आपा बिरे गुणा री बात करा तो जई रे मायने बी कॉम्प्लेक्स, कार्बोहाइड्रेट, फिर कैल्शियम, जिंक, मैग्नीज, लोहो और विटामिन बी और ई भी भरपूर मात्रा में पायो जावे है। लो सैचुरेटेड पफेट रे सागे सागे हृदय संबंधी रोगा ने भी कम करने में और डिसलिपिडेमिया वास्तर भी ओ बहुत लाभदायक है। बाजरो एक ऐसो अनाज है जिको सदियों से आपा और आपाना पूर्वज खाता आ रहा है। कम पानी री जरूरत होने री वजह से बाजरो रेगिस्तान में चोखो पन पे भी है, तो बाजरो भी मोटे अनाज रे मायने भी आवे। बाजरे ने गर्म अनाज होने रे कारण साधारण तौर पर सर्दियां रे दिना में खायो जावे, लेकिन गांव रे मायने आपाने बहुत सा लोग बारो मास बाजरे रो सेवन करे तो वो शरीर वास्ते बहुत लाभदायक होवे। गेहूं री जगह बाजरो खाने से शरीर ने शक्ति भी पूरी मिले और गेहूं रे मायने जिको ग्लूटीन होवे बिसु भी शरीर बचोड़ो रहवे। ओ थायमिन, कैल्शियम, आयरन और विटामिन बी रो बहुत अच्छो स्रोत है। और सबसे बड़ी बात आ है कि पूरे देश रे मायने राजस्थान रे मायने बाजरो बहुत तैयार से उपलब्ध भी है और किसान भाई उगावे भी है, तो आपा इरो प्रयोग पूरी मात्रा से कर सका। इरा दाम भी आपने वास्ते कम पड़े। इरे सागे अगर आपा जोरी बात करा तो ई जोर रे मायने थोड़ो बहुत अल्कोहल भी पायो जावे है। बीरे सागे सागे फाइबर, मैग्नीशियम, एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में जौ में उपलब्ध होवे। और खून रे मायने कोलेस्ट्रॉल रिजी की मात्रा है बेने कम कर और ब्लड ग्लूकोज ने बढ़ावे। सागे सागे ओ मूत्रवर्धक भी है और हाइपरटेंशन रजिका रोगी है, मतलब आप जिका ने बीपी रा रोगी भी कहया करा हाँ, बियाने वास्तर भी ओ बहुत लाभदायक है। और अनाज रे सागे सागे ओ औषधि रे रूप में भी काम करे। काबुली चने रे मायने 23% तक प्रोटीन होवे, ओ अपने शरीर वास्तर बहुत बढ़िया। कांगनी री बात करा तो 100 ग्राम चावल की तुलना में 81% ज्यादा पौष्टिक होवे ओ कांगनी, और कांगनी भी मोटा अनाज में गिनियो जावे। सावो जिके ने आपा आम बोलचाल री भाषा में सामख भी कहया करा हाँ और व्रत उपवास में इन्हें आपा खाया करा हाँ, तो सावे रे मायने 840% ज्यादा वसा, 350% फाइबर और 1,229% आयरन पायो जावे। तो देखो जिका आपा व्रतवास रे मायने सावेरो सेवन करा तो बिसु पेट भी भरी जाए, बिसु आपानो व्रत भी को टूटे नहीं और सागे सागे शरीर ने मिलन नाली जितनी भी चीजें हैं वे भी मैं पहला सु ही होवे, तो शरीर वास्ते रो बहुत लाभदायक है। 633% अधिक खनिज तत्व जिका है वे कोंदो में चावल की तुलना में पाया जावे है। एक मोटे अनाज रे मायने रागी भी शामिल है। रागी रो इस्तेमाल राजस्थान रे बांड है ज्यादा हुए, लेकिन अब दुकाना में उपलब्ध है और आपने खरीद खा भी सका। तो रागी रे मायने कैल्शियम री भरपूर मात्रा हुए और आपा जाना हाँ कि कैल्शियम हड्डिया वास्ते एक वरदान है, तो ई हिसाब सु रागी सु आपा पेट भी भरा और सागे सागे आपानी हड्डिया भी मजबूत हुए। बाजरे रे मायने 85% ज्यादा फास्फोरस पायो जावे, तो मोटा अनाज और इरो उत्पादन जिको है जितो ज्यादा होसी बितो ही अपने शरीर वास्ते भी बढ़िया है। और अब धीरे धीरे मोटे अनाज रे प्रति दुनिया और इरो प्रचलन बढ़ने से एरा दाम भी बढ़ रहा है। तो किसान भाई अगर मोटे अनाज रो उत्पादन ज्यादा करे, बाजरे रे अलावा जिका दूसरा मोटा अनाज है और बियानी अगर प्रोसेसिंग करनी भी सीख जावे तो चोखी आमदनी कमा सके और चोखो लाभ भी आने हो सके।
1: खेती की बातें कार्यक्रम में अभी आपने सुनी अश्विनी व्यास की वार्ता, विषय था मोटा अनाज उत्पादन की ओर बढ़ता भारत। और आइए अब सुनते हैं लोक भजन।

0: कृष्ण व्यास के स्वर में आपने ये लोक भजन सुना। ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। अब आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित संस्कृत में समाचार।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका निधि झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत अभियानम 2.0 इत्यस्य प्रभावपूर्ण क्रियान्वयनस्य आवश्यकताम् उद्दिश्य सबलं प्रोक्तवान् यत् अभियानम् आधारभूत संरचना निर्माणम् अतिक्रम्य नियमित निरीक्षणेन नागरिक सहभागितया अथ विभिन्न हितधारकाणां समन्वयेन मापन योग्य परिमाणान् सुनिश्चितं कुर्यात्। नवदिल्ल्याम् 51वें प्रगति उपवेशने अध्यक्षतां कुर्वन् श्रीमोदी राज्येभ्यः निर्दिष्टवान् यत् अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्राणि सहैव गोबर

0: संयंत्राणि च सम्मिलितं कृत्वा कठोर अपशिष्ट प्रबंधन सम्बद्धानां आधारभूत परियोजनानां कार्यं शीघ्रं पूर्णं कुर्वन्तु। उपवेशनावधौ प्रधानमन्त्रिणा 30,000 कोटि रूप्यकाणां 7 महत्वपूर्ण परियोजनानां समीक्षा विहिता। सः अवोचत् यत् विद्युत् व्ययं न्यूनीकर्तुं, ऊर्जा सुरक्षां वर्धयितुं, गृह सामुदायिक स्तरे च स्वच्छ ऊर्जायाः प्रसारार्थं रूफटॉप सौरयोजना मिशन मोड रूपेण स्वीकरणीया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अद्य गैंगटॉक नगरस्य पालजोर क्रीडांगणे आयोजिते समारोहे सिक्किम आरक्षी बलाय प्रतिष्ठितं प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर इति सर्वोच्चं सम्माननं प्रदास्यति। एतेन सह सिक्किम राज्यं सम्माननमिदं प्राप्तुं देशस्य 15 राज्यं तथा उत्तर पूर्व क्षेत्रस्य 3 राज्यं अभवत्। प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर इति सम्माननं देशे कस्यापि आरक्षीबलस्य असाधारण सेवायाः, सुदृढ अनुशासनस्य, राष्ट्रं प्रति निष्ठायाः च कृते दीयमानं सर्वोच्चं औपचारिक सम्माननं वर्तते। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषदा CBSE इत्यनेन हैदराबाद स्थितस्य शैक्षणिक तन्त्रज्ञान संस्थायै कोइम्ट एड्युटेक इत्यस्मै परीक्षा परिणामानुबन्ध आवंटनस्य विषये आरोपाः निराकृताः। एकस्मिन् सामाजिक अन्तर्जालीय पटलीय सन्देशे CBSE इत्यनेन आरोपाः त्रुटिपूर्णः, भ्रमात्मकः, तथ्यहीनास्ति इति प्रतिपादितम्। परिषदा उक्तं यत् संस्थायै अनुबन्ध प्रदाने सामान्य वित्तीय नियमानां नियमावल्याः च निष्ठापूर्वकं पालनं कर्तव्यम्। परिषदा सूचितं यत् 26,000 वर्षस्य बोर्ड परीक्षायाः उत्तरपुस्तिकानां डिजिटल मूल्यांकनेभ्यः RFP इति गतवर्षस्य अगस्तमासे केन्द्रीय सार्वजनिक क्रयण पोर्टल इत्यत्र आरभ्य योग्याय निविदानुबन्धः प्रदत्तः आसीत्। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः अद्य गुजरात राज्यस्य यात्रां प्रति एष्यति। स्वयात्रावधौ गृहमन्त्री अहमदाबाद गांधीनगर मण्डलयोः प्रायः 12 जनोपयोगी शिक्षा ग्रामीण आधारभूत संरचना परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासं च विधास्यति। ईद उल अजहा अद्य कृत्स्ने उत्तर प्रदेशे सोत्साहं सोल्लासम् आचर्यते। बकरीद पर्व निर्विघ्नेन आचरितुं प्रशासनेन विस्तृता व्यवस्था कृता अस्ति। राज्य सर्वकारेण सर्वेषां मण्डलारक्षि प्रमुखाणां कृते संचेतना च प्रसारिता अस्ति यत् क्षेत्रे नूतन परम्परायाः आरम्भः न भवेत्, निषिद्धानां पशूनां बलिः न भवेत् इति सुनिश्चितं कर्तव्यम्। अन्ते च क्रिकेट क्रीडायां, IPL क्रिकेट स्पर्धायां गतरात्रौ न्यू चण्डीगढ़ नगरे क्रीडिते एलिमिनेटर द्वन्द्वे राजस्थान रॉयल्स दलेन सनराइजर्स हैदराबाद दलं 47 धावनांकैः पराजितम्। राजस्थान रॉयल्स दलेन सनराइजर्स हैदराबाद दलस्य सम्मुखं 44,200 धावनांकानां लक्ष्यं स्थापितम् आसीत्। प्रत्युत्तरे हैदराबाद दलं केवलं 96,100 धावनांकानेव अवाप्नोत् इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोल मारू चैनल से बोल रहे हैं। सुबह के 7 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुप्रभात।

कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं दिन विशेष के साथ, और आज का दिन विशेष वीडी सावरकर जयंती के रूप में और ईद उल जुहा के रूप में, दोनों ही खास दिन आज हमारे लिए। सबसे पहले बात करते हैं वीडी सावरकर जयंती की। विनायक दामोदर सावरकर, पूरा नाम जिन्हें प्यार से वीडी सावरकर कहा जाता था, आपका जन्म 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक जिले के भागुर गांव में हुआ। उस समय की विचारधारा को देखते हुए बचपन से ही वे देशभक्ति की ओर अग्रसर हुए और अपनी पढ़ाई के लिए बड़े ही मेधावी छात्र रहे। पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, लेकिन शुरुआती दिनों से ही देशभक्ति के कारण 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में उन्होंने विदेशी कपड़ों की होली जलाई। इसका परिणाम ये रहा कि कॉलेज से उन्हें निष्कासित किया गया और फिर धीरे धीरे वो इन क्रांतिकारी गतिविधियों में आगे बढ़ते रहे। 1906 में कानून की पढ़ाई के लिए लंदन गए। वहां पर भी उन्होंने अभिनव भारत सोसाइटी और फ्री इंडिया सोसाइटी का गठन किया और विदेशी धरती से ब्रिटिश सरकार के खिलाफ रणनीति बनाई। 1910 में नासिक के कलेक्टर जैक्सन की हत्या में प्रयुक्त पिस्तौल के भेजने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया और उसके बाद उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। वर्षों तक कारावास भुगतने के बाद सन 1924 में उन्हें रिहाई मिली। उसके बाद भी उन्होंने अपने इस क्रांतिकारी आंदोलन को जारी रखा और जाति भेद मिटाने में छुआछूत, अंतरराज्यीय विवाह, भोजनालयों को बढ़ावा देना जैसे कई सामाजिक सुधार किए और इसके साथ साथ अपनी विचारधारा को उन्होंने लेखनी में भी उतारा और हिंदुत्व हु इज अ हिंदू एक पुस्तक भी लिखी जो हिंदू राष्ट्रवाद की विचारधारा को नई दिशा प्रदान करती है। सन 1937 में हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने और देश के विभाजन का पुरजोर विरोध किया। 26 फरवरी 1966 को मुंबई में उनका निधन हुआ। कहा यह भी जाता है कि उन्होंने अपनी इच्छा से अन्न जल त्याग दिया था। सावरकर जी का जन्म एक ऐसे अद्भुत योद्धा के रूप में हुआ जिन्हें हम महान स्वतंत्रता सेनानी, प्रखर राष्ट्रवादी विचारक, लेखक और समाज सुधारक के रूप में जानते हैं। राष्ट्रभक्ति और अद्वितीय संघर्ष का एक ऐतिहासिक उदाहरण है वी डी सावरकर जी का नाम, जिन्हें हम आज के दिन नमन करते हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। हमारे भारत देश में ऐसे बहुत बहुत लोग हैं जिन्होंने अपना सर्वांगीण न्योछावर किया है इस राष्ट्रभूमि के लिए, इस देशभूमि के लिए, इस मातृभूमि के लिए।

ये देश हमारा, हमारी आन बान शान, और इसके लिए हम देखते हैं कि हमारे जो सैनिक हैं, वीर हैं, हमारे योद्धा हैं, वो हमेशा अपने आप की कुर्बानी देने के लिए हाजिर रहते हैं। और ऐसा ही कुर्बानी का त्यौहार है ईद उल जुहा, जिसे हम आज मना रहे हैं। ईद उल जुहा, जिसे बकरीद भी कहा जाता है, पैगंबर हजरत इब्राहिम द्वारा अल्लाह के प्रति दिखाए गए अटूट प्रेम, त्याग और समर्पण की याद में मनाया जाता है। इस्लामिक मान्यता के अनुसार एक बार अल्लाह ने पैगंबर हजरत इब्राहिम से सपने में उनकी सबसे प्रिय चीज की कुर्बानी देने को कहा। बार बार सपना आने पर उन्होंने कहा कि वो अपने बेटे हजरत इस्माइल की कुर्बानी देने को तैयार हैं, जिससे वे बेहद प्रेम करते थे, और यही एक बहुत बड़ी परीक्षा थी अल्लाह के लिए। वो जब अपने बेटे की बलि देने को तैयार हुए, और जैसे ही उन्होंने अपने बेटे की बलि देना शुरू किया, अल्लाह के हुक्म से उनके बेटे को खरोंच भी नहीं आई, आंच भी नहीं आई, और उनका बेटा सुरक्षित रहा। इसीलिए यह त्यौहार इस महान घटना की याद में मनाया जाता है कि अगर हम सच्चे मन से ईश्वर को, अल्लाह को, भगवान को ध्याते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, तो

फिर वो हमें हमारी सबसे प्यारी चीज नवाजने में कभी भी कोई भी मौका नहीं चूकते। उनका आशीर्वाद, उनका प्यार, उनका जो रहम करम है वो हम पे हमेशा बरसता रहता है। खास बात यह है कि इस पर्व को दान, भाईचारे और भगवान का, अल्लाह का शुक्रिया अदा करने के लिए मनाया जाता है कि उन्होंने जो हमें नेमतें दी हैं, जो बरसी हैं हमारे ऊपर नेमतें, वो हमेशा ऐसे ही बरसती रहे, उनका प्यार और आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा बना रहे। और देखिए, को बात रही कुर्बानी की श्रोताओं, तो कुर्बानी जरूरी नहीं है कि किसी जानवर की ही दी जाए। हम अपने रोजमर्रा के जीवन में भी हम देखते हैं कि अपने जो रिश्ते हैं उनको निभाने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए हमें कितनी ही कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। कई बार हमें झुकना भी पड़ता है, विनम्र भी होना पड़ता है, सामने वाले की बात सुननी भी पड़ती है। ये भी कुर्बानियां ही हैं कि हम अपने आप को, अपने प्यार को, अपने रिश्तेदारों को, अपने समाज को बचाने के लिए भी रोजाना कोई ना कोई कुर्बानी देते हैं। अल्लाह की निगाह में अगर हम सच्चे बंदे हैं तो हमारे हर तरीके की कुर्बानी मंजूर है, फिर वो चाहे प्रेम में हो, अपने रिश्तों में हो, यारी दोस्ती में हो।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
3: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
2: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
3: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
2: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में
3: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
2: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक।
3: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
2: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।

जन जन तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए आकाशवाणी एक माध्यम ऐसा है जिसकी कोई मिसाल नहीं है। और यही बात जब हमारे कार्यक्रमों के माध्यम से आप तक पहुंचती है तो फिर लोग हमसे जुड़ते चले जाते हैं और ये जुड़ाव दिनों दिन श्रोताओं आप सभी की बदौलत बढ़ता जा रहा है। और हम आप सभी से यही गुजारिश करते हैं कि आकाशवाणी से आप जुड़िए। अब बात करते हैं मौसम की, यानी कि गर्मी की। आप सभी देख रहे हैं कि हम सब मोटापे की चपेट में हैं। पारा इतना चढ़ चुका है कि राहत की कोई सांस नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, कोई आस नहीं है। लेकिन जीवन तो चलाना है, चलाना ही पड़ेगा। कामकाजी हैं तो घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा। घर में भी हैं तो भी हमें गर्मी का ध्यान तो रखना ही है और अपने आप को स्वस्थ और तरोताजा बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी सेहत का ख्याल करें। सबसे खास बात ये कि हम जो कपड़े पहने वो पूरे ढके हुए हों और सूती कपड़े हों उपयोग में लें इन दिनों में, क्योंकि वो पसीने को आसानी से सूख लेते हैं और तुरंत सूख भी जाते हैं। और उससे भी खास बात यह कि अपने खान पान का ध्यान रखना इस मौसम में बहुत जरूरी है। जरा सा भी बदपरहेजी हो तो समझ लीजिए कि हम कहीं ना कहीं उल्टी दस्त, डायरिया, डिहाइड्रेशन के शिकार हो सकते हैं। और इसी से बचने के लिए जरूरी है कि हम अपना जो भोजन है उसमें फल, सलाद और तरल पदार्थों का उपयोग अवश्य करें। और सबसे जरूरी कि हम बाहर का खाना, बासी खाना और कॉफी, चाय, कैफीन से जुड़े हुए जो पदार्थ हैं उनका सेवन कम से कम करें।

अगर हम बात पीने की करते हैं तो ऐसे में दिन भर में कम से कम हमें 4 से 5 लीटर पानी जरूर पीना है। अब आप ये सोचें कि हम अपने साथ में हमेशा पानी की बोतल रखें, जिससे कि जब भी हमें प्यास लगे पानी अवश्य पिए। कई बार ऐसा होता है कि हम काम में इतने बिजी हो जाते हैं या हम जो है वो एसी में बैठे हुए हैं तो हमें प्यास नहीं लगती है, लेकिन श्रोताओं अगर प्यास नहीं भी लग रही है तो भी हमें अपने पानी के नियमितीकरण को जारी रखना ही होगा, क्योंकि ये इस मौसम की मांग है। लू और डिहाइड्रेशन से बचने के लिए नारियल पानी, नींबू पानी, छाछ, लस्सी, आम का पन्ना, इमली का पन्ना हम पी सकते हैं। श्रोता हम देखते हैं ना, जब अकातीज का समय आता है तो हम गर्मी की वजह से ही इमली का पन्ना खिचड़ी के साथ में हर घर में बनता है। उसका कारण भी यही है कि जब हम धूप में छत पर पतंगे उड़ाते हैं तो कहीं हमें लू न लग जाए, हमें गर्मी न लग जाए, इसीलिए वो इमली का पन्ना हमारे लिए काम करता है। बेल का शरबत, खस या चंदन का शरबत शरीर को अंदर से ठंडा रखता है। इनका सेवन भी आप दिन में एक बार कर सकते हैं। बात आती है खाने की तो क्या खाएं? फलों की बात में आते हैं तो तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी, ये सभी अभी भरपूर मात्रा में हमारे सामने मार्केट में उपलब्ध है। सब्जी मंडी अगर हम जा रहे हैं तो हम इन चीजों को जरूर अपने लिए खरीद के लाएं। इसके अलावा आम, पपीता और अंगूर भी हम खा सकते हैं। भोजन में प्याज, टमाटर और पुदीने की चटनी को शामिल करना जरूरी है, क्योंकि ये तीनों ही हमारे अंदर ठंडक प्रदान करते हैं। कहते हैं कि कच्चा प्याज खाने से तो लू कभी भी नहीं लगती है, और पुदीना वो तो एक ऐसी औषधि है जो हमेशा हमारे पेट को ठंडा रखती है। पेट को ठंडा और पाचन को दुरुस्त रखने के लिए दही का सेवन किया जा सकता है, जिसे आप रायते के रूप में खा सकते हैं, दही बना के दही का साधारण दही के रूप में भी खा सकते हैं। श्रोताओं, खाने की बात तो हो गई, लेकिन कुछ ऐसा भी होता है जो हमें नहीं खाना चाहिए। जी हाँ, तला भुना और मसालेदार खाना, जो हमारे लिए इस मौसम में तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। बासी और कटे हुए फल जिन्हें हम रख देते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम फलों को काट के रख देते हैं और वो कई समय तक रखे रहते हैं, तो ऐसे में फूड पॉइजनिंग का खतरा बढ़ जाता है। बहुत अधिक ठंडा पानी, चिल्ड जिसे हम कहते हैं, ये भी पीने से हमारे गले में खराश हो सकती है या पाचन क्रिया हमारी बाधित हो सकती है। तो ऐसा कोई भी कार्य हम न करें जिससे हमें कहीं हॉस्पिटल के दर्शन न करने पड़ जाएं। इसीलिए अपने आप को सचेत रखें, सावधान रखें, सतर्क रखें, क्योंकि ये मौसम अभी जाने वाला नहीं है, अभी ये मौसम कई दिनों तक रहने वाला है और इसका असर आपको और हमको सबको झेलना ही है, महसूस करना ही है। इसीलिए जरूरी है कि हम अपने आप को बहते पानी की तरह ठंडा बना करके एकदम नदिया की तरह चलते रहे।

श्रोताओं, चलना तो होगा ही, क्योंकि जीवन चल रहा है और इसको चलाने के लिए अगर हम नहीं चलेंगे तो कैसे काम चलेगा। लेकिन जरूरत है कि हम जागरूक रहें, सतर्क रहें, सचेत रहें, क्योंकि कई बार बहुत से ऐसे भ्रामक विज्ञापन आते हैं, भ्रामक संदेश आते हैं हमारे मोबाइल पर भी, या हम कभी अखबार में भी पढ़ते हैं कि सोना दुगना कर देंगे, पैसा दुगना कर देंगे बहुत कम समय में, या इस ऐप को आप खोलें आपको तुरंत ये रिवॉर्ड मिलेगा, इतना आप इसमें रिचार्ज करेंगे तो आपके 10 रिचार्ज फ्री होंगे। इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें आती हैं, मोबाइल में भी आती हैं या हम वैसे भी देखते हैं। तो हमें ज़रूरत है कि हम किसी भी प्रकार की जो फेक न्यूज़ है उनसे बचें, अपने आप को इतने सावधान रखें, सचेत रखें, सतर्क रखें कि इस तरीके की कोई भी भ्रामक सूचना हमारे सामने आती है तो हम उसे इग्नोर करें, हम तुरंत क्लिक ना करें, हम तुरंत पढ़ करके उसमें जो नंबर दिए गए हैं उस पर न फोन करें, क्योंकि एक फोन करने से भी हमारा पूरा का पूरा डाटा हैक हो सकता है, लीक हो सकता है और हम कहीं ना कहीं किसी फ्रॉड की चपेट में आ सकते हैं। तो बहुत जरूरी है कि हम सावधान रहें, सचेत रहें, सतर्क रहें और अपने परिजनों के साथ हंसते मुस्कुराते रहें। मंगल कामनाओं के साथ आज का सुप्रभात कार्यक्रम बस यहीं तक, आगे दीजिए हमें नमस्कार।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुप्रभात आकाशवाणी बीकानेर का। ये ढोल हमारा चैनल है। सुबह के 7:30 हुए। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

बाबा फिल्म का गीत आपने सुना, लता मंगेशकर, मनमोहन सिंह और साथियों की आवाजों में। गीत को लिखा था सावन कुमार ने और संगीत उषा खन्ना का था।

0: लक्ष्मीकांत परिलाल के संगीत निर्देशन में SH बिहारी का लिखा गीत आपने सुना। अनुराधा पूर्णवाल, शब्बीर कुमार और साथियों की आवाजों में। फिल्म का नाम था तेरी मेहरबानियां। फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर के डोली मारू चैनल से।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

प्रेम संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में इंदिवर का लिखा ये गीत, किशोर कुमार अनुराधा पौडवाल की आवाजों में। फिल्म का नाम है कलाकार।

0: किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में आपने सुना कामचोर फिल्म का ये गीत। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ध्यानवर चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज पर सुबह के 8 बज रहे हैं। कुछ ही पल में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज।
1: मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने अधिकारियों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में सभी अवैध ढांचे ढहाने को कहा। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2 दिन तक लू की स्थिति जारी रहेगी। ईद उल अजहा आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। और आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराया।

0: अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। श्री मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरी क्षेत्रों, आवासीय परिसर और सार्वजनिक संस्थानों में छतों पर सोलर पैनल लगाने को बढ़ावा देने पर बल दिया। सड़क और बंदरगाह संपर्क परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री ने वाधवन बंदरगाह को आधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित करने पर जोर दिया। केन बेतवा नदी अंतर संबंध परियोजना की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केन बेतवा परियोजना अन्य राज्यों के लिए अंतर्राज्य जल विवादों के समाधान का आदर्श मॉडल है। श्री मोदी ने सहयोग, समय पर मंजूरी, प्रौद्योगिकी आधारित निगरानी और मिशन आधारित कार्यान्वयन के माध्यम से अंतर्राज्य जल समस्याओं के समाधान पर बल दिया। राज्यों को ऐसे ही अवसरों की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित किया गया जहां नदी अंतर संबंध, जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण और कुशल सिंचाई को एकीकृत तरीके से अपनाया जा सके। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश की सीमाओं से 15 किलोमीटर के दायरे में किसी भी अवैध निर्माण को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारी संवाददाता ने खबर दी है कि गृह मंत्री ने ऐसे सभी अवैध ढांचों को तुरंत ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं।
2: राजस्थान के बीकानेर में सुरक्षा समीक्षा बैठक में गृह मंत्री ने भारत पाकिस्तान सीमा से जुड़े जिलों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। गृह मंत्रालय ने जिलाधिकारियों को ये सुनिश्चित करने को कहा है कि सीमावर्ती इलाकों में बैंकिंग लेनदेन पूरी तरह कानूनी नियमों के अनुसार हो, बड़े व्यापारिक संस्थानों की जाँच और उनके आय के स्रोत की भी पड़ताल करने के निर्देश दिए गए हैं। श्री शाह ने हर सीमावर्ती जिले के लिए मजबूत सुरक्षा व्यवस्था बनाने पर जोर दिया। गृह मंत्री ने साइबर अपराध रोकने के लिए 1930 हेल्पलाइन का प्रभावी इस्तेमाल करने पर भी जोर दिया। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।
3: गांधीनगर के कलोल तालुका से अपने कार्यक्रमों की शुरुआत करते हुए गृह मंत्री कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि CSR पहल के तहत विकसित की गई जन सुविधाओं का लोकार्पण करेंगे, जिनमें जेड़वा गांव की झील, 3 नवनिर्मित पुस्तकालय और नए प्राथमिक स्कूल भवन जैसे प्रोजेक्ट शामिल है। शाम को श्री शाह अहमदाबाद शहर में 16 क्षेत्र में आए माता उम्मीदवार परिसर में नवनिर्मित हॉस्टल भवन का और भीमजीपुरा में भारत माता स्क्वायर का उद्घाटन करेंगे। शाम को गृह मंत्री शाहीबाग सर्किट हाउस में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें आगामी ओलंपिक, राष्ट्रमंडल और वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की तैयारियों और बुनियादी ढांचे की समीक्षा की जाएगी। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक PDS को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने में सहयोग करेगी।
4: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जो सरकारों के एजेंसीज राज्य में FCI का बड़ा गोडाउन होता है, वहाँ से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुँचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स हैं, उनमें डीलर्स का रिमुनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी, तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर BSF चौकियों और कटीले तार की बाड़ लगाने के लिए करीब

0: 48 एकड़ भूमि बीएसएफ को सौंप दी है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए ये कदम उठाया गया है। राज्य सरकार ने पहले चरण में कई जिलों में भूमि हस्तांतरित की है। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जिसमें से लगभग 1600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। भारत ने कांगो में इबोला के प्रकोप को नियंत्रित करने के प्रयासों में सहयोग के लिए आपातकालीन चिकित्सा सहायता भेजी है। इथियोपिया स्थित अफ्रीका रोग नियंत्रण केंद्र ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत से भेजी गई आपातकालीन दवाएं युगांडा में पूर्वी अफ्रीका क्षेत्रीय समन्वय केंद्र को प्राप्त हुई हैं। इसमें आवश्यक निदान, उपचार, संक्रमण रोकथाम और नियंत्रण सामग्री शामिल है। इसे कांगो के प्रभावित समुदायों तक पहुंचाया जाएगा।
1: अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने कांगो के बुंडी बुगियो इबोला प्रकोप से निपटने के लिए भारत सरकार और भारत के लोगों द्वारा भेजी गई आपातकालीन चिकित्सा सहायता का स्वागत किया है। बुंडी बुगियो स्ट्रेन इबोला वायरस की 6 ज्ञात प्रजातियों में से एक है। वर्ष 2007 में युगांडा में पहली बार इसकी पहचान होने के बाद से अफ्रीका के कुछ हिस्सों में समय समय पर इसका प्रकोप होता रहा है। इबोला संक्रमित शारीरिक तरल पदार्थों, दूषित पदार्थों या संक्रमित जानवरों के सीधे संपर्क से फैलता है। इसके लक्षणों में बुखार और गंभीर मामलों में आंतरिक और बाहरी रक्तस्राव शामिल है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में अगले दो दिन तक भीषण लू की स्थिति बनी रहने की आशंका है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज लू के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी आज लू चलने की आशंका है। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने 46 जिलों में लू और भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की है।
2: मध्य प्रदेश में इस बार नौतपा में सिर्फ तेज धूप नहीं बल्कि आंधी और बारिश का दौर भी साथ चल रहा है। छतरपुर जिले के खजुराहो और नौगांव में आज भी तेज लू का रेड अलर्ट है। ये दोनों शहर 18 मई से लगातार प्रदेश के सबसे गर्म शहर बने हुए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 29 मई से मौसम करवट लेना शुरू करेगा। पश्चिमी विक्षोभ के असर से 31 मई तक कई जिलों में बारिश होने का अनुमान है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: ईद उल अजहा आज देश के विभिन्न हिस्सों में पूरे धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ मनाई जा रही है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। श्रद्धालु ईदगाहों और बड़ी मस्जिदों में ईद की नमाज अदा कर रहे हैं। ईद उल अजहा पैगंबर इब्राहिम द्वारा ईश्वर के आदेश का पालन करते हुए अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी देने की इच्छा को याद करने के लिए मनाया जाता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में प्रशासन ने बकरीद के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक व्यवस्था की है।
3: सुबह से ही मस्जिदों के आसपास चहल पहल है और लोग तैयार होकर बकरीद की खास नमाज के लिए मस्जिदों में पहुंच रहे हैं। नमाज के बाद कुर्बानी की रस्म अदा की जाएगी। राज्य सरकार ने पहले ही सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी करके ये सुनिश्चित करने को कहा है कि कोई नई परंपरा शुरू न हो और प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी न दी जाए। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा के निर्देशों के बाद पुलिस ने कल संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया। कानपुर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, मेरठ और मऊ जैसे शहरों के संवेदनशील इलाकों में पुलिस खास एहतियात बरत रही है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद उल अजहा की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि ये त्योहार भक्ति, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के निडर योद्धा वीर सावरकर ने अपना पूरा जीवन मातृभूमि की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि वीर सावरकर के जीवन और लेखन से हमें राष्ट्र और विचारधारा के प्रति अटूट निष्ठा का सही अर्थ समझ में आता है। श्री शाह ने कहा कि वीर सावरकर का ये कथन, हे मातृभूमि, तुम्हारे बिना जीवन मृत्यु के समान है, राष्ट्र के प्रति उनके असीम प्रेम को दर्शाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का 3रा राज्य होगा। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 243

0: रन बनाए, जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद 196 रन ही बना सकी। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन की शानदार पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कल क्वालिफायर 2 में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेगी। फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज की समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
1: धन्यवाद जागृति। एसआईआर पर उच्चतम न्यायालय का फैसला हिंदुस्तान सहित कई अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। फैसला शीर्षक से पत्र ने लिखा है, एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर, कहा मतदाता सूची का पुनरीक्षण आयोग का अधिकार, प्रक्रिया में खामी नहीं। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, सुप्रीम कोर्ट की कसौटी पर खरा उतरा एसआईआर। पंजाब केसरी ने लिखा है, शीर्ष न्यायालय के अनुसार नागरिकता की भी जांच कर सकता है चुनाव आयोग। वीर अर्जुन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को प्रमुखता दी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में मौजूद सभी अवैध ढांचा को ध्वस्त करें। दैनिक भास्कर ने सीबीएसई की 12वीं कक्षा की कॉपियों की स्क्रीनिंग से जुड़े मामले पर खबर दी है। ऑन स्क्रीन मार्किंग का काम ब्लैक लिस्टिंग कंपनी को, सीबीएसई ने कहा ये झूठ। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है, घरेलू उड़ानों में 22% कटौती करेगी एयर इंडिया। एयरलाइन ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में 27% कमी की घोषणा के 2 सप्ताह बाद ये फैसला किया है। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर लिखा है, कठोर कार्रवाई जरूरी। पत्र ने लिखा है, दिल्ली उच्च न्यायालय ने ओजोन यानी यमुना डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण पर चिंता जताते हुए जिम्मेदार अभियंताओं के विरुद्ध कार्रवाई के संकेत दिए हैं। ओजोन में अतिक्रमण से नदी का प्राकृतिक प्रवाह बाधित हो रहा है, जिससे मानसून में बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। देशबंधु ने ईरानी मीडिया के दावे को प्रथम पृष्ठ पर दिया है। अमेरिका ईरानी क्षेत्र से हटाएगा सेना, खुलेगा होर्मुज, संभावित समझौते पर ड्राफ्ट तैयार कर दिया गया है। राजस्थान पत्रिका ने बिहार में एक अनूठी पहल को प्रकाशित किया है, अब ऑन ड्यूटी सब परिवार घूमने जाएंगे सरकारी बाबू। हर 3 महीने में सरकारी कर्मचारी मनाएंगे टूरिस्ट हॉलिडे, सैलरी भी मिलेगी। सरकार का तर्क है कि इससे इको टूरिज्म, ग्रामीण पर्यटन और होम स्टे को बढ़ावा मिलेगा। अमर उजाला ने मौसम को अहमियत दी है, नौतपा में तप रहा उत्तर भारत, कल से राहत मिलने की उम्मीद।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में सभी अवैध ढांचे ढहाने को कहा। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2 दिन तक लू की स्थिति जारी रहेगी। ईद उल अजहा आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। और आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चेयर्स 51st प्रगति मीटिंग इन न्यू दिल्ली। Reviews 7 critical infrastructure projects worth around 30,000 crore rupees. Union Home Minister Amit Shah asks authorities to demolish all illegal structures within 15 kilometers of international border. Heatwave conditions to continue over central and northwest India during next 2 days. Eid ul Azha being celebrated in different parts of the country today with religious fervor. And in IPL cricket, Rajasthan Royals beat Sunrisers Hyderabad by 47 runs in eliminator match in New Chandigarh. Prime Minister Narendra Modi has emphasized the need for effective implementation of Swachh Bharat Mission 2.0 and underlined that the mission should move beyond infrastructure creation and ensure measurable outcomes through regular monitoring, citizen participation and conversions between various stakeholders. Chairing the 51st Pragati meeting in New Delhi,

0: पैगम्बर इब्राहिम अलैहिस्सलाम मान्यता प्राप्त हैं। यह इब्राहिम अलैहिस्सलाम की भावना को सम्मान देते हैं। इस्लाम में कुर्बानी को इबादत के साथ साथ सामाजिक भाईचारे को मजबूत करने का जरिया माना जाता है। भाईचारा ईद उल अजहा समाज में भाईचारा और न्याय का संदेश देता है, जहां लोग गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे से गले मिलते हैं और बधाई देते हैं। ये कुर्बानी इस बात की प्रतीक है कि मुसलमान अपने सबसे प्रिय वस्तु का त्याग कर अल्लाह के आदेशों का पालन करने के लिए तैयार रहते हैं। ये अमल समाज में मसावात और समानता और हमदर्दी को फरोग देता है। यह दिन साझा करने और परोपकार और एकता का प्रतीक है, अमीर और गरीब को एक साथ लाता है, जिससे समाज में एकता की भावना बढ़ती है। ये त्योहार सामाजिक सौहार्द और गरीब अमीर के बीच खाई को कम करने का एक अवसर भी माना जाता है, जहां मिल बांटकर खाने की परंपरा है। ईद उल अजहा अल्लाह के प्रति विश्वास, आज्ञाकारिता और समर्पण का प्रतीक है, जो दिल में नम्रता लाता है। संक्षेप में कुर्बानी निस्वार्थता, अल्लाह का आज्ञा पालन और जरूरतमंदों की सहायता के एक शक्तिशाली माध्यम है। यह अपनी प्रिय वस्तु अहंकार और नकारात्मकता को अल्लाह के लिए त्यागने का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि एक मुसलमान अपनी जान माल सब कुछ अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए तैयार है। कुर्बानी अपने अहंकार की कुर्बानी देकर अल्लाह को प्रसन्न करना होता है। खून बहाना मकसद नहीं, बल्कि दिल का तकवा, पवित्रता और अल्लाह का डर हुक्म की तामील सुन्नत है, जो रजा और त्याग की भावना पैदा करना, वफादारी और आज्ञाकारिता और समर्पण दर्शाता है और समाज में समानता और जरूरतों की सहायता का संदेश देती है। इस्लाम में कुर्बानी को इबादत के साथ साथ सामाजिक भाईचारे को मजबूत करने का एक जरिया माना जाता है। ये पर्व सेवा और इंसानियत का संदेश देता है, जो समाज में एकता, सद्भावना और प्रेम को बढ़ावा देता है।
1: सौरभ कार्यक्रम में अभी आपने सुनी वार्ता ईद उल अजहा त्याग और बलिदान का पर्व। वार्ताकार थी खबर न्यूज़ में हिम्मत। और आइए अब सुनते हैं देशभक्ति गीत।

आप सुन रहे थे समी भूसर में देशभक्ति गीत। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोल अमरकिले से बोल रहे हैं। सुबह के 8:45 हुए हैं। सुनते हैं सुगम संगीत। कलाकार हैं शोभन राव।

सुन रहे थे सुगम संगीत कलाकार थी शोभना राव आकाशवाणी बीकानेर का ये धुन हमारी चैनल है। सुबह के 9 बज रहे हैं, कुछ ही पल में आप सुनेंगे जयपुर केंद्र से प्रसारित हिंदी में प्रादेशिक समाचार।

मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी रूप से लागू करने की आवश्यकता पर बल दिया। ईद उल अजहा का पर्व प्रदेश भर में अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। प्रदेश में भीषण गर्मी और नौतपा के असर से जनजीवन प्रभावित, 5 शहरों का पारा 46 के पार। और आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से शिकस्त दी।

समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी रूप से लागू करने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा है कि ये अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जन भागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने राज्यों से अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं जैसे कचरा प्रसंस्करण और गोवर्धन संयंत्रों के निर्माण में तेजी लाने का आग्रह किया। बैठक में प्रधानमंत्री ने 9 राज्यों में रेलवे, विद्युत और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपये लागत की बुनियादी सुविधाओं की 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में खरीफ अभियान 2026 के लिए

0: कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। दो दिन के इस कार्यक्रम में कृषि और संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विषयगत चर्चाएं, राज्यवार भागीदारी तथा प्रस्तुतियां शामिल होंगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा कि सम्मेलन का उद्देश्य आगामी खरीफ मौसम के लिए रणनीतियों पर विचार विमर्श करना है। ये आयोजन खरीफ के मौसम की तैयारियों, कृषि उत्पादकता, मौसम की मार से निपटने के लिए जलवायु अनुकूल खेती, प्राकृतिक खेती, दलहन और तिलहन उत्पादन, डिजिटल कृषि और जोखिम प्रबंधन पर केंद्रित चर्चाओं के लिए एक मंच प्रदान करेगा। ईद उल अजहा आज देश के विभिन्न हिस्सों में पूरे धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ मनाई जा रही है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। सुबह से ही मस्जिदों और ईदगाहों में विशेष नमाज के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। प्रदेश में भी घर घर कुर्बानी की रस्म अदा की जा रही है। राजधानी जयपुर की जामा मस्जिद सहित अन्य प्रमुख मस्जिदों में विशेष नमाज अदा की गई। इनमें बड़ी संख्या में अकीदतमंद पहुंचे और देश में अमन चैन की दुआ की। मुख्य काजी खालिद उस्मानी ने सभी नागरिकों से त्योहार को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने की अपील की है। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में भी त्योहार का उत्साह देखा जा रहा है। भीलवाड़ा, बाड़मेर, पाली, करौली, सवाईमाधोपुर, जैसलमेर, झुंझुनू और चूरू सहित सभी स्थानों पर यह त्योहार अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। साथ ही पुलिस और प्रशासन ने नमाज के दौरान शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को बधाई देते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि ये त्योहार नागरिकों को मानवता और विशेषकर वंचितों की सेवा करने के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने नागरिकों से समाज में प्रेम और सद्भाव को बढ़ावा देने के संकल्प को मजबूत करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शुभकामनाएं देते हुए सभी की सफलता और अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना की है। सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने संबंधी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करेगा। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार, बोर्ड और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 1 जुलाई से कक्षा 9 के छात्रों के लिए कम से कम 2 भारतीय भाषाओं सहित 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने संबंधी परिपत्र जारी किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भेज सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप और MyGOV ओपन फोरम के माध्यम से भी विचार भेजे जा सकते हैं। ये सुझाव कल तक स्वीकार किए जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में भीषण गर्मी और नौतपा के असर से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। दिन के साथ रात के तापमान में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटों में 5 शहरों का अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया। सबसे ज्यादा तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस श्रीगंगानगर का दर्ज किया गया। हमारे संवाददाता ने बताया कि यहां आम नागरिकों के अलावा पशु पक्षी भी गर्मी और लू से बेहाल नजर आ रहे हैं।
1: भीषण गर्मी का असर लगातार जारी है। बुधवार को इस सीजन का सबसे अधिक तापमान 48 डिग्री दर्ज किया गया। भीषण गर्मी के चलते रात को भी लोगों को राहत नहीं मिल पाई। दोपहर के समय शहर की सड़कें सुनसान नजर आई। भीषण गर्मी को देखते हुए प्रशासन की ओर से सार्वजनिक स्थानों पर पेयजल की व्यवस्था की गई है। लोगों को रात को भी गर्मी से राहत नहीं मिल पाई। गर्मी के इस दौर में शीतल पेय और खाद्य पदार्थों की मांग में भारी इजाफा हुआ है। जितेंद्र शर्मा, आकाशवाणी समाचार, श्रीगंगानगर।
0: भरतपुर में भी बढ़ती गर्मी की वजह से शहर में अघोषित कर्फ्यू देखा जा रहा है। जैसलमेर में प्रचंड गर्मी के साथ साथ बिजली कटौती भी जनजीवन को बेहाल कर रही है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी जिलों में अगले 2-3 दिन तक भीषण गर्मी और उष्ण रात्रि का दौर जारी रहने की संभावना है। वहीं पूर्वी जिलों में आंधी और बारिश से राहत मिलने के संकेत हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि एक नए पश्चिमी विक्षोभ के

0: प्रभाव से आज से प्रदेश के कुछ हिस्सों में मौसम बदलना शुरू होगा। कल से 31 मई के बीच जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ क्षेत्रों में तेज अंधड़ और कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। इसके चलते तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है। इधर राज्य सरकार भीषण गर्मी में आमजन, विशेषकर राहगीरों और मूक पशु पक्षियों के लिए पेयजल और छाया की व्यवस्था सुनिश्चित करने के पुख्ता बंदोबस्त कर रही है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने गत दिनों परिपत्र जारी कर सभी जिला कलेक्टर, स्थानीय निकाय और संबंधित विभागों को ग्रीष्मकाल के दौरान पशु पक्षियों को तेज गर्मी और लू से बचाने तथा उनके लिए पेयजल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे। मुख्य सचिव ने कल शासन सचिवालय में पीपल के 11 वृक्षों पर दाने और पानी के लिए परिंडे बांधे। राज्य में चल रहे वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत कई गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इन गतिविधियों का उद्देश्य इस अभियान से ज्यादा लोगों को जोड़ना और जल संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इसी कड़ी में सवाईमाधोपुर में आज CSR कार्यशाला आयोजित की जाएगी। जिला कलेक्टर कानाराम की अध्यक्षता में होने वाली इस कार्यशाला में औद्योगिक संगठन, स्वयंसेवी संस्थाएं और औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। कार्यशाला के माध्यम से इन इकाइयों और संस्थाओं को जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण तथा सतत विकास से जुड़ी गतिविधियों में सक्रियता सहभागिता के लिए प्रेरित किया जाएगा। करौली में स्वच्छता और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पौधरोपण, गौ पूजन और रणगमा ताल पर दीपदान किया गया। जैसलमेर में स्वच्छता संरक्षण और जन भागीदारी को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संवाद कार्यक्रम आयोजित किए गए और पेयजल स्रोतों की साफ सफाई कराई गई। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मुकाबले में कल रात राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। न्यू चंडीगढ़ में पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए। जवाब में हैदराबाद की टीम अंतिम ओवर में 196 रन पर ही ऑल आउट हो गई। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में शानदार 97 रन की पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में कल दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। विजेता टीम का मुकाबला रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी रूप से लागू करने की आवश्यकता पर बल दिया। ईद उल अजहा का पर्व प्रदेश भर में अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। राज्य में भीषण गर्मी और नौतपा के असर से जनजीवन प्रभावित, 5 शहरों का पारा 46 के पार। और आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से शिकस्त दी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोलमारु चैनल है। सुबह के 9:10 हुए हैं। आइए सुनते हैं लोक संगीत। आज के कलाकार हैं वीरेंद्र शर्मा।

आप सुन रहे थे लोक संगीत, कलाकार थे वीरेंद्र शर्मा। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। सुबह के 9:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं एनसीईआरटी का स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम उमंग। आज आप इसकी 1294 कड़ी सुनेंगे।

0: संबंध
1: CIET प्रस्तुत करता है
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुविचार जो हमें छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल जी ने भेजा है। बड़ा खूबसूरत लिखा है।
3: जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना जरूरी है।
1: वाह, बहुत सुंदर विचार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो हमें पहला संदेश मिला है संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव जी का।
3: गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी का।
1: और भिलाई छत्तीसगढ़ से भाई मुकेश शर्मा, श्रीमती सरिता शर्मा, गौरव और गरिमा शर्मा।
3: ग्राम पेपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा।
1: और जे रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और सतीश अनेजा जी का।
3: धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए।
1: और प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी विश्व प्रसिद्ध सुंदर फूल ट्यूलिप की और जाना था इसकी रोचक बातों को
3: जी।
1: खास तौर से ये जाना था कि ट्यूलिप नाम कहाँ से आया और ये भी कि ट्यूलिप के फूल अक्सर गंधहीन होते हैं।
3: आज हम चर्चा

0: एक ऐसे फूल की जिसकी सुगंध का जवाब नहीं है। ये भी विश्व प्रसिद्ध फूल है जिसे अंग्रेजी में ट्यूबरोज कहा जाता है। अजीत जी, इस फूल का नाम हिंदी में भी बहुत सुंदर है।
1: क्या नाम है भला?
0: रजनीगंधा।
1: रजनीगंधा बहुत ही खूबसूरत नाम है विमलेश जी, लेकिन जरा इस शब्द पर विचार तो कर लें। रजनीगंधा ये दो शब्दों के संयोग से बना है ना, रजनी और गंधा।
0: जी चलिए श्रोताओं, इसे और गहराई से समझते हैं। रजनी यानी रात और रात्रि, और गंधा यानी सुगंधित। इस फूल की रोचक बात यह है कि रात में सबसे अधिक महकता है।
1: जी, दिन की तुलना में इसकी खुशबू रात को कई गुना बढ़ जाती है।
0: जी,
1: इसलिए इस फूल को क्वीन ऑफ द नाइट फ्रेग्रेंस भी कहा जाता है। देश विदेश में विशेष अवसरों पर जैसे
0: विवाह, सजावट, पूजा और स्वागत समारोह में इसकी मालाएं और पुष्प गुच्छ यानी बुके बहुत अधिक प्रचलित हैं। अजीत जी, अब जरा ये तो बताइए कि मूल रूप से ये फूल कहाँ का है, यानी इसकी व्युत्पत्ति किस देश की मानी जाती है?
1: विमलेश जी, जहाँ तक इसकी व्युत्पत्ति का प्रश्न है, इस व्युत्पत्ति मेक्सिको की मानी जाती है जो दक्षिणी अमेरिका का एक देश है।
0: जी, मूल रूप से मेक्सिको का फूल माना जाता है, लेकिन आज ये भारत सहित दुनिया के अनेक देशों में उगाया जाता है। भारत में इसकी खेती पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में की जाती है। बता दें कि रजनीगंधा फूल भी ट्यूलिप की तरह बीज से नहीं लेकिन कंद से उगाया जाता है। वैसे बीज बन सकते हैं, लेकिन व्यावसायिक खेती के लिए कंद का ही उपयोग किया जाता है।
1: लेकिन विमलेश जी, मेरे मन में एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, और वो ये है कि रजनीगंधा फूल की सुगंध रात में ही क्यों अधिक होती है? कोई वैज्ञानिक कारण तो होगा?
0: अजीत जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने।
1: जी,
0: बात यह है कि प्रकृति ने इस फूल को रात्रि परागण या नाइट पॉलिनेशन के लिए विशेष रूप से बनाया है, इसलिए रात के समय इसका सुगंधित तेल अधिक मात्रा में निकलता है। इसका उद्देश्य है रात में सक्रिय रहने वाले कीटों और पतंगों को आकर्षित करना।
1: वाह, ये तो बड़ी रोचक बात है।
0: इतना ही नहीं, एक कारण और भी है। अपने सफेद रंग के कारण ये अंधेरे में भी चमकता हुआ दिखाई देता है, जिसके कारण रात्रि के कीट इसे आसानी से पहचान लेते हैं। एक बात और है।
1: भला वो और क्या बात है?
0: दिन की गर्मी से सुगंध जल्दी उड़ जाती है, लेकिन रात की ठंडी और नम हवा खुशबू को दूर तक फैलाती है।
1: जी, ये बात तो है।
0: इसकी तेज खुशबू रात में परागण करने वाले कीटों को आकर्षित करती है।
1: बड़ी सुंदर जानकारी दी आपने विमलेश जी। कई संस्कृतियों में श्रोताओं, इसे शांति और प्रेम का प्रतीक भी माना गया है।
0: जी
1: विमलेश जी, एक और सुंदर जानकारी श्रोताओं से साझा करना चाहता हूँ कि इत्र या परफ्यूम उद्योग में रजनीगंधा फूल का बड़ा महत्व है।
0: जी,
1: इसके तेल से अत्यंत महंगा परफ्यूम तैयार किया जाता है। रजनीगंधा परफ्यूम अंतर्राष्ट्रीय इत्र उद्योग में बहुत लोकप्रिय है।
0: जी जी जी, रजनीगंधा की खुशबू इतनी प्रभावशाली होती है कि कुछ लोग इसे मन के तनाव को कम करने वाला प्राकृतिक सुगंध स्रोत भी मानते हैं।
1: तो श्रोताओं, ये थी जानकारी खुशबू से वातावरण को महकाने वाले फूल रजनीगंधा की। आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी। अब सुनते हैं आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, रजनीगंधा फूल रात में अधिक खुशबू क्यों देता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: रजनीगंधा फूल रात में अधिक खुशबू क्यों देता है?
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भी अपने संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को जरूर फॉलो करें। इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
1: तो श्रोताओं, अब बारी है हमारे आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं हमारा पहला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है दिस इज माई टाउन।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की एक सुंदर कविता का संगीत प्रस्तुतिकरण है, जिसमें पर्यावरण की स्वच्छता का संदेश दिया गया है।

0: जादुई पिटारा है ना मजेदार साथियों। जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और आइए इस कार्यक्रम के बाद अब सुनते हैं कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह।
2: इस कार्यक्रम में परमवीर चक्र विजेता ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह की वीर गाथा को विस्तार से बताया गया है। भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उन्होंने असाधारण शौर्य का प्रदर्शन किया था।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। यह कार्यक्रम NCERT द्वारा प्रकाशित परम वीर चक्र विजेताओं के जीवन पर आधारित पुस्तक वीर गाथा पर आधारित है।
1: अरुण ये मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा।

0: फिक्र करती हैं।
1: सच है कि भारत की मधुमेह माटी ने ऐसे अनगिनत वीरों को जन्म दिया है जिनकी वीरता की चर्चा जितनी की जाए कम है। आज हम एक ऐसे ही वीर सैनिक की चर्चा करेंगे जिसने 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान अद्वितीय शौर्य का प्रदर्शन किया और इस युद्ध में भारत की विजय का मार्ग प्रशस्त कर दिया।
0: भारत माता के वो शूरवीर हैं ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। जिन्हें भारत पाकिस्तान के मध्य लड़े जा रहे कारगिल युद्ध में भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
1: कहते हैं कि योद्धा इतिहास को नहीं चुनते लेकिन स्वयं इतिहास योद्धाओं का चयन करता है और उन्हें अपने स्वर्णिम पन्नों में गौरवशाली स्थान देता है। योगेंद्र सिंह यादव एक ऐसे ही इतिहास द्वारा चुने हुए पात्र हैं जिन पर देश को हमेशा गर्व रहेगा।
0: योगेंद्र सिंह यादव का जन्म 10 मई 1980 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के औरंगाबाद अहीर गांव में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही एक स्कूल में पूरी की और आगे की पढ़ाई सन्नोटा श्री कृष्ण कॉलेज बुलंदशहर से पूरी की।
1: उनके पिता रामकरण सिंह 11 कुमाऊं रेजिमेंट में सिपाही थे और 1965 व 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में उन्होंने बड़ी सक्रिय और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो अपने पिता से बहुत प्रभावित थे और प्रतीक्षा करते थे कि कब पिताजी छुट्टी पर घर आए और वो उनसे भारतीय सेना की वीरता की कहानियां सुने।
0: एक दिन की बात है, वो घर पर ही थे। उनके बड़े भाई किसी काम से बाहर गए हुए थे और माता घर पर ही थी। दरवाजे पर दस्तक हुई।
2: बेटा योगेंद्र, जरा देखो तो कौन आया है। अरे कौन है?
3: बहन जी, डाकिया।
2: अच्छा, खोलते हैं भैया।
4: जी कहिए। आपके भाई के नाम एक जरूरी चिट्ठी आई है रजिस्ट्री से। वो घर में है क्या?
5: नहीं, वो तो भैया तो अभी घर पर नहीं है।
4: तो कोई बड़ा है घर में?
5: हाँ, घर पर माता जी है ना।
4: जी बुलाइए।
6: माँ।
2: हाँ।
6: भैया के नाम से रजिस्ट्री आई है।
2: अच्छा, आ रही हूँ। जी कहिए।
4: ये जरूरी सरकारी चिट्ठी आई है आपके बेटे जितेंद्र के नाम। ये लीजिए और यहाँ पे साइन कर दीजिए।
2: अरे ये चिट्ठी तो फौज के दफ्तर से आई है, जरा देखो तो।
6: माँ, माँ।
7: लो माँ, मैं आ गया। आपने जो काम दिया था ना वो भी हो गया।
2: अच्छा क्या बेटा, तू आ गया। ले बेटा देख तो जरा, तेरे नाम ये चिट्ठी आई है।
7: चिट्ठी? अरे वाह, ये तो सेना के दफ्तर से आई हुई लगती है। जरा देखो तो।
2: हाँ।
7: माँ, माँ, माँ, बहुत बड़ी खुशखबरी है। माँ, सेना में मेरा चयन हो गया है। मुझे कहा गया है कि मैं 1 महीने के अंदर क्षेत्रीय सेना कार्यालय में रिपोर्ट करूं।
2: बधाई हो बेटा, बधाई हो।
6: ऐसे नहीं, बधाई हो भैया, बधाई हो भैया।
7: अरे योगेंद्र।
2: अरे बेटा, अब तो ये घर फौजी का नहीं, फौजियों का हो गया है। फौजियों का। तुम्हारे पिता फौज में है और अब तुम भी फौज में।
4: और माँ, इन दोनों के बाद मैं भी फौज में ही जाऊंगा। इस गांव में एक ही घर से तीन तीन फौजी होंगे।
2: हाँ हाँ, जरूर बेटा जरूर। ये तो बड़े गर्व की बात होगी हमारे लिए।
6: ऐसे नहीं, आज तो घर में गुलाब जामुन बनेगा, रसगुल्ला बनेगा, बर्फी मिलेगी खाने को।
1: तो साथियों, बालक योगेंद्र जैसे जैसे बड़े हो

0: जा रहे थे, उनके मन में सेना में जाने का चाव बढ़ता जा रहा था। पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्होंने सेना में अर्जी दी और पहले प्रयास में ही महज 16 वर्ष की आयु में उन्हें ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट की एक महत्वपूर्ण प्लाटून में शामिल कर लिया गया। इस प्लाटून का नाम था घातक प्लाटून।
1: फिर आया 1999 का साल। कश्मीर के कारगिल में स्थितियां बिगड़ने लगी। मई महीने में एक स्थानीय चरवाहे द्वारा भारतीय सेना को सूचना दी गई कि कारगिल और आसपास के महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों पर पाकिस्तानी सेना ने कब्जा कर लिया है।
0: सेना ने जब इस सूचना की जांच की तो पता चला कि पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा को लांघकर 4 से 8 किलोमीटर अंदर तक भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। उनका उद्देश्य था सियाचिन और कारगिल क्षेत्र से गुजरने वाले श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 पर कब्जा करके शेष भारत को कश्मीर के इस महत्वपूर्ण सामरिक क्षेत्र से काट देना।
1: अब युद्ध अवश्यंभावी हो गया था। 3 जुलाई को भारतीय सेना ने युद्ध की घोषणा की और बड़े पैमाने पर सैन्य कार्यवाही आरंभ कर दी। भारतीय सेना का मकसद था कारगिल, मुश्कोह, द्रास, काकसर और बटालिक क्षेत्रों से पाकिस्तानी चौकियों को हटाना। भारतीय वायुसेना को भी चौकस कर दिया गया कि वो हवाई हमलों को अंजाम दे सके।
0: सामरिक दृष्टि से पाकिस्तानी सेना बहुत बेहतर स्थिति में थी क्योंकि उनकी चौकियां पहाड़ों की चोटियों पर थी। उनके पास पर्याप्त मात्रा में हथियार, मिसाइल, रॉकेट और विमान भेदी तोपें थी। इतना ही नहीं, उन्होंने हर जगह बारूदी सुरंगें बिछा रखी थी।
1: इसके विपरीत भारतीय सेना की स्थिति घाटियों में होने की वजह से कमजोर थी क्योंकि ऊंची जगहों से पाकिस्तानी भारतीय सेना को बड़ी आसानी से निशाना बना सकते थे। भारतीय सेना के लिए ऐसी स्थिति में युद्ध करना बहुत कठिन था, इसलिए पाकिस्तानी सेना पर आक्रमण करने के लिए अधिकांश हमलों में रात का समय चुना गया, जिस समय तापमान 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है।
0: ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, कुमाऊं रेजिमेंट की घातक के नाम से जानी जाने वाली कमांडो प्लाटून का हिस्सा थे। दिनांक 4 जुलाई 1999। उनकी कमांडो प्लाटून को टाइगर हिल पर मोर्चा बांधे हुए दुश्मनों की 3 चौकियों पर कब्जा करने का आदेश दिया गया। टाइगर हिल पर दुश्मनों की चौकियां लगभग 1000 फुट की ऊंचाई पर थी।
1: चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़। दुश्मन के बंकरों तक पहुंचने के लिए उनके पास रस्सियों के सहारे ऊपर चढ़ने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। उनके प्लाटून ने धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू किया।
2: साथी, बहुत संभल के, अभी भी सूरज की रोशनी थोड़ी बहुत है, इसलिए हम दुश्मनों द्वारा देखे जा सकते हैं। कहीं उन्हें पता चल गया तो हम सीधे उनके निशाने पर आ सकते हैं।
3: जी साहब, जी साहब।
2: चलो, हम पहाड़ी ढाल की दूसरी तरफ से धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं।
3: चलो साथियों।
1: वो धीरे धीरे बर्फ की खड़ी ढाल पर चढ़ ही रहे थे कि तभी दुर्भाग्यवश शत्रु ने उन्हें देख लिया और प्लाटून पर रॉकेट और मशीन गनों से उन पर आक्रमण कर दिया।

0: इतना जबरदस्त था कि कमांडर और दो सैनिक उसी समय शहीद हो गए।
1: ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव को भी गले और कंधे में 3 गोलियां लगी और वह बुरी तरह से घायल हो गए। अभी भी 60 फुट की चढ़ाई बाकी।

0: उन्हें आभास हो गया था कि यही समय है देश के प्रति अपनी निष्ठा और समर्पण की भावना को प्रकट करने का। यही समय है मातृभूमि के प्रति अपना कर्ज और फर्ज अदा करने का। दृढ़ निश्चय के साथ वो ऊपर चढ़ते चले गए।
1: शेष 60 फुट चढ़कर वो टाइगर हिल के शीर्ष पर पहुंचे और रेंगते हुए पहले बंकर में घुस गए और हथगोला फेंक कर तुरंत 4 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया।
0: दुश्मन इस आकस्मिक आक्रमण से स्तब्ध रह गया। अब वो दूसरे बंकर की ओर बढ़े और सीधे बंकर में घुस गए। यहां हाथ से हाथ का आमने सामने का युद्ध हुआ।

0: राइफल की बट और हाथ गोलों से उन्होंने चार और पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया।
1: घुटने में ग्रेनेड लगने से घायल और कुल मिलाकर अपने शरीर में 15 गोलियां लगने के बाद भी, यहां तक कि वो खड़े होने की स्थिति में भी नहीं थे। इस हालत में भी ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव ने हिम्मत नहीं हारी और दुश्मनों से अपूर्व शौर्य के साथ लड़ते रहे।

0: शानदार विजय ग्रेनेडियर योगेंद्र के बिना संभव नहीं थी। इस तरह से ऑपरेशन टाइगर हिल समाप्त हुआ। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह को टाइगर ऑफ टाइगर हिल की संज्ञा दी गई।
1: उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित करने की घोषणा हुई, लेकिन नीति को कुछ और ही मंजूर था। बाद में पता चला कि वो जीवित हैं और सेना के एक अस्पताल में जख्मों के भरने और स्वस्थ होने का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल टाइगर हिल अभियान में एक और सैनिक शहीद हुए थे, उनका भी नाम योगेंद्र सिंह यादव था। इन शहीद योगेंद्र सिंह यादव को सेना मेडल से सम्मानित किया गया।
0: बाद में तत्कालीन सेना अध्यक्ष वेद प्रकाश मलिक ने आर्मी अस्पताल का दौरा करके ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव से मुलाकात की और उन्हें देश के सबसे बड़े सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किए जाने की सूचना दी। मात्र 19 वर्ष की आयु में परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले ग्रेनेडियर यादव सबसे कम उम्र के सैनिक हैं जिन्हें ये सम्मान प्राप्त हुआ।
1: योगेंद्र सिंह यादव परमवीर चक्र पाने वाले देश के सबसे युवा सैनिक हैं। उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सर्वोच्च सम्मान यश भारती से भी सम्मानित किया है। देश की रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह ना करते हुए इस असीम शौर्य के दृढ़ निश्चयी समर नायक ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव को

0: कृतज्ञ राष्ट्र नमन करता है।
1: अभी आप सुन रहे थे वीर गाथा श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल। तकनीकी निर्देशन बटी लैंग लिंडो। कलाकार अश्विनी वालिया, बाबला कोचर, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर और आर.एस. रघु। ध्वनियांकन विकास सांगवान और शानु मुक्सीम। निर्माण सहयोग जगबंधु जाना। आलेख अजीत होरो। निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे NCERT का स्पॉन्सर प्रोग्राम उमंग। आज आपने इसकी 1294 कड़ी सुनी। हम आकाशवाणी बीकानेर के 2 नंबर चैनल से बोल रहे हैं।

अपने दो गीत सुने, आवाजें थी विनोद राठौर, कविता कृष्णमूर्ति, उदित नारायण और अलका याग्निक की। फिल्मों का नाम थे यारहना और वकील। फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मरु चैनल से।

0: ये आवाजें थी अनुराधा पौडवाल और अमित कुमार की। फिल्म का नाम था मनी द ग्रेट। फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर के ढोला माडू चैनल से।
1: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हाल।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
4: जी,
3: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
4: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
3: पर ये होगा कैसे?
4: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
3: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
4: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
3: बस
4: बस
3: समझ गया।
4: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
5: आरबीआई कहता है

0: शाहरुख बोला, खूबसूरत है तू। इस फिल्म का ये गीत आपने सुना वसुधा शर्मा की आवाज में।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।

आकाशवाणी का 90 साल में पहले कोशिश रहेगी अब से किसान का हर लम्हा होगा आपके लिए अति विशेष।

0: व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में।
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक।
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।

अरियाल ने गाया गीत आपने सुना, फिल्म का नाम था तू झूठी मैं नकार। गीत को लिखा था अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीत प्रीतम का था। फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर के डोला मारू चैनल से।

0: दोपहर को पहुंच रहे हम।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है।

फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। आइए सुनते हैं मोहित चौहान, विशाल मिश्रा और साथियों की आवाजों में नोटबुक फिल्म का ये गीत। गीत को लिखा है कौशल किशोर ने और संगीत विशाल मिश्रा का है।

चौहान और विशाल मिश्रा की आवाजों में गए फिल्म नोटबुक के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। दिल को बांध बुलाने वाले ध्वनि तरंगों के संग आप हैं आकाशवाणी बीकानेर के ढोल मारो चैनल के संग और दिन के 11 बजे हैं और ये समय है फिल्म संगीत का। दोस्तों आज के इस फिल्म संगीत कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं कुछ भूले बिसरे गीत।

असल है, हर पल बदलता रहता है और इस पल में बस हमें जीना होता है, हमें खुशियों के लिए लड़ना होता है। तो इस पल को जिए खुशियों के साथ, खुशियां दें औरों को, अपनों को, सभी को। बहरहाल अर्शद भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में ये था कालीचरण फिल्म का गीत। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम का अगला गीत वो कौन थे फिल्म का लता मंगेशकर की आवाज में। राजा मेहंदी अली खान के बोल और मदन मोहन का संगीत।

दिन और रात एक दूसरे से यूं जुड़े हुए हैं कि एक के बिना दूसरा अधूरा है। दिन में भी रात का हम महत्वपूर्ण असर महसूस कर सकते हैं।

है दोस्तों, द्वेष में, जलन में, लड़ाई में। जब हम आए हैं और एक दिन चले जाएंगे तो फिर इस जीवन में क्यों किसी से बैर, क्यों ना हम अपनाए प्रेम और दुआ करें खुदा से।

हमेशा जमा रहती है। सही कुछ है फिल्म वक्त के इस गीत में।

शुल्क तुझको जीन आए शाद है गहरा सागर है शुल्क तुझको जाना दिन भर जाने जा जा रे पल्ला छोड़ छोड़ छोड़ दिन भर जाने जा जा रे पल्ला

ऊपर वाले ने सबको सब कुछ दिया है, हुनरमंद को हुनर दिया है, वही उसने ये जहां, ये खूबसूरत गांव, ये नदियां दी है। उनको देखकर हर किसी का दिल मंत्रमुग्ध हो जाता है।

तो कितनी खास बात है इस गीत में कि गीतकार रविंद्र जैन ने आंखें न होने के बावजूद अपने मुंह की आंखों से क्या क्या देख लिया।

खूबसूरती इस जहां में हर जगह है, बस देखने वाली नजर चाहिए। और वो नजर है दिल की नजर, मन की नजर।

जिंदगी से अगर कला शब्द और कला निकल जाए तो फिर ये जीवन कैसा होगा। सोचने मात्र से ही सिहरन फैल जाती है तन और मन में। बहरहाल रविंद्र जैन की गीत रचना को अभी आपने सुना फिल्म चितचोर में, और आवाज थी येसुदास की। और अब सुनते हैं जावेद अख्तर की गीत रचना फिल्म साथ साथ में।

दोस्तों, जो घर प्रेम और विश्वास पर टिका होता है उसको देखने के लिए प्रेम और विश्वास भरी नजरे की जरूरत होती है।

अचानक से बने घर का जिक्र था। फिल्म साथ साथ की इस गीत रचना में आवाजें थी जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की, गीतकार जावेद अख्तर और संगीतकार कुलदीप सिंह। सच में दोस्तों, घर बन भी जाए लेकिन वो घर सोना होता है जब उस घर में कोई अपना नहीं होता है, और जब कोई अपना उस घर में आ जाता है तो फिर

0: किसी के जीवन में नूर आ जाए और खुशी मिल जाए, बस यही दुआ है रब से। बहरहाल किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में ये था आंधी फिल्म का गीत। गुलजार की इस गीत रचना को शुरू में ढाला था संगीतकार राहुल देव बर्मन ने। वैसे दोस्तों, भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं भूले बिसरे गीत, और एक गीत वो हमको तब याद आता है जब हमारा मन दुखी होता है, हम चिंता में होते हैं, हम थकान महसूस करते हैं, तब ये गीत और इसका जो काम इस गीत में बताया गया है वो याद आता है।
1: Tell Molly, jump in.

झगड़ा, प्यार का हो गए झगड़ा या बिजनेस का हो रगड़ा, सब लफड़ों का बोझ हटे जब पड़े हाथ इत पगड़ा। सुन सुन सुन, अरे

दोस्तों, हर कोई चाहता है अपनी जिंदगी को खुशनुमा बनाना और इसके लिए लाखों करोड़ों यत्न किया जाता है, लेकिन फिर भी जिंदगी में गम आ जाते हैं और जब गमों का सिलसिला जारी रहता है तो फिर कुछ सवाल आ जाते हैं।

दोस्तों इस गीत का हर एक अक्षर हर एक शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस गीत का अगला अंतरा और भी महत्वपूर्ण है। इसमें बताया गया है

दोस्तों, गीत के आखिरी अंतरे को सुनकर शायद आपकी आंखें भी भर आई है, लेकिन सच यही है कि बस हमें जीना है, और जीना सिर्फ अपने लिए नहीं, सभी के लिए जीना है। ऐसा ही कुछ है भूले बिसरे गीत कार्यक्रम के इस आखिरी गीत में, जिसे हमने यही फिल्म अनाड़ी से मुकेश की आवाज में, यह है शैलेंद्र की गीत रचना और शंकर जयकिशन का संगीत।

दोस्तों, ये था आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये फिल्म संगीत पसंद आया होगा। मुकेश की आवाज में गई फिल्म अनाड़ी के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोंगरू चैनल है। दिन के 12 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाए। श्री मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम पुलिस को आज प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया। अलंकरण परेड का आयोजन गंगटोक में पालजोर स्टेडियम में किया गया था। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां राज्य और पूर्वोत्तर का 3रा राज्य बन गया है। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बल से अधिक नागरिक केंद्रित बनने का आग्रह किया।
1: पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाया जाना चाहिए ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही। इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में बनाना होगा।
0: इससे पहले कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया। गंगटोक के सिक्किम विश्वविद्यालय में आयोजित दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति ने यह घोषणा की। केंद्र द्वारा उल्लास पहल के अंतर्गत ये घोषणा की गई है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश की सीमाओं से 15 किलोमीटर के दायरे में किसी भी अवैध निर्माण को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गृहमंत्री ने ऐसे सभी अवैध ढांचों को तुरंत ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान के बीकानेर में सुरक्षा समीक्षा बैठक में गृहमंत्री ने भारत पाकिस्तान सीमा से जुड़े जिलों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। गृहमंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने ट्विशा शर्मा हत्याकांड में सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। भोपाल सत्र न्यायालय ने उन्हें 15 मई को जमानत दी थी। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा करते हुए शांति तथा स्थिरता बनाए रखने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया है। दोनों देशों ने भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय कार्यतंत्र WMCC की 35वीं बैठक के दौरान स्थिति की समीक्षा की। ये बैठक कल पेइचिंग में हुई। बिहार के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में भीषण आंधी, बिजली गिरने और ओलावृष्टि के कारण 8 लोगों की मौत हो गई। आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार खगड़िया और मुजफ्फरपुर जिलों में 2-2 मौतें हुई हैं, जबकि मुंगेर, भागलपुर, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में 1-1 मौत हुई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि तुरंत देने की घोषणा की है। आज ईद उल अजहा का पर्व देश भर में मनाया जा रहा है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में प्रशासन ने बकरीद को सुचारू रूप से मनाने के लिए व्यापक व्यवस्था की है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी ताजुल मस्जिद में नमाजियों ने देश में शांति, समरसता और न्याय की प्रार्थना की। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने इस अवसर पर

0: महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड ने लोगों से सार्वजनिक स्थानों या सड़कों पर नमाज न अदा करने की अपील की है। बोर्ड ने निर्धारित स्थानों पर ही लोगों को पशु की कुर्बानी देने के निर्देश के साथ ही सोशल मीडिया पर कुर्बानी की फोटो या वीडियो साझा न करने को कहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में अगले दो दिन तक भीषण लू की स्थिति बनी रहने की आशंका है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज लू का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 215.05 मीटर पर आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण। संध्या 4 बजे संदेश टू सोल्जर्स कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले करेंगे 12:10 पर सिंधी कार्यक्रम और रात 10 बजे प्रांतीय

सुगम संगीत 7:45 पर और रात 9:30 पर, वहीं लोक संगीत रात 8:30 पर प्रसारित होगा। रात 8 बजे ईद उल जुहा पर रेडियो रिपोर्ट प्रसारित होगी हमारे केंद्र से। वाचक स्वर श्री महेश उपाध्याय के होंगे, प्रस्तुति श्री रेवंत राम लेघा की है और संयोजन है श्री अमित सिंह का। दिन में 1:05 पर बहने सुनेंगी अपना घर आंगन कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में चर्चाएं होंगी आत्मरक्षा के आधुनिक गुण, ई कॉमर्स के जरिए हस्तशिल्प को बिक्री, वीडी सावरकर जीवन दर्शन में मातृभूमि, गर्मी में त्वचा और बालों की देखभाल, ईद उल जुहा और रसोई व ब्यूटी टिप्स विषयों पर। साथ ही होगा लोक

युववाणी कार्यक्रम में संध्या 5:05 पर युवा साथी सुनेंगे साइबर बुलिंग से बचे विषय पर आज की बात, लघु जानकारियां होंगी, वीडी सावरकर जयंती, संक्रामक रोग, जंतर मंतर, अक्षांश, देशांतर विषयों पर, साथ ही होगा क्विज टाइम, रोजगार सूचना और फिल्म संगीत। ग्रामीण भाई अपना ग्रामीण जगत कार्यक्रम सुनेंगे संध्या 7:00। आज के इस कार्यक्रम में चर्चाएं होंगी अधिक उत्पादन के लिए कार्बनिक खादों का प्रयोग, स्वस्थ जीवन शैली के सूत्र, गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना और मानसून का गर्भकाल है नौतपा विषयों पर, साथ ही होगा लोक संगीत।

फिल्म संगीत हम आपको सुनवाएंगे दोपहर 12:40 पर, 2:30 पर, संध्या 6:05 पर, रात्रि 9:15 पर और रात 10:30 पर।

हम आपको एक बार फिर से याद दिलवाना चाहते हैं, संध्या 4 बजे संदेश टू सोल्जर्स कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, वहीं आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले करेंगे अब

ये था कार्यक्रम विवरण। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। दोपहर के 12:10 होने वाले हैं। अब सिंधी कार्यक्रम आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले होगा।

0: सिंध जी सुरहान ऐं हिंद जी नवाण सिंधियुनि जी शान ॿुधंदा रहो आकाशवाणी तां सिंधी प्रोग्राम।
1: जी हां श्रोताओं, हमारे केंद्र से सिंधी कार्यक्रम आप सुनते हैं मंगलवार
2: गुरुवार
1: और रविवार जी।
0: पंहिंजे माज़ी सां गॾु हिन वक़्त खे बि सराहींदासीं, पंहिंजी पहचान मूजिबि कण मां मां ठाहींदासीं, सभिनी सिंधियुनि जे दिलि जी आवाज़ ॿुधाईंदासीं। ॿुधंदा रहो पंहिंजो सिंधी प्रोग्राम।
1: मंगलवार
2: गुरुवार
1: और रविवार
0: सिंधी प्रोग्राम।
3: नमस्कार साथियों, हाजिर आयो खणे आवां जो सिंधी कार्यक्रम। हन प्रोग्राम में आवां बुधंदा झलकी ए कलाम ए गडो गड चर्चा जो भी मजो मानिंदा। त साथियों, तवां अज चर्चा बुधंदा इंटरनेशनल डे ऑफ पोटैटो यानी अंतरराष्ट्रीय आलू दिवस, जेको 30 मई यानी छंछर डी मल्हायो वेंदो आहे। ऑस्ट्रेलियाई माण्हू सुठे कार्बोहाइड्रेट के छो पसंद कंदा आहिनि? ऑस्ट्रेलिया में आलू हर घर जे लाइ खास आहे। जीअं त साथियूं, हींअर ही देश लाइ ॿिए नंबर ते सभिनीनि खां वधीक खाधी वई भाॼी आहे आलू। हार्ट इनोवेशन जे आंकड़नि जे अनुसार 87% ऑस्ट्रेलियाई परिवार आलू वठंदा आहिनि ऐं हर ख़रीदार जो औसतन 1.8 किलो आलू घर वठी वेंदा आहिनि। ही पंहिंजे शरीर जे लाइ सुठो आहे। हिन में प्राकृतिक रूप सां कैलोरी घटि हूंदी आहे ऐं हिन में खास गुणवत्ता वारे फाइबर, विटामिन सी ऐं पोटेशियम सां भरपूर आहे। आलू खे पोखण जे लाइ खास खाद्य पदार्थ जी तुलना में घटि संसाधन जीअं पाणी ऐं उर्वरक जी खपत हूंदी आहे ऐं ही पंहिंजे बजट लाइ बि बेहद किफ़ायती ऐं पोषक तत्वनि सां भरपूर विकल्प जो पूरे परिवार जो पेट भरे सघे थी। आलू जो आलमी ॾींहुं हिकु अहिड़ी फसल खे वॾी मान्यता ॾिए थो, जेको हिकु ॾींहुं माण्हुनि खे एॾो कुझु ॾेई सघे थो। आलू हिकु स्वार्थ वधक थींदा आहिनि, बल्कि ही हिकु किफ़ायती विकल्प आहे जंहिंजो आनंद हर केरु वठी सघे थो ऐं हिन खे पोखण में बि खाद्य पदार्थ जी तुलना में घटि शयुनि जी खपत रहे थी। त साथियूं, अचो त ॿुधूं सतराम रोहरा जे आवाज़ में ही गीत गोवर्धन भारती जो लिखियलु।

0: साथियों हिन्दर अवा सतराम रोहरा जी आवाज में हे गीत बुधी रहा हुआ
1: मालिक जी त शुक्र कर न जी त सब्र कर यार पहनजी जिंदगी में हिनन बिन गालियों ते अमल कर अहड़ी शहानी लासानी सिंधी कौम जे लाए सिंधी प्रोग्राम आरतवार मंगल ए विस्पत जे दी आकाशवाणी जयपुर अजमेर जे आमिर चैनल ता बुधना रहो सिंधी प्रोग्राम
0: हाने अचो त बुधु झलकी अमृत जी तलाश हनन जा लेखक आहिन एनडी मूलचंदानी निर्देशन आहिन चंद्र प्रकाश आडवाणी कलाकार आहिन तुलसी नरियानी कन्हैया लाल मेठवानी सोहन थदानी ए मोहन चेलानी

0: बहादुर ओ राय बहादुर
1: अच अच यार अच
0: हजूरे आला सिरु जो सलाम कबूल कयो की खुश मजे में बैठा आयो ना तबियत त गार्डन गार्डन आए ना
1: अच सेठ सिरु मल घणन दिन खां पो इन तरफ आयो आई किथे गर्क थी वे में हितरा दिन अरे नंडपण जो दोस्त आई पर राही कोन थो रुखा रुह
0: छो राय बहादुर छा गाल आए हुकुम कर बंदो हाजिर है पर ही छा तुझो चेहरो लथल पियो लगे आए त खैर न
1: बियो त सब ठीक है पर मुखे एक चिंता केतरन दिन खा खाई रही है आई उन जो अज दिन ताई हल कोन मिलो है
0: छो तमा त पांजे इलाके जा नाम्यारा धनी सेठ आयो धनी पंजा वडा वडा कारोबार जमीन जायदादू बंगला मारियू मोटर कारियू अथव ऐसा ही दुआजा शरीर भी सुठो सुंदर ऐसु डोले सकमो अथव
1: बराबर।

0: शहर जा वड़ा वड़ा मानू में मौत पर बतावा जी इज्जत कन
1: सही बात है
0: वेंदे काम और आप तवा का कन होना साई पो बला कैडी माजरा है जो चिंता था
1: अरे इहाई तो चिंता है त दुनिया जा हेतरा सुख सुदाऊ धन दौलत इज्जत आबरू मान मर्तबो है पर जिंदगी जो कहड़ो भरोसो
0: छो
1: आजकल खबरों बुद्ध जने पढ़ जने थियो त हवाई जहाज में छा ट्रेन बस में मार्केट में बम था फाटन
0: बराबर
1: हजारे मानू सेकंडन में मरी था वजन मुझी तो दिल कुड़े वांगुर से कंबे मान हुंदस तपो ही माल मता महल मारियों कहड़े कम जा सिज चंड तारा सब हुंदा पर मान हुंदस अफसोस मान हुंदस हाय अफसोस मान हुंदस
0: बस बस बस राय साहब बस एडो दिलगीर न थी सच चवाए यार एडो वडो दिग्गज सेठाई पर कले जो कुकुड़ जड़ो थी कुकुड़ जड़ो ईश्वर जेत्रो जीवन लीलाट में लिखो आए ना उन खा अग केर भी कंखे न थो मारे सके
1: बराबर
0: करोड़े मानू दुनिया में रहन था उहे भी तो
1: अरे दुनिया जा वडा वडा मानू सब गुंडन जे लिस्ट ते आइन ए मां जरूर हुंदस मां मरण न सोचा मां अमर रहन थो चाहा देवताओं वांगुर मां अमर जीवन जीण थो चाहा एक लाजवाब मिसाल थी करे कंदे मदद
0: मां
1: पो केतरो भी धन छोड़ लगी वने
0: लगे थो त राय बहादुर जे दिमाग जो लीवर ढिलो थी पियो आहे या वरी मेजाले जो मरकज थिरकी वियो अथस करोड़े मानू था दुनिया में रहन एही राय बहादुर त पान खुद ब खुद पूर पचाईंदई राह रबानी थी वेंदो
1: अरे सीरू सखणा छापे बड़बड़ करी
0: कुछ बना साईं कुछ बना बस सोचा पियो अमर जीवन जीण जो विचार त सुठो पर मुमकिन ढाढो मुश्किल साईं ढाढो मुश्किल अजु ताई को ब अमर कोन रहयो आहे मानू ठला नारा हणदा आइन त फलाणो सेठ अमर रहे फलाणो महात्मा अमर रहे संत महात्माऊं राजा महाराजा वडा वडा वीर बहल्या व्या तवा यो किया था भला मुमकिन करे सको
1: अरे मूर्ख दुनिया में काब गाल नामुमकिन कान थी दिया है इम्पॉसिबल वर्ड इज फाउंड इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स तो धर्म ग्रंथन में कोन पढ़े हुआ है त दैतन देवताओं समुंड विलोड़े हो उनमा अमृत निकतो हो जेको देवताओं पी करे अमृत थी गया पोई मां मां छो तो अमृत थी सगा रुगो अमृत खपे ओ हथ लगे रुगो
0: अच्छा राय बहादुर तवा के मरण जो डप की है ए छो अची बैठो आए
1: सिरु बुद्ध मुझो चाचो ताजो गुजारे वे हो मां जने शमशान में संदस अग्नि संस्कार लावेस त डिठो त चाचो की ने बेवसी जी हालत में बुंडन लकड़ियों के बिच में सुम्यो पो आए संदस पुट वेझा मिट माइट उन अखिन न कई वात में अण ठहकंदड़ शयू गीह माखी खीर चंदन बेतरकीब थफे रहा
0: बराबर
1: खिन पल में प्राणियों जो शरीर लकड़ियों घास फूस के अंबार अंदर ढक तै संदसी पुट पेंजो ही जनों औलाद भावर चैनी तरफ खा खेत बाह लगा ला वकुड़े व्या वेझा मिट माइट अजीज दोस्त भी ये कर लगा
0: अच्छा
1: दिसंदे दिसंदे अर्थ जे चौधारी बाह जो लपटू निकल लगे सब घर जा भाती मित्र साथी अग्नि जो यो तांडव नाच दिसंदा रहा कुछ ही देर में चाचो रख जी धेरी थी बियो अल्लाह केरी न पीड़ा ही तड़पण थी हुंदी मुझे चाचे की अज मां बुआ आग जी जलन महसूस करे रहे हुआ या दर्द भरी गाल विसरे न थी मां मरण न सोचा अमर जीवन जीण सोचा
0: बस बस राय बहादुर बस मां तवां जी मानसिक पीड़ा महसूस करियां थो तवां जे हिन कमलाए कोन जाखोड़ी मानू अमृत जी

0: अल्लाह करे शायद तव्हां खे अमर जीवन लाइ का युक्ति मिली वञे।
1: सीरो, तोखा वधीक कहिड़ो जाखोड़ी माण्हू थी सघे थो
0: मां
1: जो मूंखे हिन कम में मदद करे? तू मुझे नंढपण खां जिगरी दोस्त आई न,
0: सो त बराबर,
1: ऐं मुझे भले बुरे जो ख्याल बि करी थो।
0: हा,
1: मुझे तो ख्याल आहे त तू हिन कम लाइ निकिरी पओ।
0: त मां साईं चङो, जे तव्हीं मूंखे हिन कम लाइ लाइक़ु सम्झो था त मां तव्हांजी ख़ातिर हिन जुस्तुजूअ लाइ वञण लाइ तयारु आहियां।
1: जे तूं मुंहिंजी जिज्ञासा पूरी करण में मदद कई आहे त मां तुंहिंजो थोराए थो रहंदुसि। हा, ही वठि 2 लख रुपया ऐं अमृत जी तलाश लाइ निकिरी पओ। तूं पुठि पुठि जो ख़्यालु आई ओनो न कजे। अरे बाबा, असीं वेठा आहियूं न, तोखे ॿियो बि पैसो पंजर खपे त वठिजे, पर कमु पूरो करे अचिजे।
0: चङो साईं, चङो, आसरो राम जो, मां हलां थो। प्रभु चाहियो त मां इहो कमु पूरो करे ई मोटंदुसि।
1: अचु सेठ सिरूमल, सुख सां अची वे न। ॿुधाए दोस्त, ॿुधाए पंहिंजी तलाश जी तफ़सील। मां ॾाढो मंतज़र आहियां तुंहिंजे चेहरे जी चमक ॿुधाए थी त ज़रूरु का आशा भरी ख़बर खणी आयो आहीं। आहे न इहे
0: राय बहादुर, सचु ॿुधायांव?
1: ॿुधाए, ॿुधाए।
0: सचपच हीअ ॻोल्हा जाखोड़ खां घटि कान हुई साईं।
1: अच्छा,
0: मां हिन महीने में हिकु ॾींहुं बि हिकु हंधु कोन वेठो आहियां।
1: हा,
0: जिथे बि अमर जीवन जे अमृत लाइ को ॾस थिए मिलियो, ओॾां थी डोड़ियुसि। न राति थिए ॾिठमि, न ॾींहुं।
1: अरे पर थियो छा?
0: न आराम जो थिए ख़्यालु कयमि, न ओजागे जो।
1: वाह भाई,
0: बस बंदूक जी गोलीअ वांगुरु थिए उते पहुतुसि, जिथे अमृत मिलण जी का आशा थिए ॾिसण में आई।
1: वाह भाई वाह।
0: साईं, मां नवनि पुराणनि वैद्यनि हकीमनि ऐं डॉक्टरनि सां मिलियुसि।
1: हा,
0: वॾनि वॾनि विद्वाननि ऐं पंडितनि सां मुखातिब थियुसि।
1: पोइ छा थियो?
0: ऐं अमृत लाइ मालूमात कई।
1: ओहो,
0: राय बहादुर साहिब, मां कुदरत जे हिन नायाब वस्तुअ लाइ कुदरती इलाज घरनि, योग आश्रमनि में बि वियुसि। उते योगासन, प्राणायाम वग़ैरह केतिरियूं क्रियाऊं शरीर खे नओं बनो रखण लाइ ॿुधायूं वयूं।
1: अच्छा,
0: पर को बि मृत्युअ खां निजात पाइण जो तरीक़ो कोन ॿुधाए सघियो।
1: इहो वरी छा थो चई?
0: बस आख़िर मां निराश थी वियुसि ऐं सोचियुमि त तव्हां वटि कहिड़ो मुंहुं खणी मोटां। बस इन सोच में ई हुउसि त अचानक हिकु महाविद्वान बुज़ुर्ग पंडित सां गॾिजणु थियो।
1: अरे वाह,
0: उन मुंहिंजी निराशा जो कारण पुछो।
1: अच्छा अच्छा,
0: मूं हुन खे तव्हांजी मनोवेदना ॿुधाई।
1: ॿुधाए।
0: ऐं पंहिंजी उन अमृत लाइ तलाश बि ॿुधाई।
1: वाह वाह,
0: हुन हमदर्दी ॾेखारींदे ॿुधायो त असांजी मनशा पहाड़ ते हिकु पहुतल महात्मा केतिरनि सालनि खां समाधीअ में आहे।
1: पोइ छा थियो?
0: बस उहो जल्दी समाधी खोलण वारो आहे, जे न उहो राज़ी थी वरदान ॾिए त तव्हांजी मनशा पूरी थी सघे।
1: अरे वाह, मज़ो अचे।
0: पर साईं ॾिसो, उन जी शेवा में राय बहादुर खे पाण ई वञणो पवंदो।
1: धन्यवाद सेठ सिरूमल, तुंहिंजो महात्मा जे बारे में ॾस पतो सम्झो। हाणे मां खुद ई महात्मा जी शेवा में वेंदुसि। चङो दोस्त, हाणे मोकिलाणी आसरो राम जो।
0: चङो साईं, आसरो राम,
1: राम जो। पहाड़ ते केॾो न मनमोहक नज़ारो आहे। हिन गुफा में महात्मा जी त समाधि में वेठो आहे, पर हिते मन खे केतिरो न सुकून ऐं आनंद मिली रहियो आहे। गुफा मां धीमे धीमे यानी मंद मंद खुशबू अची रही आहे। इहा महात्मा जी तमहक आहे जेका दिल बहार बहार करे रही आहे। हा, मूंखे एकवीह ॾींहं थी विया आहिनि महात्मा जी सेवा में। लॻे थो त महात्मा अॼु समाधि खोलनि। हा बराबरि, अरे महात्मा जे शरीर में चुरपुर थी रही आहे। ऐं हा, हाणे अखियूं बि खोलियूं अथसि। मनशा पहाड़ी बाबा जी जय! मनशा पहाड़ी बाबा जी जय! मनशा पहाड़ी बाबा जी जय!
2: जय भोले, जय भोले। बच्चा, मूं अंतर ध्यान सां ॾिठो पिए त तूं केतिरनि ॾींहनि खां वठी

0: तन मन ऐं धन सां सेवा टहल करे रहियो आहीं। पहाड़ जे कठोर जीवन में भी तूं सेवा में तलीन रहीं थो। तुंहिंजी सेवा कबूल पई बच्चा, घुर तोखे छा घुर्जी?
1: महात्मा जी, तव्हां त पहुतर दरवेश आहियो, तव्हां लाइ का बि ॻाल्हि नामुमकिन कोन्हे। मूंखे मूंखे हुन अमृत जो वरदान ॾियो, जंहिंजे पीअण सां इंसान अमर जीवन खे प्राप्त थिए थो ऐं मृत्यु खां छुटकारो पाए थो।
0: जय भोले, जय भोले। इहो तूं छा चई रहियो आहीं बच्चा? इहो त तमामु ॾुखियो वरदान आहे। अॼु ताईं कंहिंखे बि मूं अहिड़ो वरदान कोन ॾिनो आहे ऐं न वरी मूंखां कंहिं घुरियो ई आहे।
1: महात्मा जी, तव्हां त दयालु आहियो, मूंखे निराश न करियो, मूंखे अमर जीवन जो वरदान ॾियो। तेसि ताईं मां बि तव्हांजो दर हरगिज़ कोन छॾींदुसि।
0: जय भोले, जय भोले। चङो बच्चा, ॿुध ऐं ध्यान सां ॿुध।
1: हा चओ महाराज।
0: हिन पहाड़ जी ओभर तर छेड़े ती
1: हा
0: हिकु गुफा आहे।
1: अच्छा।
0: उन जे अंदरि हिकु सुरंग आहे।
1: अच्छा अच्छा।
0: ऐं उन जे अंदरि हिकु अमृत जो कुंड आहे।
1: वाह।
0: उन मां जेको अमृत पीअंदो उहो अमर थी वेंदो।
1: वाह वाह।
0: तूं वञ, हींअर ई वञ, तुंहिंजी मंशा ज़रूरु पूरी थींदी ऐं तोखे अमृत मिली वेंदो।
1: ओह, हाणे त पहाड़ जो छेड़ो बची वियो आहे। अड़े ओझा, परियां परियां हिकु गुफा पई नज़र अचे। गुफा गुफा जे अंदरि बराबरि सुरंग बि आहे। वाह वाह, महात्मा जो ॾसु सही पियो लॻे। सुरंग में कुझु आहे, परियां परियां हिकु मनमोहक रोशनी पई नज़र अचे। पर वेझो वञी ॾिसां त छा आहे? अड़े वाह, खीर जहिड़ो सुफेद निर्मल जल जो कुंड आहे। पक ई पक, इहो ई महात्मा जो ॿुधायल अमृत जो कुंड आहे। हाणे हाणे त मां अमृत पीअंदुसि ऐं हमेशह लाइ अमर थी वेंदुसि। मां ऐश ऐशरत कंदुसि, दुनिया जा सभु मज़ा ऐं मौजूं माणींदुसि। जय मनशा पहाड़ी महात्मा जी जय, जय मनशा पहाड़ी महात्मा जी जय। अड़े अड़े, करहाने कुंजन जो आवाज़ कंहिंजो अची रहियो आहे? लॻे त के माण्हू जो आवाज़ पियो। वेझो झाड़ियुनि जे भरिसां वञी ॾिसां त केरु आहे? अड़े, ही त तमामु ॿुढो झूर इंसान आहे। वार वॾा, अखियुनि ऐं मुंहं में पिया पवनसि, शरीर गंदो ऐं मेरो ऐं तमामु निबुल। अमृत जे कुंड भरिसां वेठो आहे। अड़े अड़े बाबा, तूं केरु आहीं? हिते हिन हालत में छो पियो कराईं? अरे का तकलीफ़ अथई छा?
2: राय बहादुर, मां बि तो वांगुरु हिकु वॾो पूंजीपति सेठ होसि।
1: अच्छा अच्छा।
2: ऐं हिते अमर थियण लाइ अमृत पीअण लाइ आयो होसि।
1: हा हा।
2: अमृत पीतुमि ऐं अमर थी वियसि। सवे साल गुज़री विया आहिनि, हाणे मां मरी त नथो सघां, पर ई शरीर ॾींहों पोइ ढहंदो ऐं झुरंदो पियो वञे, जंहिंमें का बि तौफ़ीक़ कान आहे। मां लाचार ऐं बेवस थी पियो आहियां, जंहिंमें हर रोज़ जी पीड़ा मौत जी पीड़ा खां बदतर आहे। हाणे हाणे राय बहादुर, तूं अची वियो आहीं। वठ वठ ही अमृत जो प्यालो पी, त मुंहिंजी देह जो छुटकारो थिए। इहो हिन अमृत जो क़ाइदो आहे।
1: छा मतलबु?
2: मतलबु त तूं अमृत जो प्यालो पीअंदे त तूं बि अमर थी हिते वेहंदे ऐं मां हीअ देह छॾींदुसि।

0: वरी जॾहिं तुरो जहिड़ो ॿियो को सेठ अमृत पीअण जो चाहे के हिते ईंदो त उहो तुंहिंजी जाइ विलारींदो। हाणे जल्दी कर, अमृत जो प्यालो पी वठ, पी पी पी यार पी, अमर जीवन जीअण लाइ ही अमृत जो प्यालो पी। अब जल्दी पी, जल्दी पी,
1: मूंखे अहिड़ो अमृत न खपे, मूंखे अहिड़ो अमृत न खपे, न खपे, न खपे। अरे ही छा सुरंग में, सुरंग में अंधेरो थी वियो, गुफा गुफा जो दर बंदि थी वियो। मां मां केॾांहुं वञा, मुंहिंजो त साह जो घुटिजे, मूं साटिजे, मूंखे मूंखे कुझु ॾिसण में नथो अचे, मूंखे मूंखे चकर था अचनि। हाणे हाणे मां छा करियां? ओ मनशा पहाड़ी महात्मा जी, मूंखे बचायो, मूंखे बचायो, मूंखे मूंखे अमृत न खपे, मूंखे अमृत न खपे, मूंखे अमृत न खपे। ही ओचितो हेतिरी चमकंदड़ सूरज जहिड़ी रोशनी किथां आई? थधी हवा जो झोंको वजे पियो। महात्मा जी, तव्हां दया पाले प्रगट थिया आहियो, धन्य आहियो, धन्य आहियो, ही तव्हांजो ई चमत्कार आहे। हाणे हाणे मूंखे बचायो, महिरबानी करे मूंखे बचायो, मूंखे बचायो।
2: जय भोले, जय भोले। बच्चा, तू अमर जीवन जो अमृत पीतो?
1: न महात्मा जी, मूंखे अमृत न खपे, मूंखे अमृत न खपे।
2: बच्चा, तू छा चई रहियो आहीं? तू अजायो भटकी रहियो आहीं, ध्यान सां ॿुध। तू खुद अमर आत्मा आहीं, हिन खां अॻु बि हुएं ऐं हिन खां पोइ बि अमर आत्मा जे रूप में रहंदे। बच्चा, ही शरीर त नाशवंत आहे, ही संसारी पदार्थ सभु बेबका ऐं फना आहिनि। कुदरत जेको ॼमण मरण जो नियम ठाहियो आहे उहो अचूक, अटल ऐं हितकारी आहे। उन में ई मानव जाति जो भलो आहे। ॿियो नओं जनम, नई जवानी, नवा उमंग, नवा उत्साह, सभु कुझु नओं ई नओं आहे। इहे सभु मानव जातीअ लाइ कुदरत जी सौगात आहिनि। बच्चा, इहो हिकु सोनो मौक़ो आहे मानव लाइ शुभ कर्मनि करण जो ऐं जीवन सफल करण जो। बच्चा, तूं अमर आत्मा जो अलौकिक आनंद वठ, आनंद वठ। इहो ई सचो अमृत आहे, अमर जीवन जीअण जो। इहो ई सचो अमृत आहे, अमर जीवन जीअण जो।
1: हा ही छा महात्मा जी त अंतर ध्यान थी वियो, गुफा जो रस्तो साफ नज़र अची रहियो आहे, ॿाहिरि ॿाहिरि माण्हुनि जा मेड़ बीठा आहिनि। दोस्तो, साथियो, आत्मा अमर आहे, मूंखे अमर जीवन जो अमृत मिली वियो, मूंखे अमर जीवन जो अमृत मिली वियो, मूंखे अमृत जीवन जो अमृत मिली वियो, मूंखे अमर जीवन जो अमृत मिली वियो, मूंखे अमर जीवन जो अमृत मिली वियो।
3: साथियों, हिंदर अवा झलकी बुधी रहा हुआ अमृत जी तलाश। लेखक हुआ एंडी मूलचंदानी, निर्देशन हुआ चंद्र प्रकाश आडवाणी, कलाकार हुआ तुलसी नरियानी, कन्हैयालाल मेठवानी, सोहन थदानी, मोहन चेलानी। त साथियों, हिंदर अवा ही झलकी बुधी रहा हुआ।
4: इन झलकी सा गड ही असांजी प्रोग्राम जो वक्त इते ही पूरो तो थिए। वरी हाजिर थींदासीं इंदर आर्तवार ते इन्हीं ही दिया में 12:10 ते। तेसी ताई इजाजत दींदा हेमलता बालवाणी के। नमस्कार।

हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। इस समय दोपहर के 12:40 हुए हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत।

0: आशा भोसले और शमशाद बेगम की आवाजों में ये था नया दौर फिल्म का गीत। साहिर लुधियानवी के बोल और ओपी नैयर का संगीत था।
1: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
2: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
1: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।

0: बीकानेर के संग।
1: जी हाँ, अपने उत्पादों, सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
0: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
1: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
0: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
1: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
0: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
1: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
0: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज़ जन जन तक।
2: अब हम आपको सुनवा रहे हैं निकाह फिल्म की ये गीत रचना। महेंद्र कपूर और सलमा आगा की आवाजों में। हसन कमाल के बोल हैं और रवि का संगीत।

फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर के ढोलमारू चैनल से। अब हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और मुकेश के युगल स्वरों में मेरी हम सफर फिल्म की ये गीत रचना। गीत आनंद बख्शी का है और संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोलमरु चैनल है। दिन के 1 बजने वाले हैं अब हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले होंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। देश के विभिन्न हिस्सों में आज ईद उल अजहा धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। सुबह ईदगाह और मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की गई। बाद में लोगों ने एक दूसरे के गले मिलकर ईद की बधाई दी। प्रदेश में भी घर घर कुर्बानी की रस्म अदा की जा रही है। राजधानी जयपुर की जामा मस्जिद सहित अन्य प्रमुख मस्जिदों में विशेष नमाज अदा की गई। इनमें बड़ी संख्या में अकीदतमंद पहुंचे और देश में अमन चैन की दुआ की। भरतपुर में कुम्हेर गेट स्थित ईदगाह पर मुख्य नमाज अदा की गई। इस दौरान यहां मेला भी लगाया गया। डूंगरपुर में शहर में ईदगाह तक जुलूस निकाला गया और सामूहिक नमाज अदा की गई। इसी तरह भीलवाड़ा, बाड़मेर, पाली, करौली, सवाईमाधोपुर, जैसलमेर, झुंझुनू और चूरू सहित सभी स्थानों पर यह त्योहार अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि सीबीएसई की 12वीं कक्षा में अब पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। नई दिल्ली में सीबीएसई अधिकारियों के साथ बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए श्री प्रधान ने कहा कि अधिकारी ये सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी छात्र की कोई भी शंका अनसुलझी न रहे और सभी स्तरों पर जवाबदेही सुनिश्चित हो। उन्होंने कहा कि ये पहली बार है जब सीबीएसई ने देश में ऑन स्क्रीन मार्किंग को लागू किया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भारत में मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों पर अपनी सिफारिशों से जुड़ी विस्तृत रिपोर्ट गृह मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को सौंप दी है। ये रिपोर्ट व्यापक विचार विमर्श के बाद तैयार की गई है, जिसका उद्देश्य देशभर में मुस्लिम महिलाओं के कानूनी, सामाजिक और संवैधानिक अधिकारों को मजबूत करना है। आयोग ने कहा कि हाल के कानूनी सुधारों से महिलाओं के अधिकारों को मजबूती मिली है, लेकिन कानूनी जागरूकता और न्याय तक पहुंच को और बेहतर बनाने की आवश्यकता है। प्रदेश में 1 से 30 जून तक बाल श्रम, बाल बंधुआ मजदूरी और बाल तस्करी के खिलाफ विशेष अभियान उमंग 7 चलाया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य बाल श्रम और बाल तस्करी जैसी गंभीर सामाजिक बुराइयों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना तथा पीड़ित बच्चों का पुनर्वास सुनिश्चित करना है। अभियान के प्रभावी संचालन के लिए जिला पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं। अभियान के दौरान होटल, ढाबों, ईंट भट्टों, फैक्ट्रियों, रेलवे प्लेटफार्म, बस स्टैंड, धार्मिक स्थल तथा अस्थायी बस्तियों में रह रहे बच्चों की स्क्रीनिंग की जाएगी। अजमेर के किशनगढ़ एयरपोर्ट से हवाई यात्रियों के लिए इंडिगो आगामी जुलाई माह से 2 नई उड़ान सेवाएं शुरू करने जा रही है। किशनगढ़ को दिल्ली और नोएडा से जोड़ने वाली इन नई फ्लाइट्स के शुरू होने से अजमेर, किशनगढ़, ब्यावर और आसपास की बड़ी आबादी को बेहतर और तेज हवाई कनेक्टिविटी मिल सकेगी। एयरपोर्ट डायरेक्टर बीएस मीणा ने बताया कि 1 जुलाई से दिल्ली किशनगढ़ दिल्ली फ्लाइट सेवा शुरू होगी। ये उड़ान सप्ताह में 4 दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को संचालित की जाएगी। इसके अलावा 2 जुलाई से नोएडा किशनगढ़ नोएडा फ्लाइट सेवा भी शुरू की जाएगी। ये सेवा सप्ताह में 3 दिन मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को संचालित होगी। अजमेर जिले में आज एक स्कॉर्पियो में आग लगने से एक ही परिवार के 4 लोग जिंदा जल गए। घटना बोराड़ा थाना क्षेत्र के श्रीरामपुरा गांव के पास हुई। इस घटना में पूर्व सरपंच राम सिंह चौधरी, उनकी मां, पत्नी और भांजी की मौत हो गई। चारों के शव स्कॉर्पियो में बुरी तरह जले हुए मिले। हादसे के बाद पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाल सहित पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। मामले की जांच जारी है। प्रदेश में नौतपा के दौरान सूरज आग बरसा रहा है। सभी शहरों में बढ़ते तापमान और लू के थपेड़ों से जनजीवन

0: प्रभावित हो रहा है। दिन के समय सड़कों पर अघोषित कर्फ्यू जैसे हालात बने हुए हैं। पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा दिन का तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस श्रीगंगानगर में रिकॉर्ड हुआ। पिलानी में 47, जोधपुर में 46.6, जैसलमेर और चूरू में 46.4, कोटा में 45.4, बाड़मेर, फतेहपुर शेखावाटी में 45, अलवर में 44.8 और लूणकरणसर में 44.7 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ। भीषण गर्मी के बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के 11 जिलों में आंधी और हल्की बारिश की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार दोपहर बाद एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम में हल्का बदलाव देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज और एफएम के 101.6 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मरू चैनल है। दिन के 1:05 हो चुके हैं। अब बहिमा सुनेंगी अपना घर आंगन कार्यक्रम।

0: घर आंगण सुन नाली मार प्यारी सी फूटरी सी सखिया ने मार अमा छंगाणी और
1: मैं संतोष अनुराग
0: गणा गणा राम राम सा।
1: रमाबेन बिना और अपन वातन शुरू हो गए हूं सु पहला मैं थाने ही एक बात पूछनी चाहूं
0: कई
1: कि आज थारो और रूप मने न्यारो ही लिखावे चोटी में चमेली ये फूल हारो गजरो हाथ में हरी हरी चूड़िया नाक में नथ हाथ में मेहंदी और आज ओ थारो सगड़ो जो श्रृंगार है तो साची बताऊं गणी फूटो लगे कहीं घर में कोई उचवे तो गए।
0: हाँ संतोष ठीक समझी क्योंकि सामान्य दिन मैं तो आप देखो लगाए तो श्रृंगार आपा ने बखती कोनी मिले करण में और इतरो श्रृंगार करनो राखो आपा राग भी कोनी सका और आज ये दिन जठे मैं बात बताऊं तो आज इन निराले श्रृंगार पीछे कारण है कि आज मारे देवरी सगाई ही और मैं भाभी हूँ तो इतरो श्रृंगार करना तो देखो बड़ी है क्यों।
1: बिल्कुल बिल्कुल बात बिल्कुल सही है। देखो कि आपा लुकी जात में सजने समय में बस मौको मिलना चाहिए जी वो मौको आपने मिल जावे तो आप श्रृंगार करने में और उन मांगलिक अवसरों उत्सव मनाने में आप कोई कमी नहीं छोड़ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: बिना घर परिवार में सगाई हुए या ब्याह हुए या नामकरण हुए कोई भी शुभ बेला हुए तो एक लुगेरी अनमोल भूमिका रिया करे है। और रामा बेन सगड़ा सु घणो हारक भी लुगाया में ही नजर आवे।
0: बिल्कुल संतोष और एकदम थे सही कह रहे हो क्योंकि देखो बेना मांगलिक अवसर होवे शुभ बेड़ा होवे तो महिला मा चाव सु सजे समरे है रंग बिरंगी पोशाक पहने और गहना गोठा पहने मेहंदी लगावे मौली टीका लाली और सगलो श्रृंगार एक लुगाई रे कोड ने बयान करे है। और बेना गीत संगीत और लोक परंपरा ने जिंदा राखण में भी आपा लुगाए रो योग दान सब सुबड़ो होया करे है।
1: बिल्कुल रिया करे और लुगई सिर्फ घर ने ही नहीं सजावे बल्कि आपरा प्रेम स्नेह अपनत्व विश्वास और संस्कार आसू रिश्ता ने भी सींच रखे है जिनसु रिश्ता भी परस्पर मीठा बनोड़ा रहे है। और ओ एक लुगीरो बड़ो धर्म ही है कि बे आपरा परिवार वाला ने एकजुट बनाए रखे ज्यों की एक फुलारी माला।
0: बिल्कुल सही कह रहे हो संतोष। और बेना लुगाई रो जो विश्वास अपनत्व और उत्साह देखने लायक होया करे। और सही बात बताऊं तो संतोष कोई भी सगाई हुए या ब्याह हुए या कामरी कोई भी जिकी रौनक होया करे वह लुगाई सु ही होया करे जबकि परिवार में भी परिवार ने आपरे एक सूत्र रे मायने बांध रखे और सगाई ब्याह या हर नेक चार रे मायने कोई भी अपने घर रे मायने बड़ो सु बड़ो काम हुए अपनी संस्कृति ने जीवत राखनो है वो भी एक लुगाई रो ही काम होया करे। तो बेना बाता तो आपानी होती रही और मांगलिक अवसरी बात करी है तो सुना चलो आप फूटरो सो गीतड़ लो।

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: बिना चूंकि आप सगड़ा जाने हाँ कि आज ईद उल जुहा है जो मैं आप बकरीद भी कहते हैं। आज मुस्लिम समाज रो एक महत्व त्योहार है और आज वो दिन ही हजरत इब्राहिम रे त्याग और समर्पण की भावना ने याद दिलावे।
1: बेना ईद रे इन मौके पर मुस्लिम समाज रा लोग ईद रे नमाज अदा करे और एक दूसरे ने मुबारकबाद देवे और जरूरतमंदारी मदद भी करे और त्योहार बेना प्रेम भाईचारो त्याग और मानवता रो संदेश दिया करे है।
0: तो आपा आपना मुस्लिम भाई बहना ने ईद री मुबारकबाद तो देवे है लेकिन साथे साथे रमा पेन आज एक विशेष दिन और है।
1: अच्छा
0: कि आज आपने भारत देश रा महान क्रांतिकारी वीर सावरकर जी री जयंती है।
1: अच्छा
0: वो अच्छा समाज सुधारक हा और एक चावा ने ठावा राष्ट्रवादी नेता हा। उनारो जन्म बेना 28 मई यानी कि आज ही दिन महाराष्ट्र में हुए हो।
1: बिल्कुल सही कह रहे हो संतोष। और देखो बेना वीर सावरकर जी बचपन से ही मन रमाइने देशभक्ति री भावना राखता। अंग्रेजी शासन से देश ने आजाद कराने खातर एक कई तरह री क्रांतिकारी गतिविधियां रे मायने भी भाग लियो। वीर सावरकर जी अंग्रेजा रे काला पानी री कठोर सजा बाबी भोगी थी पर फिर भी है हार कोनी मानी और आपनो राष्ट्र सेवा रो जको मार्ग बिना कदे कोनी छोड्यो।
0: रमबिन राष्ट्र हितने तो उनार योगदान अमूल्य मानी जावे और उमान देशवासियां मन स्वाभिमान साहस और राष्ट्र प्रेम री भावना ने भी जागृत की दी। वीर सावरकर जी रा जीवन रा जगह त्याग संघर्ष और भक्ति ने आज आपा याद करा हां और आपने जीवन में भी आपा अंगे जहां।
1: बिल्कुल संतोष। वीर सावरकर जी रे राष्ट्र प्रेम री भावना सो उनारे संघर्ष सो विचार सो आपा सगला ने भी प्रेरणा लेनी चाहिए और संघर्ष देशभक्ति रे भावने समझनो चाहिए और एड़ा महान पुरुषारा जी का व्यक्तित्व है बिहार जी को चरित्र है वो आपने अपने जीवन रे मायने उतारने चाहिए।
0: और ओ भारत और ओ राजस्थान बिना देवता री भूमि रे है वीर सपूता री धरा रे है।
1: बिल्कुल
0: तो वे आपा ना जी का महान सपूत हा उनर कृत्य हूं आपा ने देश ने की तू हर हुए है वो आज उन जोग है। तो आपा आप इन्हीं कड़ी के साथ उन वीर सपूता ने नमन करा हूं और हला सुना वाच।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र इस अभियान में एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: बिना आज रे आधुनिक प्रखतनाएं आत्म सुरक्षा हर व्यक्ति यानी कि खासकर महिलाओं और बालिकाओं खातिर घनी ही जरूरी है। आत्म सुरक्षा का मतलब खाली आप रो बचाव करना ही नहीं है, बल्कि जागरूक रहना भी है। सही निर्णय लेना, कठिन परिस्थिति में हिम्मत से काम लेना।
4: बिल्कुल वैना, और आजकल महिलाएं पढ़ाई, नौकरी और समाज रे हर क्षेत्र रे मायने आगे बढ़ रही है। एडे रे मायने उन्होंने आप रे सुरक्षा रे संबंध रे मायने जानकारी लेनी बहुत जरूरी है। मोबाइल रो जरूरी नंबर है जिको भी आने आप रे सेव कर रखना चाहिए। अनजान लोगा सु सावधानी रखनी चाहिए। सार्वजनिक स्थान पर सतर्कता रखनी चाहिए और आप रे आत्मरक्षा रा सामान्य जी का गुर है माने सीखना चाहिए। इंद्र अलावा संतोष, देखो आत्मरक्षा रे आधुनिक गुण रे मायने भी अपने शारीरिक जी को क्षमता है बीरो भी ध्यान रखना चाहिए। यानी कि मानसिक जागरूकता रे सागे सागे तकनीकी ज्ञान और त्वरित निर्णय की क्षमता है भाभी एक महिला रे मायने होनी चाहिए। अब जे सोच रहे वाला बहना कि त्वरित क्षमता, मानसिक ज्ञान ए भाई एक किन तरीके रा गुण है, तो बहना थारी जानकारी रे खातर बता दूं कि त्वरित क्षमता यानी कि थाने ऊपर कोई अचानक सो हमला हो रियो है जिके रे थाने बाणी कोनी हो कि भाई इस तरीके से कोई बात हो जावे, तो उन स्त्री उन स्थिति रे मायने आपने आप रे खनिज की भी वस्तु है, चीज है, बिनने ही आप रो हथियार बनावना है। यानी कि मान लो आप रे खने कोई चाबी रो छल्लो है तो उनने ही क्या है कपड़े रे मायने बांध पर आप वार कर सका। इनरे अलावा थन खने कोई सुगंध रो या स्प्रे रो कोई सीसी है तो बिनसु भी थे बिरु पर वार कर सका। और इनरे अलावा बहना अगर थाने कोई संभावित स्थान रे ऊपर थाने कोई इस तरीके की आशंका लगे तो थे थाने व्यवस्थे रे मायने बैग रे मायने मिर्चा री पूड़ी है या कोई इस तरीके का पदार्थ है वो भी राख लेना चाहिए, क्योंकि यथासंभव बिरो उचित इस्तेमाल कर परा ते थारी आत्मरक्षा कर सको।
3: बिल्कुल सही बात है। और बिना आत्म सुरक्षा आत्मविश्वास नहीं बढ़ावो दे।
4: बिल्कुल,
3: जब कोई व्यक्ति जागरूक और सजग रहे तो वे ने मुश्किल हालात में भी अच्छी पहुंचू हुए सामना कर सके है। तो आप सगड़ा आत्म सुरक्षा ने आपारी दिनचर्या हिस्सों बनाना चाहिए और सुरक्षित, सशक्त और आत्मनिर्भर समाज रू आपने निर्माण में आप जो योगदान है वे देना चाहिए।
4: बिल्कुल,
3: तो सा आतो ही गणी आची चर्चा अभी हालना फिर मनोरंजन समय सुना लायक आचो सो की।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज़ जन जन तक।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए, उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: एक जमाने से कहानी है, सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानियां सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: संतोष, आज रे डिजिटल युग रे मायने ई कॉमर्स हस्तशिल्प कलाकार खातर वरदान साबित हो रही है और विशेष रूप से अपने ग्रामीण क्षेत्र रे मायने बात करा तो बी लोगारे खातर तो सचमुच में ये वरदान है। क्योंकि देखो नी अपने गांव रे मायने हाथरी चतर कई जगह लुगाया होया करे बे हाथ कई कई चीजा बनावे और कितनी सुंदर तरीके से बनावे और घर रे मायने काम आने वाली चीजा होया करे। चाहे वे देखो संतोष खाने पीने रही है घर ने सजाने रही है या घर ने परोटने रही होया करे और इन तरीके से देखो कि सब जी की चीजें हैं। वे बढ़ा रहे आर्थिक क्षेत्र ने तो बढ़ावी है यानी कि आर्थिक सुदृढ़ता तो देवी है बिंदु अलावा बैठे रहे जिका लोग है बिया ने रोजगार और भी अवसर देवे। और पहला देखो संतोष कि ए जिका बिया ने रोजगार था ए जिकी बिया की वस्तुवारी खरीदारी थी वह स्थानीय स्तर तक ही सीमित थी।

0: पण आज रे दौर में ई कॉमर्स तकनीक रे जरिए आज की बियारी खरीदारी है ए सब स्थानीय बाजार तक ही सीमित कोनी बल्कि ओ हस्तशिल्प आज इंटरनेट रे माध्यम सु वैश्विक स्तर तक बढ़ गयो है यानी कि देश विदेश रे मायने भी अपनी ग्रामीण क्षेत्र रे मायने जी की सुंदर और बहुत उपयोगी जी की चीजें हैं बियारी जी को प्रयोग है वो देश विदेश तक फैल रहे है और देश विदेश रे मायने इन चीजें री बहुतायत रूप सु मांग भी है
1: और बिना आपड़ी राजस्थान री बंधेज लहरिया ब्लूकोटली कठपुतली लकड़ी और धातु रे हस्तशिल्प रे कई बात ही चीजें हैं जिकी अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म माथे भी यानी कि जिका ऑनलाइन होया करे बाजारी का उए माथे आपन आसानी सु आपन बेच सका हां
0: बिल्कुल
1: और ई कॉमर्स री जरिए सु कारीगर आप राज्य की चीजा होया करे उनकी तस्वीर कीमत और जानकारी ग्राहक तक सीधी पहुंचा सके है और अब इनमें बिचौलिया भी कोई
0: बिल्कुल को नहीं
1: बिल्कुल भी जरूरत को नहीं कारीगर ने बिना उचित मूल्य भी मिले हैं
0: यानी कि जिको सामान बना रहे है बैठे तक हाथ टू हाथ रमाने बियाने क्या है कि सीधो सीधो मुनाफा मिलिया करे है यानी कि अठी ने संतोष चीज बनाई और अठी ने हिसाब सु बिने बेच दी और सब किनसु संबंधित है ई कॉमर्स आज अब बिना ई कॉमर्स तकनीक रे माध्यम सु जे ही अपन चीज बनावा यानी कि चीज बनानो भी अपने हाथ रे मायने बिरी कीमत भी अपने हाथ रे मायने है और बिने बेचनो भी अपने हाथ में अठे तक की संतोष ग्राहक भी खुद चलार कर अपन खने आवे ई कॉमर्स रे जरिए और अपने ई तकनीक रे माध्यम सु ग्राहक अपनी चीज री जकी सही कीमत है बा पाने देवे
1: बिल्कुल और बिना ऑनलाइन आज की बिक्री होया करे है उसु आपने जका छोटा छोटा गांव रा जो शिल्पकार है उन्होंने रोजगार मिले है और अच्छी पहचान मिले है
0: बिल्कुल
1: और साथ ही भारत की समृद्ध कला और संस्कृति ने विश्व स्तर माते पहचान भी मिली है
0: और देखो वरना आप तो आई चाहवा हां कि अपने हासु जी की चीज बनी है वह अपने परिवार समाज या अपने गांव या अपने देश तक ही सीमित नहीं हुए बल्कि देश विदेश तक अपनी भी चीज री जी की है वह पहचान हुए और देखो ई कॉमर्स कठे न कठे अपनों काम आसान भी कर रहे है तो बहना इन बातें रस आगे चलो आप सुनो अगलो गीत

0: तो बेना जेठरी इन तपती दोपहरी रमाने थे थानो और थानो परिवार को ध्यान रखो और एक बखत और ये सीख ले मेरो तो थे देवो थानी सखी रामा ने और
1: संतोष चरण
0: सीख।

0: भाई बहनों ने सुना अपना घर आंगन कार्यक्रम। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। दिन के 2 बजने वाले हैं अब मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।
1: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द मिड डे न्यूज। The headlines. President Draupadi Murmu urges police forces to be more citizen-centric and sensitive towards vulnerable sections.

0: ने सीबीएसई कक्षा 12 की परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया में विसंगतियों से संबंधित छात्रों की सभी शिकायतों के समाधान का आश्वासन दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस्तीफे की घोषणा की। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे। होर्मुज जलडमरू मध्य के पास अमरीका और ईरान के हमलों से संघर्ष विराम और कमजोर हुआ। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। और बैडमिंटन में पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन का सिंगापुर ओपन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में प्रवेश। अब समाचार विस्तार से। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विद्यार्थियों को आश्वस्त किया है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा शुरू की गई नई ऑन स्क्रीन मार्किंग ओएसएम प्रणाली अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक प्रगतिशील साधन है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में सीबीएसई अधिकारियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये बात कही। सीबीएसई कक्षा 12वीं की परीक्षा के पुनर्मूल्यांकन पोर्टल में ओएसएम प्रणाली में विसंगतियों और तकनीकी खराबी को लेकर श्री प्रधान ने स्वीकार किया कि कुछ मुद्दे सामने आए हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को आश्वासन दिया कि चल रही पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान सभी शिकायतों का समाधान किया जाएगा।
1: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए, ये ओएसएम की व्यवस्था है। पहली बार देश में सीबीएसई ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही है, इसको मैं दायित्व लेता हूँ, उसको इसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर्ड क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। एनटीए के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई 6 तथा 7 जून को आयोजित की जाएंगी। ईद उल अजहा के कारण तिथियां पुनर्निर्धारित की गई हैं। एनटीए ने बताया कि 31 मई को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। 6 और 7 जून की परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जल्द ही जारी किए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम पुलिस को आज प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया। अलंकरण परेड का आयोजन गंगटोक में पालजोर स्टेडियम में किया गया था। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां राज्य और पूर्वोत्तर का 3रा राज्य बन गया है। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बल को अधिक नागरिक केंद्रित बनने का आग्रह किया। उन्होंने पुलिस बल से विशेष रूप से महिलाओं, निर्धनों और बच्चों के प्रति संवेदनशील रहने का आग्रह किया।
2: पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाया जाना चाहिए ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियाँ सामने आ रही। इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में दक्ष बनाना होगा।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया आज राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। कर्नाटक के संसदीय कार्य मंत्री एच के पाटिल ने सिद्धारमैया द्वारा बुलाई गई बैठक के बाद ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि डीके शिवकुमार अब मुख्यमंत्री का पदभार संभालेंगे। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आज बंगलुरु स्थित अपने आवास पर मंत्रिमंडल सहयोगियों को आमंत्रित किया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार भी इस बैठक में उपस्थित थे।
3: कर्नाटक की राजनीति में आज लंबे समय से चल रही अटकलों पर विराम लग गया। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच आज हुई नाश्ते की बैठक के दौरान दोनों नेताओं का गले मिलना इस बदलाव का साफ संकेत माना गया। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार सिद्धारमैया आज दोपहर 2:30 बजे लोक भवन जाएंगे और 3 बजे मीडिया को संबोधित करेंगे। राज्यपाल के दौरे पर होने के कारण वे अपना इस्तीफा राज्यपाल सचिव को सौंपेंगे। श्री सिद्धारमैया कर्नाटक के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्रियों में शामिल हैं। सुधींद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने आज 3 राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की घोषणा की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूर्वी दिल्ली के सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली का, डॉ अर्चना गुप्ता को हरियाणा का और केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष

0: अध्यक्ष नियुक्त किया है। अभिषेक देवरॉय को त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष बनाया गया है। अमेरिका और ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य के पास एक दूसरे पर हमले किए हैं, इससे मौजूदा संघर्ष विराम और कमजोर हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: अमेरिका ईरान संघर्ष विराम अब लगभग फिर से सीधे सैन्य टकराव में बदल चुका है। होर्मुज जल डमरू मध्य के पास वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बना रहे ईरान के 4 ड्रोन को अमेरिका ने मार गिराया। इसके जवाब में ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने दावा किया है कि उन्होंने एक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हमला किया है। इस बीच इसराइली सेना ने लेबनान में अप्रैल में लागू हुए संघर्ष विराम के बाद अब तक का सबसे बड़ा निकासी आदेश जारी किया है। इसमें ज़हरानी नदी के दक्षिण में रहने वाले सभी नागरिकों को तुरंत उत्तर की ओर जाने को कहा गया है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मंगलवार को हुए हमलों में 31 लोगों की मौत हो गई तथा 40 लोग घायल हुए हैं। उधर दोहा में जारी शांति वार्ता का उद्देश्य मौजूदा संघर्ष को समाप्त करना और होर्मुज जल डमरू मध्य को दोबारा खोलना है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा करते हुए शांति तथा स्थिरता बनाए रखने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। दोनों देशों ने भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय कार्यतंत्र WMCC की 35वीं बैठक के दौरान स्थिति की समीक्षा की। ये बैठक कल पेइचिंग में हुई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व पूर्वी एशिया के संयुक्त सचिव सुजीत घोष ने किया और चीन के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व चीन के विदेश मंत्रालय के सीमा और समुद्री मामलों के विभाग के महानिदेशक हो यांची ने किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज साइप्रस जिमनिच सम्मेलन के दौरान स्पेन के विदेश मंत्री जोस मैनुअल अल्वारेस से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि बैठक में भारत और स्पेन के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी, रक्षा और जन संबंधों को लेकर आगे की योजनाओं पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिले के पिंगला के 2 व्यक्तियों को कल अदालत ने पाकिस्तानी ISI के लिए जासूसी के आरोप में 14 दिन की हिरासत में भेज दिया है। आरोपी शेख मुरसलीन और गौतम खारा को पश्चिम बंगाल पुलिस की विशेष कार्यबल ने गिरफ्तार किया। बिहार के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में भीषण आंधी, बिजली गिरने और ओलावृष्टि के कारण 8 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि तुरंत देने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने ट्विशा शर्मा हत्याकांड में सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। भोपाल सत्र न्यायालय ने उन्हें 15 मई को जमानत दी थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ताजुल मस्जिद में नमाजियों ने देश में शांति, समरसता और न्याय के लिए प्रार्थना की।
2: मध्य प्रदेश के तमाम शहरों में आज ईद उल अजहा यानी बकरीद का त्यौहार खुशी और अमन के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही मस्जिदों और ईदगाहों में लोगों की भारी भीड़ देखी गई। राजधानी भोपाल की ऐतिहासिक ताजुल मस्जिद में हजारों लोगों ने नमाज अदा की। इंदौर से एक खूबसूरत तस्वीर भी सामने आई। यहाँ 50 साल पुरानी परंपरा के मुताबिक एक हिंदू परिवार ने शहर काजी को फूलों का हार पहनाकर बग्घी में ईदगाह तक पहुँचाया। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने कहा है कि कुर्बानी केवल तय जगहों पर ही की जाए। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: पश्चिम बंगाल से हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
3: ईद उल अजहा बलिदान का पर्व आज देश के हर एक जगह के साथ पश्चिम बंगाल में भी ये खुशी के साथ मनाया जा रहा है। कोलकाता में ईद की नमाज पारंपरिक रेड रोड के बजाय ब्रिगेड परेड ग्राउंड में अदा की गई। ऐतिहासिक नाखुदा मस्जिद में नमाज 2 सत्रों में आयोजित की गई ताकि सड़कों पर भीड़ ना हो। राज्य सरकार ने शांति और अनुशासन बनाए रखने के लिए कोलकाता हाईकोर्ट के पुराने निर्देश की सख्ती से लागू किया है। आकाशवाणी समाचार के लिए कोलकाता से कश्फीन नहार।
0: श्रीलंका से हमारे संवाददाता ने बताया है कि ईद उल अजहा का त्यौहार वहाँ हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है।
4: आज श्रीलंका में ईद उल अजहा यानी बकरीद श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है।

0: भी है। सुबह मस्जिदों और ईदगाहों में विशेष नमाज अदा की गई, जहां लोगों ने अमन, भाईचारे और कुर्बानी के संदेश को याद किया। परिवारों और समुदायों ने मिलकर त्योहार मनाया तथा जरूरतमंदों में भोजन और सहायता वितरित की। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारादिसनायका ने भी सभी को ईद की शुभकामनाएं देते हुए देश में एकता और सद्भाव बनाए रखने का संदेश दिया। अहमद मुईन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत के मेहनती किसानों के अथक प्रयासों के कारण देश में पर्याप्त खाद्य भंडार मौजूद है। नई दिल्ली में खरीफ अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इस वर्ष देश में अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन 376 करोड़ टन से अधिक है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5.3% अधिक है। दो दिन के सम्मेलन का उद्देश्य आगामी खरीफ ऋतु के लिए रणनीतियों पर विचार विमर्श करना है। तृणमूल कांग्रेस सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर अपनी ही पार्टी के सांसद कल्याण बैनर्जी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और उन पर अपमानजनक तथा महिला विरोधी व्यवहार का आरोप लगाया है। बारासात निर्वाचन क्षेत्र से सांसद काकोली ने आरोप लगाया कि कल्याण बैनर्जी ने लोकसभा के अंदर बार बार उनका मौखिक उत्पीड़न किया। काकोली का मानना है कि कल्याण को इस मामले में दंडित किया जाना चाहिए। मेघालय मंत्रिमंडल ने फिटनेस प्रमाण पत्रों के नवीनीकरण न कराने पर लगने वाले जुर्माने में 90% की छूट देने वाली एकमुश्त निपटान योजना को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने इस एकमुश्त निपटान योजना के तहत मोटर वाहन कर और यात्री तथा माल कर से संबंधित जुर्माने में 80% की अतिरिक्त छूट को भी मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीर सावरकर को उनकी जयंती पर नमन किया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वीर सावरकर का साहस और देशभक्ति लोगों को सदा प्रेरित करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुधारों पर वीर सावरकर का अत्यधिक जोर था और इस दिशा में उनका ज्ञान उल्लेखनीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और लोकप्रिय फिल्म अभिनेता एनटी रामाराव को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एनटी रामाराव जन कल्याण और शासन के प्रति अपनी वचनबद्धता के लिए याद किए जाते हैं। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज भारत का प्रदर्शन शानदार रहा। लक्ष्य सेन, पीवी सिंधु, पुरुष डबल्स की जोड़ी चिराग शेट्टी तथा सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और मिक्स डबल्स की जोड़ी ध्रुव कपिला तथा तनिषा क्रास्टो सभी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। महिला सिंगल्स के राउंड ऑफ 16 में सिंधु ने जापान के रिको गुंजी को सीधे गेम में 21-9, 21-12 से हराया। इस जीत के साथ सिंधु क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई, जहां उनका मुकाबला दक्षिण कोरिया की एन से यंग से होगा। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी आज लू की आशंका है। अगले दो दिन के दौरान आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। ओडिशा में आज रात मौसम गर्म रहने की संभावना है, जबकि राजस्थान और उत्तर प्रदेश में कल तक धूल भरी आंधी चल सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बलों से नागरिक केंद्रित और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील होने का आग्रह किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई कक्षा 12वीं की परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया में विसंगतियों से संबंधित छात्रों की सभी शिकायतों के समाधान का आश्वासन दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस्तीफे की घोषणा की। उप मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे। होर्मुस जलडमरू मध्य के पास अमेरिका और ईरान के हमलों से संघर्ष विराम और कमजोर हुआ। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। और बैडमिंटन में पीवी सिंधु तथा लक्ष्य सेन का सिंगापुर ओपन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में प्रवेश। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्ज और एफएम के 101.6 मेगा हर्ट्ज पर आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोलामरू चैनल है। दोपहर के 2:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

मंगेशकर, उषा और मीना मंगेशकर की आवाज़ों में ये था मदर इंडिया फिल्म का गीत। शकील बदायूनी के बोल थे और नौशाद का संगीत। दोस्तों, आज भारतीय हिंदी सिनेमा के सुप्रसिद्ध फिल्म निर्देशक और निर्माता महबूब खान की पुण्यतिथि है और ये फिल्म उन्हीं के द्वारा निर्देशित और बनाई गई थी। आइए सुनते हैं अब महबूब खान की फिल्म अनमोल घड़ी का ये गीत सुरैया की आवाज में। शब्द रचना तनवीर नकवी की है और संगीत एक बार फिर नौशाद का।

0: सुरैया की आवाज में ये था अनमोल घरे फिल्म का गीत। श्रोताओं, पद्मश्री महबूब खान की पुण्यतिथि के अवसर पर उनको याद करते हुए हमने आपको सुनाए उनके द्वारा निर्मित और निर्देशित दो फिल्मों के गीत।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शो में सोचो असली ओजी कौन है बॉस। रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

मुकेश की आवाज में ये था यहूदी फिल्म में शैलेंद्र की लिखी गीत रचना, संगीत शंकर जयकिशन का था। लीजिए आप सुनिए गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाजों में 12 o'clock फिल्म का गीत। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल और ओपी नैयर का संगीत।

अब हम आपको सुनवा रहे हैं उमराव जान फिल्म का ये गीत आशा भोसले की आवाज में। शहरयार के बोल हैं और खयाम का दिलकश।

के आखिर में सुनिए किशोर कुमार की आवाज में आपकी कसम फिल्म का ये गीत। आनंद बख्शी की गीत रचना है और आरडी बर्मन की संगीत रचना।

कोशिश जिंदगी में बस हम इतनी ही करें कि कोई हमसे हमारा अपना रूठ के न जाए। और अगर चला जाए तो उसको तुरंत ही मना लेना चाहिए। रिश्तों के सहारे ही जिंदगी आसानी से कटती है।

किशोर कुमार की आवाज में गाई फिल्म आपकी कसम के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज और एफएम की 101.6 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोलमारू चैनल है। दोपहर के 3 बजे हैं। हमारे आज के प्रसारणों की ये सभा अब यहीं समाप्त होती है। ये प्रोग्राम हमारे डीआरएम चैनल 1386 किलोहर्ट्ज पर भी उपलब्ध थे। संध्या 4 बजे संध्याकालीन सभा के साथ हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्ज और एफएम के 101.6 मेगा हर्ट्ज पर आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारो चैनल है। संध्या के 4 बजने वाले हैं। हमारे आज के प्रसारणों की संध्याकालीन सभा आरंभ होती है। इस सभा के आरंभ में सुनिए संदेश टू सोल्जर्स आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स।

मदन वंदन अभिनंदन। संदेश टू सोल्जर्स के आज के इस विशिष्ट अंक में मैं गीतिका अनियाल आप सभी का स्वागत करती हूं। आकाशवाणी अपने 90 वर्ष पूर्ण करने की इस यात्रा में फौजी भाइयों के लिए सदैव समर्पित रही है, इसलिए नित्य प्रति विभिन्न प्रसारणों के माध्यम से

0: सिपाही हों, चाहे फिर बॉर्डर्स पर तैनात हों या देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए कर्तव्यनिष्ठ, आकाशवाणी ने हमेशा ही सिपाहियों और उनके परिवारों के बीच एक भावनात्मक सेतु का कार्य किया है। और आज इसी कड़ी में आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं कमांडेंट अभिराम पंकज, सेकंड इन कमांड सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। कैप्टन अभिराम पंकज सेकंड इन कमांड 139 बटालियन CRPF डिप्लॉयड है मंडोली जेल कॉम्प्लेक्स में। सर्वप्रथम हम स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमान कमांडेंट अभिराम पंकज का। कमांडेंट अभिराम पंकज, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद गीतिका जी। सबसे पहले मैं आकाशवाणी का तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ और आपको 90 वर्ष पूर्ण करने की हार्दिक बधाई देता हूँ। आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मैं CRPF की तरफ से जय हिंद बोलता हूँ। और ये एक प्योर नॉस्टैल्जिया है मेरे लिए, बचपन से आकाशवाणी को सुनते हुए आज आकाशवाणी के FM रेनबो के स्टूडियो में बैठकर बातचीत करने का अवसर मिला है। मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद अदा करता हूँ
0: जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी कि आपने समय निकाला, आप स्टूडियो पहुंचे हैं और आज ना जाने कितनी ही बातें ऐसी होंगी जो आकाशवाणी से जुड़ी होंगी और जो आपके सफर से जुड़ी होंगी। और जैसे कि मैंने कहा कि फौजी भाइयों के नित्य प्रति हम कार्यक्रम आयोजित करते हैं अपने प्रसारणों के माध्यम से, कहीं ना कहीं कनेक्ट भी करते हैं, संदेश भी हम तक आते हैं। लेकिन जब आप जैसे वीर हमारे स्टूडियो में मौजूद होते हैं तो यकीन मानिए कि फिजाओं का रंग बदल जाता है, क्योंकि ध्वनि तरंगों के माध्यम से जब हम जन जन तक पहुंचते हैं, भारतीय जनता तक पहुंचते हैं, चाहे फिर वो रेडियो सेट्स के माध्यम से हो या मोबाइल ऐप के माध्यम से हो, तो हर सुनने वाला यही सोचता है कि काश मैं भी आप जैसे वीरों के पद चिन्हों पर चल सकूं। सबसे पहले आपके से ये जानना चाहती हूँ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यहाँ आप कार्यरत हैं, तैनात हैं, अलग अलग जगहों पर आपकी आज तक पोस्टिंग हुई है, अगर हम CRPF की बात करें तो आप किन शब्दों में CRPF को परिभाषित करना चाहते हैं?
1: CRPF 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में नीमच में स्थापित हुई और विगत कई दशकों में आज CRPF हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के रूप में रहे और इंटरनल सिक्योरिटी की रीढ़ है CRPF। जब भी सारे जितने सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनके रूल्स डिफाइंड हैं, जैसे BSF इंडो पाकिस्तान बॉर्डर पर है, ITBP इंडो टिबेट बॉर्डर पर है, CISF वाइटल इंस्टॉलेशंस में है और SSB इंडो नेपाल बॉर्डर में है, वैसे ही CRPF इंटरनल सिक्योरिटी के लिए है। तो CRPF ने आप देख कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, सौराष्ट्र से लेकर सिलचर तक CRPF ने के फुटप्रिंट्स आपको मिलेंगे। और आज CRPF ने जो काम छत्तीसगढ़ में किया नक्सलवाद से पूरे भारत को मुक्त कर, जो हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर का एक उनका एक प्रण था, तो वो एक अपने आप में एक एपिक ऑफ सागा एंड सेक्रीफाइस, एपिक सागा ऑफ सेक्रीफाइस है वो जिस तरीके का CRPF ने काम किया है। और ऐसा वही नहीं जम्मू एंड कश्मीर में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, तो CRPF को परिभाषित करने की बात मैं कहता हूँ कि CRPF सबसे वर्सेटाइल सिक्योरिटी फोर्स है, सबसे फ्लेक्सिबल सिक्योरिटी फोर्स है। और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं इस बल का पार्ट हूँ, मैं इस बल का हिस्सा हूँ और मुझे यहाँ कुछ करने का मौका मिला है
0: जी। होंगी आपसे और भी बहुत सारी बातें, क्योंकि जितने हम आतुर हैं आपसे बात करने के लिए उतने हमारे श्रोता भी बेताब हैं, क्योंकि हम हमेशा यही मानते हैं आकाशवाणी के माध्यम से कि हम किसी के लिए रास्ता बने, किसी को रास्ता दिखाएं। और आप जैसे योद्धा जब यहाँ स्टूडियो में मौजूद होते हैं तो निश्चित रूप से आप किसी का कोर्स ऑफ एक्शन, जिसे कहा जाता है, बदल देते हैं। तो ये मंजर जो है एकदम नया है हर बार की तरह। और आप श्रोतागण भी अपने संदेश भेज सकते हैं, हमारा नंबर है 9868107070, जादू नंबर के माध्यम से तुरंत आप तक पहुंचते हैं। तो इस कार्यक्रम संबंधी आपके मन में जो भी विचार है भेजिए जरूर।

0: संदेश टू सोल्जर्स के आज के इस अंत में आप सभी का पुनः स्वागत है। और हम यही कहेंगे कि कोई जानता है कि वो दुनिया में क्या चाहता है। हर व्यक्ति एक उद्देश्य के साथ तो दुनिया में आता है। कुछ उद्देश्य हमें पहले से पता होते हैं, लेकिन कहते हैं कि कभी कभी हमें वहाँ रास्ते ढूंढ रहे होते हैं, हम खुद भी नहीं जानते कि वो रास्ते चाहते हैं कि हम उन रास्तों पर चलें। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कमांडेंट अभिराम पंकज। कमांडेंट अभिराम पंकज, आप यूर ऑनर्स इन केमिस्ट्री MBA इन फाइनेंस। कभी सोचा था कि आप CRPF ज्वाइन करेंगे?
1: नॉट एग्जैक्टली CRPF। पढ़ाई लिखाई ऐसा था, मैं बिहार में पैदा पला बड़ा बड़ा हुआ, तो पढ़ाई लिखाई को हमेशा मैंने एक जर्नी के तौर पे देखा। तो आप पढ़ाई लिखाई इसलिए नहीं करते कि आप वो माध्यम हो कहीं किसी जगह पहुंचने का। ये CRPF ऑर्गेनिकली हुआ। मैं पढ़ता रहा और एक रुझान था, वर्दी की तरफ एक अट्रैक्शन था। बैक ऑफ द माइंड एज अ चाइल्ड आपको कई बार ही लगता है यूनिफॉर्म सर्विसेज आपको अट्रैक्ट करती हैं, तो शायद वो बैक ऑफ द माइंड में था। बट पढ़ाई अपनी तरफ हो रही थी और ये साइड बाय साइड एग्जामिनेशन के लिए अपीयर हुआ और ये हो गया। सो इसके लिए कुछ बहुत अलग कोशिश या

0: मेरे एम में था ऐसा बिल्कुल नहीं था. हाँ, एक यूनिफॉर्म के लिए रुझान था, बट एक बार ज्वाइन करने के बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक.
1: क्या बात है. आपको किस माध्यम से पता लगा कि आप सीआरपीएफ ज्वाइन कर सकते हैं? दोस्तों ने बताया, किसी नाते रिश्तेदार ने बताया, कहीं न्यूज़पेपर में देखा नोटिफिकेशन? क्योंकि जब मोड़ आता है ना, तो आपके जीवन में जो टर्निंग पॉइंट आता है, सीआरपीएफ भी आपके जीवन में ज्वाइन करने के लिए टर्निंग पॉइंट है. तो क्या माध्यम था जिससे आपको पता लगा कि आप ऐसा कुछ भी कर सकते हैं जीवन में?
0: मैं बहुत भाग्यशाली था. मेरे फादर बड़े अवेयर फादर थे. वो खुद एक सरकारी कर्मचारी थे, बिहार सरकार की सेवा में अग्निमय डिपार्टमेंट में कार्यरत थे. बहुत ही अवेयर फादर थे एंड उनको अपने समय से आगे उनकी सोच थी. तो उस जमाने में, अब तो इंफॉर्मेशन की क्रांति है चारों तरफ, आपको मोबाइल पे सारी चीज़ें अवेलेबल है. उस जमाने में एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ और हिंदी में रोजगार समाचार आता था, तो वो सब्सक्राइब किया हुआ था और उस पर वो देखते रहते थे कि हाँ बच्चा है वो कहाँ कहाँ कौन कौन सी जगहों पे जा सकता है. और कहीं ना कहीं तो थोड़ी उनकी हेल्प, थोड़ी अपनी और एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ से मालूम पड़ा और फादर ने ही बताया कि ऐसा है और आप इसमें आप अपना करियर देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं.
1: जी, तो फिर आपने एग्जामिनेशन के लिए, यानी कि आपने एक बकायदा एक फॉर्म भरा होगा जिसके अंतर्गत आपको फिर एग्जामिनेशन के लिए बुलाया होगा. वो एग्जामिनेशन प्रोसेस कैसी थी, क्या थी, ये बताएं.
0: 2004 तक ये एग्जामिनेशन सीपीओस कंडक्ट करती थी, जो 2005 के बाद से यूपीएससी ने लिया. तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है हर एक साल, और सीएपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट्स के लिए एग्जाम निकालती है. तो उसमें जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, ये 3-4 पेपर्स होते हैं एंड फॉलोड बाई फिजिकल, जहाँ पे यू आर सपोज टू आपका जो रनिंग है और बाकी जो आपकी फिजिकल चीजें उनकी टेस्टिंग करते हैं वो. तो एक अच्छा सा एग्जामिनेशन होता है, अच्छा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, लेकिन आपका आपके जो पढ़ाई लिखाई के अलावा, आपकी जानकारी के अलावा, आपका फिजिकल फिटनेस भी दुरुस्त होना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है. और यूपीएससी की साइट से आपको जानकारी मिलती रहती है कि कब एग्जामिनेशन का पूरा कैलेंडर है, साल में कब नोटिफिकेशन आएगा, कब एग्जामिनेशन होगा. तो ये सारी जानकारी हमारे जितने युवा हैं उस पर नजर बना के रख सकते हैं. आज की डेट में बहुत आसान है.
1: जी, अब सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की अगर बात की जाए तो इसके अंतर्गत सीआईएसएफ, बीएसएफ और सीआरपीएफ.
0: नहीं, इसमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जैसे मैंने पहले भी बताया, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक रोल डिफाइंड है इंडो पाकिस्तान बॉर्डर, एसएसबी इंडो नेपाल बॉर्डर, आईटीबीपी इंडो चाइना बॉर्डर, सीआरपीएफ ओनली इंटरनल सिक्योरिटी. सो ये सारे कंपोनेंट्स हैं. नेशनल सिक्योरिटी गार्ड आल्सो, बट वो सारे केवल वीआईपी सिक्योरिटी और अपना जो एंटी टेररिस्ट रोल में, और असम राइफल्स आल्सो, दैट इज पार्ट ऑफ दिस.
1: जी, तो क्या सबके लिए एक ही प्रोसेस होता है एग्जामिनेशन का, या फिर आपको अलग अलग रूप से चयनित करना पड़ता है?
0: इसमें एनएसजी और असम राइफल्स का प्रोसेस अलग है, वो वहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन नहीं होती है. बाकी ये जितने सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ और इन सब की सिलेक्शन उस यूपीएससी की एक नोटिफिकेशन और एक एग्जामिनेशन के माध्यम से होती है. और इनमें जो सीट्स होती हैं वो डिसाइड करता है जो उनका जो कंसर्न्ड ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ कितनी वैकेंसीज है उसके बेसिस पे वो सीट निकालते हैं. तो एंट्री लेवल है, जो क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर के रैंक में जाते हैं, असिस्टेंट कमांडेंट, वो आप इस एग्जामिनेशन को क्लियर करके आप जाते हैं.
1: जी, तो एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद सबसे पहली खबर, खुशी की खबर आपने किसको सुनाई?
0: ये मैं एमबीए करने के बाद में मैं एक बैंक में काम करने लगा था एंड तो ये बहुत ही एक प्लेजेंट सरप्राइज था मेरे लिए जब ये मुझे खबर मालूम पड़ी. तो ऑफकोर्स दोस्तों से बातचीत हुई और उस जमाने फोन नया नया आया था, तो तभी इनकमिंग आउटगोइंग के पैसे लगते थे. तो उस पर बातचीत हुई, दूरभाष फोन के माध्यम से लोगों ने बताया, तो बधाइयां आनी शुरू हो गई. और बिहार में आप सरकारी सेवा में जाना आज भी और गौरव की बात मानी जाती है, और तब उस जमाने आज से 22 साल पहले ये बहुत बड़ी बात. तो काफी बधाई संदेश आने लगे और फिर यहाँ मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर किया जिनके साथ मैं काम कर रहा था मेरे बैंक में. सारे बहुत खुश हुए क्योंकि मैं तो कॉर्पोरेट में काम कर रहा था और ये एक सरकारी सेवा में मेरा चयन हुआ था, तो सारे बहुत खुश हुए. तो ऑफकोर्स अपने दोस्तों के साथ शेयर किया यहाँ पर और उनके साथ सेलिब्रेट किया.
1: वाह, क्या बात है. घर पे किस प्रकार की प्रतिक्रिया, क्योंकि आपने खुद कहा कि पिताजी क्योंकि सरकारी नौकरी में रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने आपको अवगत कराया कि सरकारी एग्जामिनेशन आप दे सकते हैं. जो प्रथम बार आप अपने माता पिता को इस बात की अनुभूति कराते हैं कि आप अब एक मुकाम

0: रोशनी वाले हैं, बहुत सुखद पल होता है किसी भी माता पिता के लिए जब आप एक खबर लेके गए, वो क्षण जो था उस वक्त उनके चेहरे पर क्या भाव थे?
1: निसंदेह है, बहुत खुशी के भाव थे। मेरे मेरे मेरे पिता, उन्होंने हमेशा मुझे लिबरेट किया कि जो आपके मन में है वो करो, आपकी मंजिल आप खुद चुनो। और जब उन्होंने देखा कि मेरा रुझान इस तरफ है, मैं प्राइवेट सेक्टर में काम करने के बावजूद मैं इधर ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो बहुत खुश हुए कि हाँ देश की सीमा में जाए और अपना अच्छा करे। तो निसंदेह माता पिता दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, दोनों बहुत खुश थे और ऑफ कोर्स मैं भी काफी खुश था।
0: जी निश्चित रूप से, जब आपको रास्तों ने चुन लिया हो कि आपको कहाँ पहुंचना है, ऐसे सुखद बात और कोई छू नहीं सकती। क्योंकि कहते हैं कि वैसे तो नियति जिसको हम सभी मानते हैं, कुछ लोग जानते हैं कि उन्हें किस रास्ते पर चलना है, लेकिन वो लोग जिनको रास्ते चुनते हैं वो तो अपने आप को ज्यादा तैयार कर लेते हैं कि अच्छा ये रास्ता चाहे पथरीला हो या सहल हो, मुझे चलना है और मंजिल पर पहुंचना है। अगर अतीत की ओर पीछे जाएं, यानी कि आपके MBA या फिर आप मान लीजिए आपके जो आपने केमिस्ट्री ऑनर्स किया उससे भी पीछे की अगर बात करें, आपके स्कूल के दिन किस प्रकार के आप बालक हुआ करते थे? शैतान थे या बहुत डिसिप्लिन थे? और वो जीवन की यानी कि आपके बचपन की कौन सी ऐसी बात है जो आपको लगती है कि अगर वो ना हुई होती तो शायद रास्ता CRPF तक पहुंचने का इतना सहल ना होता?
1: बहुत बहुत ही उम्दा सवाल किया आपने। ये आप जब भी बचपन में तो ऐसा आपने कुछ सोचा नहीं था, लेकिन माहौल ऐसा था, आप जब पढ़ाई लिखाई कर रहे थे तो मैं बचपन से ही हैप्पी गो लकी था। मैं बहुत सीरियस स्टूडेंट नहीं था, बट लेकिन स्मार्ट पढ़ाई करके और मैं अपने क्लास में एक अच्छा रिजल्ट लेकर आता था। खेल कूद में मैं बहुत आगे रहता था, तो जितने टीम स्पोर्ट्स हो, आप किसी भी परिवेश में, ग्रामीण परिवेश में रहें या फिर शहर में रहें, तो मैं जहां भी मौका मिलता था मुझे, कबड्डी से लेकर फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, क्रिकेट उन दिनों आज भी काफी पॉपुलर है और उन दिनों भी बहुत लोकप्रिय स्पोर्ट होता था, तो मैं खेलता था। तो मुझे लगता है कि जो ये स्पोर्ट्स का जो एक नींव रखी जाती है बचपन में, वो बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों के सर्वांगीण विकास में। वो आपको आपकी टीम स्पिरिट और वो जो भावना आपके अंदर जो स्पोर्ट्स पैदा करती है, उसके बड़े दूरगामी परिणाम होते हैं। आप उसके बाद वो आप किसी भी करियर में जाएं, अगर स्पोर्ट्स आपके साथ में है तो आपका व्यक्तित्व एक डिफरेंट एक अलग अलग अलग तरीके का निखर कर आता है। तो ऑफकोर्स मुझे लगता है कि जो आउटडोर के प्रति जो मेरा मेरा समर्पण था या फिर जो मेरा लगाव था, वो मुझे बहुत हैंडी रहा CRPF में भी। यहाँ ज्वाइन करने के टाइम में भी मुझे बहुत मशक्कत नहीं करनी पड़ी, बहुत मशक्कत नहीं करनी पड़ी। उसके बाद में भी ये चैलेंजिंग था ट्रेनिंग में, तो वहां पे भी मुझे, और फिर जो टीम के साथ काम करने में मुझे कभी दिक्कत नहीं रही, आज जवानों के साथ हो, मेरे साथी अधिकारियों के साथ हो, तो एक जो इंटरपर्सनल स्किल और जो टीम स्पिरिट की जो भावना आप गेम्स आप में जो इनकल्केट करती है, वो अद्वितीय है, वो अनुपम है।
0: जी तो CRPF तक का रास्ता सहल की और उसके बाद CRPF में रहते हुए, यानी कि अपने सर्विस काल में भी कहीं ना कहीं, चाहे वो डिसीजन लेना हो, लीडरशिप क्वालिटी हो, अपने साथियों को मोटिवेट करना हो, तो उसमें कहीं ना कहीं खेलों का बहुत बड़ा योगदान रहा। इसलिए हम बच्चों को कहते हैं कि अपने जीवन काल से, यानी कि अपने बाल काल से ही जो है आप खुद पर तैयारी करना शुरू कर दीजिए।
1: जी
0: तो होंगी आपके साथ और भी बहुत सारी बातें, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा आतुर हूँ आपसे ज्यादा से ज्यादा बातें सुनने के लिए। तमाम बच्चे, यूथ या देश के वो सैनिक जिस वक्त आपको सुन रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब एक सिपाही एक वीर यहाँ पर आकर बैठता है इस कुर्सी पर, तो कहीं ना कहीं वो गाथा सुना रहा होता है, कहानी सुना रहा होता है सभी अपने फेलोज की, क्योंकि कहीं ना कहीं यात्रा भले ही उसके कहते हैं ना कि ऊंचे नीचे पगडंडियों से आपने यात्रा पूरी करी हो, लेकिन यात्रा कहीं ना कहीं उस मंजिल तक पहुंचने की सबकी एक जैसी, संघर्ष एक जैसे, मेहनत एक जैसी, बस फर्क इतना कि आपकी बुद्धि ने आपको उस वक्त कौन सा निर्णय लेने के लिए सक्षम बनाया, आप कितनी एबल बॉडीड है, आप कितनी सक्षम है डिसीजंस लेने में या अपने कार्य को पूर्ण करने में, शायद ये अलग होता होगा हर व्यक्ति का, हर सोल्जर का, हर सिपाही का, हर सैनिक का। लेकिन हम यही कहेंगे कि आप ना जाने आज यहाँ FM रेनबो के स्टूडियो में बैठे कितनों की गाथाएं, कितनों की कहानियां उसका सुमिरन कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आपके मन में अगर कोई भी बात है शेयर कीजिए हमारे साथ। हम यही कहेंगे कि देश के प्रति जो सच्ची भावना, सच्ची लगन, आप किसी भी कार्य क्षेत्र में क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये वीर हमें हमारे प्रगति मार्ग, विजय मार्ग पर चलने के लिए हमेशा प्रेरित करते हैं। बने रहिए।

रहे हैं। सुनते रहिए आकाशवाणी की एफएम रेनबो पर हमें। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका उनियाल और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कमांडेंट अभिराम पंकज।

0: वेलकम बैक, मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका अनियाल और प्रोग्राम चल रहा है संदेश टू सोल्जर्स। और संदेश टू सोल्जर्स के आज के इस अंक में हम बताना चाहेंगे कि हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कमांडेंट अभिराम पंकज, जिनकी यात्रा को हम उनकी जुबानी सुन रहे हैं। और कहते हैं कि किसी की यात्रा कभी कभी ना आपकी यात्रा बन जाती है, क्योंकि आपको जीने का सबब सिखाती है, आपकी राह को और भी आसान कर देती है। और जब राह आसान हो जाती है तो मंजिल तक पहुंचना और भी ज्यादा आसान। कमांडेंट अभिराम, CRPF, जब आप CRPF का नाम लेते होंगे तो कहीं ना कहीं गर्व से आपका जो सीना है वैसे फूल जाता होगा, चौड़ा हो जाता होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप नेतृत्व करते हैं अपनी फोर्सेस को। तो अगर आप से मैं CRPF के बारे में और जानकारी प्राप्त करना चाहूं, क्योंकि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स यूथ इस वक्त हमें सुन रहे होंगे और बहुत से अनभिज्ञ भी होंगे, और अगर वो ज्वाइन करना चाहते हैं CRPF, तो सबसे पहले हम CRPF को थोड़ा सा और जान लें, तो हम चाहेंगे कि हमें आप और जानकारी दें CRPF के बारे में।
1: CRPF हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पैरामिलिट्री फोर्स, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है सारी फोर्सेस में। और CRPF की जो जर्नी रही है पीछे 1939 से लेकर अभी तक, तो ये जर्नी ऑफ सेक्रीफाइस एंड वैलर रही है। चाहे वो

0: 1959 में जब ये चाइनीज ट्रूप्स के साथ में हॉट स्प्रिंग्स में सीआरपीएफ ने लड़ाई लड़ी थी और उसमें हमारे सीआरपीएफ के 10 जवानों ने अपनी शहादत दी थी. आज भी 21 अक्टूबर को पुलिस कॉमेमोरेशन डे के रूप में मनाया जाता है हर एक साल. और फिर 1965 की पाकिस्तान के साथ लड़ाई में सरदार पोस्ट पर सीआरपीएफ की एक छोटी सी टुकड़ी ने पाकिस्तान के पूरे ब्रिगेड के अटैक को रिपेल किया था और बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कवरेज और वैलर का परिचय दिया था. तो 9 अप्रैल को सरदार पोस्ट की याद में वैलर डे मनाया जाता है सीआरपीएफ में. सीआरपीएफ ने तीनों थिएटर्स जम्मू कश्मीर, एलडब्ल्यू थिएटर और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बहुत एग्जेम्पलरी काम किया पीछे कई दशकों में. तो आज हिंदुस्तान हमारा नक्सल मुक्त हुआ अभी, तो वो सीआरपीएफ का इसमें जो योगदान रहा है वो अभूतपूर्व योगदान रहा है. इस मैं एक बात कहना चाहूँगा, सीआरपीएफ अपने आप में एक मिनी इंडिया है. हम इंडिया को सेलिब्रेट करते हैं, इंडिया की डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करते हैं, तो सीआरपीएफ एक मिनी इंडिया. आप कोई भी एक छोटे से छोटा क्रॉस सेक्शन ले लें, किसी भी बटालियन को या किसी भी बटालियन के अंदर जो उसकी कॉन्स्टिट्यूंट कंपनीज हैं उनको आप ले लें, तो सीआरपीएफ उस छोटी सी कंपनी में आपको पूरे देश, पूरी प्रांत के रिलीजन के लोग मिल जाएंगे. और सब एक बार जब यूनिफॉर्म पहनते हैं तो वो सीआरपीएफ के सोल्जर्स होते हैं, जवान होते हैं. सीआरपीएफ एक बहुत ही गैलेंट फोर्स रही है और इसका रिकॉग्निशन टाइम टू टाइम होता रहा है. सीआरपीएफ को मुझे बताते हुए बहुत गौरव की अनुभूति हो रही है. सीआरपीएफ को 1 अशोक चक्र, 10 कीर्ति चक्र, 39 शौर्य चक्र, 200 से ज्यादा प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री और तकरीबन 2027 पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री मिले हुए हैं आज तक. तो ये इनके जो बलिदान का, सीआरपीएफ के बलिदान और योगदान का जो रिकॉग्निशन रहा है वो गैलेंट्री मेडल्स, गैलेंट्री अवार्ड्स के रूप में है. तो ये सारी चीजें मुझे लगता है कि सीआरपीएफ को एक काफी वर्सेटाइल और एक सॉलिड इंटरनल सिक्योरिटी का जो इंटरनल सिक्योरिटी में एक सॉलिड भूमिका निभाने वाली फोर्स के रूप में रखती है.
1: जी निश्चित ही, आपकी बातें सुनने के बाद हमारे जितने भी श्रोता हैं वो चाहते हैं, जो अभिभावक चाहते हैं कि उनके बच्चे जाएं सीआरपीएफ ज्वाइन करें, उनके लिए आपने रास्ता बहुत ज्यादा आसान कर दिया. और हम हमेशा कहते हैं कोई तो ऐसा हो जो मेरा मार्ग प्रशस्त करे, जो मुझे सच्ची राह दिखाए, तो आज आपने वो सच्ची राह उन तमाम बच्चों को दिखाई है जो ज्वाइन करना चाहते हैं सीआरपीएफ. सो रास्ता आपके लिए खुला हुआ है, अब आपको निर्धारित करना है कि आपको कितनी तैयारी करनी है. जैसे कमांडेंट अभिराम ने कहा कि वो बचपन से ही खेला करते थे और ये खेलना आज तक जारी है. और आपको लगता है कि ये जो खेल रहे हैं आप आज तक, कौन कौन से गेम्स वैसे आज तक जब खेला करते थे और आज भी खेल रहे हैं, कौन कौन से गेम्स हैं?
0: देखिए सीआरपीएफ में हमारा चूंकि मूवमेंट काफी फ्रीक्वेंट और अनसर्टेन रहता है, तो मूवमेंट है और कहीं छोटी सी छोटी जगह पे आप सेटअप कर लें, तो सबसे अच्छा गेम जो सेटअप करना है वॉलीबॉल होता है. तो आपने नेट लगाया, अपना एक कोर्ट तैयार किया और आप वॉलीबॉल खेलने शुरू हो जाते हैं. तो शुरू से लेकर अभी तक अभी भी जवानों के साथ में, तो जब भी मौका लगता है तो वॉलीबॉल आप खेलते हैं. उसके अलावा जब मौका लगा फुटबॉल खेला आपने, क्रिकेट खेला. टग ऑफ वॉर हमारे यहाँ एक काफी पॉपुलर गेम है, जो आपस में टग ऑफ वॉर, रस्सा कस्सी का जो गेम होता है वो, उससे काफी टीम स्पिरिट बनती है और लोगों में बड़ा उत्साह होता है, बड़े उत्साह के साथ खेला जाता है. तो ये सारे गेम है और ये सारे गेम में आज भी, मतलब ये अनवरत मेरा चल रहा है. तो चाहे मैं छात्र के रूप में जब मैं था तब, या फिर आज मैं एक अधिकारी के रूप में हूँ, तो मैं पूरी भावना के साथ इन सारे स्पोर्ट्स के साथ जुड़ा रहता हूँ और मैं खेलता हूँ जवानों के साथ में.
1: बिल्कुल, जब सहकर्मियों के साथ खेलते होंगे तो आत्मीयता तो वैसे ही वहाँ बन जाती होगी, क्योंकि वहाँ अलग अलग स्टेचर के हमारे जो सिपाही है या फिर ऑफिसर्स है, जो भी खेलते हैं, जिन्हें भी शौक है, तो कहीं ना कहीं बस एक ही भावना होती होगी, वो है खेल की
0: भावना.
1: क्या तो निसंदेह आपसे होंगी और भी बातें, क्योंकि कमांडेंट अभिराम हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं और पूरा आधा घंटा है हमारे पास उनसे और भी बहुत सारी बातें करने के लिए. सुनते रहिए संदेश टू सोल्जर्स.

आप सभी का पुनः स्वागत है कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में। और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है कमांडेंट अभिराम पंकज, सेकंड इन कमांड और 139

0: 139 बटालियन सीआरपीएफ में आप कार्यरत हैं. कमांडेंट अभिराम पंकज, आपसे ये जानना चाहते हैं, जैसे ही आपके एग्जामिनेशन क्लियर हुआ, आपको पता लग गया कि अब आपको सीआरपीएफ ज्वाइन करना है, तो निश्चित रूप से आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा गया होगा. ट्रेनिंग की प्रक्रिया कैसी रही, कहाँ थी और क्या कुछ अर्जित किया आपने उस ट्रेनिंग के माध्यम से?
1: ये जो सीआरपीएफ का जो बुनियादी प्रशिक्षण अधिकारियों का है, हमारे समय में वो बुनियादी प्रशिक्षण माउंट आबू में होता था. माउंट आबू में हमारा एक इंटरनल सिक्योरिटी एकेडमी है. तो माउंट आबू एक काफ़ी पिक्चरेस्क और काफ़ी खूबसूरत हिल स्टेशन है राजस्थान में, जो दिलवाड़ा के मंदिरों के लिए भी जाना जाता है. काफ़ी हिस्टोरिकल और बहुत अच्छे मौसम वाला जगह है. तो वहाँ 52 वीक्स, ऑलमोस्ट अ ईयर, एक साल की हमारी ट्रेनिंग होती है. और वो जो बुनियादी प्रशिक्षण है, एक सिविलियन को ट्रांसफॉर्म करती है, रूपांतरित करती है एक सोल्जर के रूप में. तो हमारी उस ट्रेनिंग में हमें अच्छा खासा फिजिकल फिटनेस पर ध्यान देना, हमारे वेपन हैंडलिंग पर ध्यान देना, हमारे जो इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो मुद्दे थे, मिलिटेंसी है, टेररिज्म है, इंसर्जेंसी के मुद्दे हैं, इंडियन पिनल कोड्स है, कानून की पढ़ाई है, तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ों को स्ट्रक्चर तरीके से एक साल वहाँ इंटेंसिव ट्रेनिंग देते हैं. तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रेनिंग का टाइम था
0: जी. तो जब आपने अपनी ट्रेनिंग समाप्त कर ली, उसके बाद प्रथम बार आपको कहाँ डिप्लॉय किया गया, कौन से सन में, क्या सन था वो?
1: 2005 में ट्रेनिंग करने के बाद सबसे पहले जो मैं बहुत लकी था, मेरी पहली पोस्टिंग बिहार में हुई. तो बिहार से होने के बाद बिहार में ही मेरी पहली पोस्टिंग होना एक बड़े कमाल की बात थी. और मैं एक साल के करीब में मैं बिहार में तैनात रहा. उस समय बिहार में तो बिहार थोड़ा थोड़ा नक्सल प्रभावी था, और तो उन सारी जगहों पे मैं उन संवेदनशील जगहों पे तैनात रहा. और काफ़ी लोगों का प्यार मिला मुझे बिहार में. लोगों का एक तो उस मिट्टी का होने के नाते, और दूसरा सीआरपीएफ की बहुत इज्जत थी वहाँ पर, और सीआरपीएफ ने बहुत ही बेहतरीन काम किया. उन दिनों मैं याद करता हूँ, एक नक्सल अभियान में ये मधुबन एक छोटा सा प्रदेश है, छोटा सा शहर है पूर्वी चंपारण में, मधुबन पे नक्सलियों का एक अटैक हो गया था. और उसमें सीआरपीएफ की 45वीं वाहिनी ने नक्सलियों को खदेड़कर उनको मारा था. तो उस पूरे अभियान में 9 गैलेंट्री मेडल्स और 25 लोगों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिला था. तो वो एक बहुत ही इंस्पायरिंग इंसिडेंट था. और सीआरपीएफ ने सिविल पुलिस के साथ मिलकर एक बहुत ही कमाल का काम किया था, जो आज भी वहाँ के लोग याद करते हैं. तो बड़ा ही कमाल का मेरे लिए बिहार का जो छोटा सा टेन्योर था, ये लिहाजा मैं बिहार थोड़ा सा टाइम निकाल कर मैं जम्मू एंड कश्मीर आ गया था 2007 में. तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहा, लेकिन जो भी टाइम था वो बहुत इंटरेस्टिंग था. पहली पोस्टिंग थी तो ऑफकोर्स बहुत अच्छा लगा.
0: क्या बात है. फिर बिहार के बाद जम्मू कश्मीर पहुंचे, जम्मू कश्मीर के बाद फिर
1: जम्मू कश्मीर मैं दो मौकों पे रहा. उस समय जब मैं जम्मू कश्मीर 2007 में गया, तो जम्मू कश्मीर उस समय अमरनाथ यात्रा श्राइन बोर्ड का लैंड ट्रांसफर डिस्प्यूट की वजह से थोड़ी सी परेशानियां शुरू हुई थी. मैं बांडीपुरा में तैनात था, लेकिन मैं लोगों का बहुत प्यार मिला. और सीआरपीएफ में अपने आप को जो एक सिक्योरिटी ग्रिड में, जो वहाँ का सिक्योरिटी आर्किटेक्ट है, उसमें बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश किया हुआ था सिविल पुलिस के साथ में. तो सीआरपीएफ का डिसिप्लिन, जो इनकी सिंसियरिटी और एक जो अनबायस रवैया है, तो वो लोगों को बहुत पसंद आता था. तो सीआरपीएफ आज भी उसी तरीके से वहाँ काम करती है. मैं दूसरी बार भी सीआरपीएफ के साथ में 2020 से 2024 में कश्मीर में तैनात रहा. जब रेवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद में मैं गया वहाँ पर, तो सीआरपीएफ एक काफ़ी पॉपुलर फोर्स के रूप में है. एक जो मानवीय दृष्टिकोण वाले बल के रूप में उसको लोग देखते हैं, जानते हैं. तो और एक, जैसा मैं बार बार कहता हूँ कि एक फ्लेक्सिबल वर्सेटाइल फोर्स होने के नाते होने के अलावा सीआरपीएफ का एक मानवीय पहलू भी है. तो वहाँ मददगार करके एक हेल्पलाइन चलाती थी सीआरपीएफ, जो आज भी काफ़ी लोकप्रिय है. और लोकल जो भी जम्मू कश्मीर के लोकल वासिंदे हैं, उनकी किसी भी तरह की मदद के लिए सीआरपीएफ हमेशा तैयार रहती थी. तो एक काफ़ी अच्छा टेन्योर मेरा कश्मीर में रहा. और दो मौकों पे मैं गया, 8 साल में कश्मीर.

0: गोल्डन पीरियड रहा मेरे लिए।
1: क्या बात है। उसके अलावा आपके क्या क्या क्या क्या आपको जिम्मेदारियां दी गई, चाहे वो बिहार के बाद फिर जम्मू कश्मीर हो, कोई ऐसी जिम्मेदारी जो आपको लगता है कि उसने आपको और भी ज्यादा मजबूत बनाया और आपको कर्तव्यनिष्ठ बनाया?
0: निसंदेह सीआरपीएफ, आप सीआरपीएफ में हम लोगों को 15 दिन कैजुअली और 60 दिन का अर्जित अवकाश हमें मिलता है, टोटल 75 दिन। तो आप उसके अलावा जो टाइम पूरे वर्ष का है वो आप अपने परिवार से दूर बल के जवानों के साथ बिताते हैं, तो ये अपने आप में एक अनुभव है और आप उसको जीते हैं और आप एक परिवार से दूर एक अलग परिवार बनाते हैं। तो वहाँ आप अगर ऑनेस्ट नहीं रहेंगे तो आप एक अच्छे लीडर नहीं बन सकते हैं, एक अच्छे कमांडर नहीं बन सकते हैं। तो ये भी मेरे लिए एक बहुत खासा अनुभव रहा है जब मैं जवानों के साथ इतने साल, मुझे 22 सालों की सेवा में अच्छा खासा टाइम सीआरपीएफ के साथ बताया, अच्छे खासे रिलेशन बनाए, तो काफी अच्छा अनुभव रहा है।
1: एक बात बताइए कि पढ़ाई से बहुत प्रेम है मुझे ऐसा महसूस होता है, सर्टिफिकेशन पब्लिक रिलेशंस में किया आपने IIMC से, तो ये निश्चित रूप से आपने अपनी सर्विसेज दौरान किया है
0: जी,
1: तो ये क्या चाहत थी दिल में कि जो आपको हमेशा बांधे रखती है एकेडमिक से, या यूं कह लीजिए कि आपकी सोच कहीं ना कहीं वो आयाम ढूंढती रहती है जो आपके काम को और भी ज्यादा स्थापित कर सके, तो क्या आपकी किसी ये कहूंगी कि जो आपने सोचा हुआ था आपकी कर्तव्य निष्ठा है या आपकी इच्छा शक्ति है जिसने आपको बाध्य किया या मोटिवेट किया कि आप पब्लिक रिलेशंस में सर्टिफिकेशन करें?
0: जैसे अपने शरीर के विकास के लिए आप एक्सरसाइज करते हैं, अच्छा भोजन करते हैं, मुझे लगता है कि इंटेलेक्चुअल विकास अपने उसके लिए आपको पढ़ाई करने की आवश्यकता होती है। तो सीआरपीएफ में हमें गाहे बगाहे ट्रेनिंग के रूप में हमें लर्निंग कर्व पर रखने की कोशिश की जाती है। इसी दौरान मुझे मौका लगा IIMC से एक सर्टिफिकेशन कोर्स करने का, वो काफ़ी हैंडी भी रहा मुझे क्योंकि सब्सिक्वेंटली मैं 2020 से 2024 के दौरान मैं सीआरपीएफ का PRO भी रहा कश्मीर में, श्रीनगर में। उस दौरान सारे मीडिया के साथ जो उनके साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन करने का मुझे मौका मिला। मैं यहाँ यह बात भी बताना चाहूँगा कि मीडिया में जब मैं वहाँ PRO की भूमिका में मैं कश्मीर में तैनात था, ऑल इंडिया रेडियो के साथ काम करने का मौका मिला।
1: वर्षों के जो ये कार्यकाल है, यानी कि जो समर्पण की भावना लिए आकाशवाणी नित्य प्रत्यति श्रोताओं तक पहुंच रहा है, तो उस कड़ी में आप भी सब देखते हैं।
0: तो श्रीनगर में जो ऑल इंडिया रेडियो की सिक्योरिटी थी वो सीआरपीएफ करती थी, वहाँ ऑल इंडिया रेडियो के जो क्वार्टर्स थे वहाँ उसकी सिक्योरिटी सीआरपीएफ करती थी। तो कई बार तो स्टूडियो को के पास जाने का, उनको उनसे बातचीत करने का मौका मिला था उनके अधिकारियों से स्टूडियो, लेकिन आज स्टूडियो में हूँ तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मान रहा हूँ, मैं अपने श्रोताओं से मुखातिब हूँ।
1: क्या बात है, चाहे परोक्ष रूप से हो अपरोक्ष रूप से, हम सदैव यही चाहते हैं कि हमें आकाशवाणी के सानिध्य में इस परिसर में या इस परिसर के बाहर, जैसे कि आपने कहा कि आप नित्य प्रति ऑफिसर्स के साथ हो या फिर हमारे आकाशवाणी के कार्यकर्ता हैं, इनके साथ आप लगातार वार्तालाप में रहते थे और कहीं ना कहीं हम अपने योगदान से ना अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं और हम ये कहते हैं कि हम देश के लिए कर्तव्यनिष्ठ हैं, हम भले ही हम अलग अलग क्षेत्रों में काम क्यों ना कर रहे हों लेकिन कहीं ना कहीं हमारी एक ही मंजिल है और वो है देश प्रेम। अच्छा, अब जब आप सीआरपीएफ में एक ऑफिसर बन गए, एक ऐसे ऑफिसर जो नेतृत्व कर रहा है ना केवल सीआरपीएफ का लेकिन देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी कार्य कर रहा है, आप बहुत लोगों के रियल लाइफ हीरो जैसे कहते हैं वो जरूर बन गए होंगे, तो लोग आते होंगे आपके पास और पूछते होंगे मैं कैसे आप जैसा बन सकता हूँ, कैसा होता था आपके साथ?
0: संदेह ये होता था, एक ये जब यूनिफॉर्म सर्विसेज में आप पब्लिक इंटरफेस पे काम करते हैं तो निसंदेह आपका इंटरेक्शन लोगों के साथ, हर एक तबके के लोगों के साथ, बच्चों के साथ, युवाओं के साथ होता था। तो सभी जगहों पे युवा आकर्षित होते थे, पूछते थे कि हम कैसे पहुंच सकते थे। तो मैं हमेशा उनको एक बात बोलूंगा कि भाई आप अपनी फिजिकल फिटनेस को अच्छा रखें, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, अपने जो फालतू की किसी चीज ऐसी एक्टिविटीज में ना हो जिससे आपका कोई पुलिस रिकॉर्ड खराब हो सकता हो, वो ना करें। तो आप देश निर्माण का जो की भावना अपने मन में रखें और अवेयर रहें, तो बस बहुत डिफिकल्ट नहीं है, मैं हमेशा ये कहता हूँ। एक अच्छा मिक्स, एक सर्वांगीण विकास अगर आपका है, आपका शारीरिक सौष्ठव अच्छा है, आपकी पढ़ाई ठीक ठाक है, आप ये बन सकते हैं। तो युवाओं को मैं उत्साहित करता था, प्रोत्साहित करता था और सीआरपीएफ भी जहाँ

0: कश्मीर में काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट होती थी, तो हमारा जो सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत युवाओं को अपने कैंप्स तक लाके उनको ट्रेन करने की कोशिश करते थे, उनको बताते थे, उनका मार्गदर्शन करते थे, और कई उनमें से सक्सेसफुल भी हुए, तो जो बाद में आज भी टच में है, बातें करते हैं कि आप लोगों का सीआरपीएफ के मार्गदर्शन में हमारी इतनी मदद की। तो बड़े सारे किस्से हैं इस तरीके के, सीआरपीएफ ने लोगों के जीवन को छुआ है, जहाँ पे आज छूती रही है, आज भी मैंने देखा है कि जो नेचर ऑफ जॉब जिस तरीके से करती है, जो सीआरपीएफ का है, और सीआरपीएफ लोगों की जिंदगियों को छूती रही है जहाँ भी रही है, तो वो एक बड़ी यूनिक है, और मैं इसलिए सीआरपीएफ मैं बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे इस बल में काम करने का मौका मिला।
1: क्या बात है, जो आप यूनिफॉर्म पहनते हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक प्रेरणा का स्रोत है, उस दौर में जब प्रथम बार यूनिफॉर्म पहनी थी और इस दौर तक, इतना लंबा समय आप अपनी सर्विसेज दी हैं आपने, तो आज भी वो सेम फीलिंग है जैसे ही पोशाक पहनते हैं, जैसे ही अपनी यूनिफॉर्म पहनते हैं, तो जैसे स्मृति के पन्ने आप पलटने लगते हैं, ऐसा लगने लगता है सब कुछ नया है, जैसे पहली बार सा है, कैसा होता है?
0: बिल्कुल रोंगटे खड़े होते हैं आप, एक जो आपका जो बिहेवियर है जो वो चेंज हो जाता है यूनिफॉर्म पहनने के साथ में, एकदम बैक ऑफ द माइंड आता है कि आप नाउ यू हैव ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ सोल्जर, आप एक सोल्जर हैं, आप सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके बैक ऑफ द माइंड, तो वो हमेशा रहता है, लेकिन वो उस समय वो आ जाता है। तो इस हमारी खाकी हो या फिर डिस्ट्रप्टिव पैटर्न की जो हमारी कैमोफ्लेज यूनिफॉर्म हो, आप कुछ भी आप जब पहनते हैं तो आप सडनली आप एक मिशन रोल में आ जाते हैं
1: जी।
0: कि बस आपकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको एक सर्टेन वे से कॉन्डक्ट करना है जो एग्जाम्पलरी हो, तो सब कुछ आपका अच्छा होना चाहिए। तो एक बड़ी मिश्रित सी फीलिंग होती है, आप प्राइड वाली फीलिंग भी है और एक रिस्पॉन्सिबल फीलिंग भी है। तो वो गर्व जो 22 साल पहले यूनिफॉर्म पहन कर था, आज भी हर एक बार यूनिफॉर्म पहनने के बाद वही फीलिंग होती है। तो मैं तो और मैं कह सकता हूँ कि ये एक बड़ी यूनिक है, आप अगर आपने यूनिफॉर्म नहीं पहना है तो शायद समझना मुश्किल होगा,
1: शायद समझना मुश्किल है। और आपकी बातों से जो आपकी भाव पढ़ रही हूँ, सो ऐसा प्रतीत हो रहा है फर्स्ट लव होता है ना, पहली मोहब्बत, बिल्कुल वो पहली मोहब्बत से जो चाहत होती है कि पहली मोहब्बत में पहली बार मिले, और पहली बार जो यूनिफॉर्म पहनी वो कारवा आज तक कायम है, क्योंकि रोज जब अपने कर्तव्य निर्वाह के लिए आप निकलते हैं और अपना यूनिफॉर्म पहनते हैं, तो वही पहली मोहब्बत से आभास आपको होता है। ऐसे ही पहली मोहब्बत सा आभास हमारे तिरंगे के लिए भी हमें होता है, क्योंकि उस तिरंगे के लिए ही हम कर्तव्यनिष्ठ हैं। तो देश के सभी सिपाहियों को, ऑफिसर्स को हम सलाम कहते हैं, और हम यही कहते हैं कि अगर आप नहीं तो हम भी नहीं हैं।

0: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स में। और संदेश टू सोल्जर्स ये कार्यक्रम निजी रूप में मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब है। कहते हैं कि जीवन में जब आप कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, जब कुछ अधूरा रह जाता है, तो अधूरा यकीन मानिए अधूरा रहता नहीं। जब आप किसी और को उसी स्थिति में ग्रो करते हुए, एक नए आयाम रचते हुए देखते हैं, तो आपको ये महसूस होता है कि आपने अपना कार्य पूर्ण किया, क्योंकि तब आप उसके साथ कदम से कदम मिलाने के लिए, चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे कि हम हर दम हर पल अपने इन शोज के माध्यम से ऐसे योद्धाओं को अपने स्टूडियो में आमंत्रित कर उनकी जबानी उनकी कहानी सुन ये कहते हैं कि हमने वो प्राप्त कर लिया जो आपके माध्यम से हमें मिल रहा है। कमांडेंट अभिराम पंकज, एक बहुत ही निजी सवाल आप तक पहुंचता हुआ। कहते हैं कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ आपकी पर्सनल लाइफ जुड़ी होती है। आपकी निजी जिंदगी की बात की जाए अगर, तो आपके स्पाउस का एक बहुत बड़ा योगदान है आपकी मेकिंग में, क्योंकि आज आप बहुत सारे मिशन पर रहते हैं, कार्यरत रहते हैं, बहुत बिजी भी रहते हैं। ऐसे में उनका योगदान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है घर परिवार को देखने का। उनके साथ पहली मुलाकात, और उस पहली मुलाकात में ये बताना कि मैं सीआरपीएफ ज्वाइन कर रहा हूँ, क्या था वो सिलसिला, कैसे बताया, क्या हुआ, ये आप हमें बताएं।
1: माँ बाप मुझे टाइम ट्रेवल में लेकर जा रही हैं। तो मैं, हम लोग 2002 में पहली बार मिले जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था, तो उस दौरान फिर इस संबंध में कोई बातचीत नहीं थी कि ऐसे हम कोई लाइफ प्लान करेंगे और मैं सीआरपीएफ ज्वाइन करूंगा या फिर गवर्नमेंट सेवा ज्वाइन करूंगा। कॉरपोरेट में कार्यरत है मेरी वाइफ पिछले 22 सालों से, शी इज़ अ प्राइवेट बैंकर प्राइवेट, और तब ये सब सोचा नहीं था। लेकिन सरकारी सेवा में होने की वजह से वर्क लाइफ बैलेंस में जो मुझे उनकी मदद मिली है, पीछे मेरी शादी को 19 साल हो गए, जो मदद मिली है वो बहुत ही कमाल कर रहा है। तो एक उन्होंने जिस तरीके से ये सारा कुछ किया है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम एज आई सेड कि हमारा जो जॉब की रिक्वायरमेंट है, हम बाहर काम कर रहे हैं, तो बहुत कम मौका मिलता है। तो एक फलक्रम की तरीके से, एक बहुत मजबूत वॉल के तरीके से उनका सपोर्ट मेरे साथ में रहा है। तो परिवार को संभालना हो, अपने जॉब का एक बैलेंस बनाना हो, तो जैसे जब मुझे मौका मिला तो 75 दिन की छुट्टियां मेरी हैं, उनकी फ्लेक्सिबल अगर जॉब है तो वो मेरे पास आ जाती थी। अब कोविड के टाइम में कश्मीर में तैनात था, तो उनका वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, तो वो मेरे पास आकर नहीं। तो वर्क लाइफ बैलेंस अगर आपकी आपसी अंडरस्टैंडिंग है, तो एक मैं इस मामले में अगेन मैं काफ़ी काफ़ी लकी रहा हूँ, मैं काफ़ी भाग्यशाली रहा हूँ कि कभी ऐसी कोई समस्या रही नहीं है। और आज तक 19 साल मेरी शादी के बाद भी हम लोग अच्छे से अपना चला पा रहे हैं और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग में साथ कर पा रहे हैं।
0: क्या बात है कि इसे कहते हैं कि आपसी सामंजस्य से आपने बिठा लिया। और कहते हैं कि हम एक दूसरे के साथ प्रणय सूत्र बनते हैं, एक दूसरे के प्रोफेशंस के साथ भी प्रणय सूत्र बनते हैं। तो जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो जिंदगी बहुत ज्यादा आसान हो जाती है। और जिस भी व्यक्ति की सक्सेस स्टोरी सुनी जाती है, वो यही कहता है कि उसकी पर्सनल लाइफ बहुत सहल है, बहुत आसान है, उसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस बाहर बहुत अच्छी है।
1: जी जी,

0: निस्संदेह, और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आई एम गेटिंग बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स. मैं गवर्नमेंट सेक्टर में हूँ, मैं अपना, और वो कॉर्पोरेट सेक्टर में है, तो एक मैं दोनों वर्ल्ड्स का जो बेस्ट मैं वो एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ, और मैं थैंकफुल हूँ.
1: जी निश्चित रूप से, निश्चित रूप से कहते हैं कि ग्रेटिट्यूड इज द वे ऑफ लाइफ, जिनकी वजह से हम आगे बढ़े, चाहे वो माता पिता हो या फिर हमारे स्पाउस, हमें नित्य प्रति उन्हें बस जता देना चाहिए कि आप हमारी जिंदगी में क्या वैल्यू रखते हैं. और ये निश्चित रूप से आपकी बातों से साबित हो रहा है कि आपकी जिंदगी में वो क्या वैल्यू रखती है. अब आकाशवाणी, आकाशवाणी 8 जून को अपने पूरे 90 वर्ष पूरे कर रहा है. अगर स्मृति के पन्नों को पलटा जाए, आकाशवाणी से आपका संबंध, जैसे आपने बताया कि आप कश्मीर में वहां आकाशवाणी केंद्र के संपर्क में थे, वहां पर आप नित्य प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करते थे, लेकिन अगर हम बात करें आकाशवाणी, आकाशवाणी के कार्यक्रमों की, किस तरह से आप जुड़े हुए हैं?
0: देखिए, मैं 70 या 80 के दशक में जिनका जन्म हुआ हो, उनमें से शायद ही कोई इंडिविजुअल हो जिनकी जिंदगी को आकाशवाणी ने ना छुआ हो. तो आकाशवाणी से जुड़े, मैं जैसे बताया कि मैं जैसे मैं स्टूडियो में आया, मेरे लिए एक नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग थी. मैं अपनी मिट्टी में वापिस आए हैं, एक नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग थी. तो ये उस तरीके की बिल्कुल नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग थी. और मेरा, मेरी जो मेमोरीज हैं वो एफएम रेनबो प्रोग्राम को लेकर, विविध भारती, आपको याद होगा अमीन सयानी एक एंकर होते थे जो सिबा बिना का गीत माला लेकर आते थे. और तो वो हमारी बचपन की यादें थी, हम देखते थे और उसको हम बहुत इंतजार करते थे, और हर एक सप्ताह के उस दिन का इंतजार करते थे जब वो बिना का गीतमाला लेकर अमीन सयानी जी आते थे. क्या गोल्डन वॉइस थी उनकी. तो ये सारी यादें थी, और आज वो सारी यादें ताजा हो गई. और फिर मैं धन्यवाद करता हूँ मैं एफएम रेनबो का, आपका, आकाशवाणी का, इस मौके के लिए.
1: बिल्कुल. और ये जो सफर है, ये बहुत ही सुखद सफर है. हमारे जो युवा हैं जिस वक्त हमें सुन रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं, खासतौर पर वो जो सीआरपीएफ ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर किसी भी फोर्सेस का हिस्सा बनना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप?
0: मैं दिनकर की एक रचना है रश्मि रथी, उसके दो शब्द में बोलना, दो पंक्तियां मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा. कम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जो जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है. तो अब अपना बेस्ट करें, एक अच्छे सिटीजन बने.
1: बिल्कुल.
0: अपनी अच्छी तैयारी करें, अपने देश, अपने माता पिता से प्यार करें, अपनी सोसाइटी को, अपना सोसाइटी को अच्छा करें, अपने आसपास का माहौल अच्छा करें, महिलाओं का सम्मान करें, अच्छे संस्कार करें, अच्छे संस्कार अर्जित करें, और बाकी सफलता आपके कदम चूमेगी.
1: जी बिल्कुल, सफलता आपके कदम चूमेगी. और एक बात जो निश्चित रूप से मैंने आत्मसात की है कमांडेंट अभिराम से, कि आप अपने बच्चों को ना खेल में जरूर, यानी कि उनको एक स्पोर्ट्स एटलीस्ट खिलवाइए, कहीं ना कहीं उनका सर्वांगीण विकास होगा, बुद्धि तीक्ष्ण होगी, और साथ ही साथ जो शारीरिक रूप से हमारा गठन होता है उसमें भी अहम भूमिका रचते हैं ये खेल. तो अपने बच्चों को जरूर खेलों से आप जोड़कर रखिए, इस मोबाइल की दुनिया से दूर रखिए, जो चार दीवारी में आपने अपने बच्चों को बंद कर दिया उससे बाहर निकालिए, क्योंकि असली जीवन तो दीवारों के बाहर है.
0: निसंदेह
1: जी. बहुत बहुत शुक्रिया कमांडेंट अभिराम पंकज आपका, आप स्टूडियो आए, बहुत सारी बातें हमारे साथ साझा की. एक ऐसा गीत जो आपके दिल के बहुत प्रिय हो उसको मैं यहाँ प्ले करना चाहूंगी, अगर आप कहीं तो, आपके लिए, जैसा कि आपने फरमाइश की थी शोर फिल्म के उस गाने के लिए, एक प्यार का नगमा है. निश्चित रूप से ये प्रेम है, चाहे वो देश के प्रति हो, अपनों के प्रति हो, या मानवता के प्रति हो, जो हमें हमेशा आगे चलने के लिए प्रेरित करता है. बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक बार फिर.
0: धन्यवाद. जय हिंद.
1: जय

0: आकाशवाणी बीकानेर का हमारा चैनल है मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर शाम के 5 बज रहे हैं। अब दिल्ली केंद्र से समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आज लोकभवन में राज्यपाल के सचिव को औपचारिक इस्तीफा सौंप दिया है। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से अनुरोध किया है कि वे नामित मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करें, क्योंकि उनकी सरकार को विधानसभा में 136 से अधिक विधायकों के समर्थन से पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम पुलिस को आज प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया। अलंकरण परेड का आयोजन गंगटोक में पालजोर स्टेडियम में किया गया था। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां राज्य और पूर्वोत्तर का 3रा राज्य बन गया है। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बल से अधिक नागरिक केंद्रित बनने का आग्रह किया। उन्होंने पुलिस बल से विशेष रूप से महिलाओं, निर्धनों और बच्चों के प्रति संवेदनशील रहने का आग्रह किया।
2: पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाया जाना चाहिए ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही। इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में बनाना होगा।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने देश से हर अवैध अप्रवासी की पहचान करके उसे निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। श्री शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में 340 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए ये बात कही। गृहमंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। आज वीर सावरकर की जयंती के अवसर पर श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान को याद किया। श्री शाह 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। भारतीय

0: राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान मुद्रीकरण के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों के प्रस्तावित खंडों की अस्थायी सूची को अंतिम रूप दे दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि चिन्हित राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों की कुल लंबाई 1,659 किलोमीटर से अधिक है। ये हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र सहित 9 राज्यों में फैले हुए हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विद्यार्थियों को आश्वस्त किया है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा शुरू की गई नई ऑन स्क्रीन मार्किंग OSM प्रणाली अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक प्रगतिशील साधन है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में CBSE अधिकारियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये बात कही। उन्होंने विद्यार्थियों को आश्वासन दिया कि चल रही पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान सभी शिकायतों का समाधान किया जाएगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET UG 2026 को संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। NTA के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई 6 तथा 7 जून को आयोजित की जाएंगी। ईद उल अजहा के कारण तिथियां पुनर्निर्धारित की गई हैं। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आज सिंगापुर में वहां के रक्षा सचिव जोसेफ लियोंग के साथ 16वीं रक्षा नीति वार्ता की सह अध्यक्षता की। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस वार्ता ने भारत और सिंगापुर के बीच मजबूत द्विपक्षीय रक्षा साझेदारी की पुष्टि की। बैठक के दौरान रक्षा सहयोग और दोनों देशों के बीच रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करने के तरीकों पर व्यापक चर्चा हुई। भारत कोरिया व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता के उन्नयन वार्ता का 12वां दौर नई दिल्ली में संपन्न हुआ। वार्ता की सह अध्यक्षता वाणिज्य विभाग के संयुक्त सचिव कपिल चौधरी और कोरिया गणराज्य के व्यापार, उद्योग और ऊर्जा मंत्रालय के व्यापार समझौता नीति महानिदेशक पार्क ग्युन ओह ने की। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने उन्नयन वार्ता में अब तक हुई प्रगति की समीक्षा की गई। ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्ज और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढूला मारू चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 5:05 हुए हैं। प्रस्तुत है युवा श्रोताओं के लिए कार्यक्रम युवा वाणी।

0: नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने कार्यक्रम युववाणी में, जहां हर आवाज में है अपनापन, हर बात में है एक नई सोच और हर मुलाकात में है कुछ नया सीखने का मौका। और आज युववाणी के इस खूबसूरत सफर में आपका साथ देने के लिए मैं हूं आपकी दोस्त पूजा रंगा।
1: और दोस्तों मैं हूं दिशा। दोस्तों अगले कुछ पलों तक हम करेंगे ढेर सारी बातें, कुछ दिल की, कुछ समाज की, कुछ आपसे जुड़ी हुई।
0: दोस्तों ये दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, समय बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, हमारे जुड़ने के तरीके भी बदले जा रहे हैं। एक समय था जब हम हालचाल पूछने के लिए लोगों के घर जाते थे, लेकिन फिर फोन आए और अब बस एक मैसेज, एक नोटिफिकेशन और बात सामने हो जाती है।
1: हाँ पूजा, और अब तो सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले मोबाइल हाथ में आता है और रात को सोने से पहले आखिरी बार भी उसी स्क्रीन को देखना होता है। दिन भर ये मैसेज, रील्स, चैट, कमेंट्स, स्टोरीज, जैसे पूरी दुनिया अब हमारी हथेली में आकर सिमट गई हो।
0: कुल मिलाकर दिशा, ऑनलाइन दुनिया ने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन हर चमकती चीज हमेशा सोना नहीं होती, क्योंकि कभी कभी स्क्रीन हमें, जहां हम हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और वक्त बिताते हैं, वहीं कुछ एक ऐसे शब्द भी सामने ला देती है जो देखने में सिर्फ टेक्स्ट होते हैं, लेकिन उसका असर बहुत गहरा होता है।
1: सही कहा तुमने, कुछ बातें कानों से नहीं सुनाई देती, फिर भी बहुत तेज सुनाई देती है। कुछ चोटें दिखाई नहीं देती, फिर भी बहुत देर तक महसूस होती है। कई बार किसी पोस्ट के नीचे लिखा एक कमेंट, किसी फोटो पर किया गया एक मजाक,

0: या किसी को बार बार ऑनलाइन परेशान करना, ये सब सिर्फ मजाक नहीं है
1: दोस्तों। ये मजाक किसी के चेहरे की हंसी छीन सकता है। इसीलिए आज हम युवाणी में बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो आज के समय में युवाओं के बीच तेजी से बढ़ रहा है, जिसका समझना बहुत जरूरी हो गया है, और वो है साइबर बुलिंग।
0: पूजा, सबसे पहले अगर आसान शब्दों में मैं तुमसे पूछूं तो साइबर बुलिंग आखिर है क्या?
1: दिशा, जब भी किसी के मोबाइल, सोशल मीडिया, चैट मैसेज, ऑनलाइन गेम या किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए बार बार किसी को परेशान किया जाए, उसका मजाक उड़ाया जाए, उसे डराया जाए, उसे अपमानित किया जाए या जानबूझकर उसे बुरा महसूस कराया जाए तो उसे साइबर बुलिंग कहते हैं।
0: मतलब किसी की फोटो पर गलत कमेंट करना या किसी के बारे में अफवाह फैलाना, बार बार हर्ट करने वाले मैसेज भेजना या ग्रुप्स में किसी को जानबूझकर टारगेट करना, ये सब साइबर बुलिंग हो सकता है।
1: बिल्कुल, और कई बार तो लोग अरे ये तो मजाक था कहकर टाल देते हैं, लेकिन सामने वाले के लिए वही मजाक दर्द बन जाता है।
0: हाँ, क्योंकि ऑनलाइन लिखे शब्द मिट तो जाते हैं पर उनका असर कई बार मन में रह जाता है।
1: सही कहा, कई बार इंसान बाहर से नॉर्मल दिखता है लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ सोच रहा होता है। एक गलत कमेंट, एक एडिटेड फोटो या बार बार ऑनलाइन मजाक किसी का कॉन्फिडेंस बहुत हद तक कम कर सकता है।
0: और सबसे मुश्किल बात यह है पूजा कि कई बार लोग किसी से कह भी नहीं पाते। उन्हें लगता है कि अगर मैंने बताया तो क्या सोचेंगे, शायद मेरी ही गलती होगी, या चलो इग्नोर कर देते हैं।
1: लेकिन दिशा, इसको इग्नोर कर देना या चुप रहना इस समस्या का हल नहीं है। बोलना जरूरी है। अगर कोई ऑनलाइन परेशान कर रहा है तो सबसे पहले खुद को ब्लेम मत करो, क्योंकि गलती आपकी है ही नहीं।
0: बिल्कुल, और अगर कभी ऐसा हो तो सबसे पहले उस व्यक्ति को जवाब देने की जल्दी मत करो। गुस्से में दिया गया जवाब कई बार बात को और बढ़ा देता है।
1: ऐसे में सबसे बेहतर होता है उस अकाउंट को ब्लॉक कर दो, जरूरत पड़ी तो रिपोर्ट करें और स्क्रीनशॉट अपने पास रखें।
0: और सबसे जरूरी, अपने किसी भरोसेमंद इंसान से बात करें, जैसे कि माता पिता, भाई बहन, दोस्त, टीचर या कोई ऐसा जिससे बात करके आपको हल्का महसूस हो,
1: क्योंकि बात करने से रास्ते निकलते हैं और मन का बोझ कई हद तक कम हो जाता है।
0: और दोस्तों, एक बात उन लोगों के लिए भी जो कभी मजाक में कुछ लिख देते हैं, कभी कभी हमें लगता है मैंने तो बस फन में लिखा था, लेकिन वही बात सामने वाले को बहुत हर्ट कर सकती है।
1: बिल्कुल, इसीलिए कुछ भी पोस्ट या कमेंट करने से पहले एक पल रुककर सोचिए, अगर ये बात कोई हमें कहे तो हमें कैसा लगेगा? अगर जवाब अच्छा नहीं है तो शायद वो लिखना भी उचित नहीं होगा।
0: ऑनलाइन दुनिया भी हमारी ही दुनिया है, वहाँ भी उतना ही काइंडनेस, उतना ही रेस्पेक्ट या उतनी ही समझदारी जरूरी है जितनी रियल लाइफ में।
1: इसीलिए याद रखिए दोस्तों, आपकी एक अच्छी बात किसी का दिन बेहतर बना सकती है और एक गलत शब्द किसी को अंदर तक दुख पहुंचा सकता है।
0: तो आइए इंटरनेट को सिर्फ स्मार्ट नहीं, थोड़ा सेफ, थोड़ा काइंड भी बनाएं,
1: ताकि इस ऑनलाइन दुनिया में हर किसी को मिले खुलकर मुस्कुराने, सीखने और सपनों को उड़ान देने की जगह।
0: और उन्हीं सपनों की उड़ान के नाम सुनते हैं ये गीत।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं, खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
3: आरबीआई कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: दोस्तों, अभी हमने बात की कि कैसे ऑनलाइन दुनिया आज हमारी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा बन चुकी है। यहाँ हम बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत सी जानकारियाँ हासिल करते हैं।
6: और पूजा, ऑनलाइन दुनिया की तरह ही ज्ञान बढ़ाने और कुछ नया जानने का मजेदार तरीका हमारे कार्यक्रम में भी है, क्विज टाइम के रूप में।
5: जी हाँ दोस्तों, इस सेगमेंट में हम आपसे पूछेंगे दो सवाल जिनके जवाब मिलेंगे आपको इस कार्यक्रम के अंत में।
6: तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज का पहला सवाल है, 2026 में भारत और जापान के बीच पहला एआई स्ट्रेटेजिक डायलॉग कहाँ आयोजित किया गया।
5: आज का दूसरा सवाल है, भारत का पहला पेट्रोग्लिफ कंजर्वेशन पार्क किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित

0: किया गया। निशा, कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ नाम सिर्फ नाम ही नहीं होते, वो अपने साथ एक पूरा इतिहास लेकर चलते हैं, एक ऐसा इतिहास जिसमें संघर्ष होता है, सपने होते हैं, त्याग होता है और अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा भी।
1: बिल्कुल पूजा, और ऐसे व्यक्तित्व समय के साथ कहीं खोते नहीं है, बल्कि हर बीतते साल के साथ और गहराई से याद किए जाते हैं। उनके विचार, उनके शब्द, उनका जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन जाता है।
0: और दोस्तों, जब भी हम ऐसे लोगों को याद करते हैं तो सिर्फ उनका नाम नहीं लेते, उनके संघर्ष को याद करते हैं, उनके साहस को महसूस करते हैं और उस सोच को सलाम करते हैं जिसने उन्हें असाधारण बनाया।
1: और आज का दिन भी हमें ऐसे ही एक महान व्यक्तित्व को स्मरण करने का अवसर देता है, एक ऐसा नाम जिसने अपने साहस, अपने विचार, अपने राष्ट्रप्रेम से भारतीय इतिहास में अपनी अमिट पहचान बनाई। हम बात कर रहे हैं वीर विनायक दामोदर सावर जी की।
0: दोस्तों, सावरकर जी का जन्म 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक जिले के भंगूर गांव में हुआ था। बचपन से ही उनके भीतर देश के प्रति प्रेम और समाज के लिए कुछ करने का जज्बा दिखाई देने लगा था। वो पढ़ाई में तो तेज थे ही, साथ ही साथ सोच में स्पष्ट भी थे। अपने विचारों को बेबाकी से रखने का साहस उनमें खूब था।
1: वीर सावरकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के उन प्रमुख सेनानियों में गिने जाते हैं जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। वे सिर्फ एक क्रांतिकारी नहीं थे, बल्कि लेखक, कवि, समाज सुधारक और एक प्रभावशाली विचारक भी थे।
0: यही नहीं, दिशा, उनकी लेखनी में भी उतनी ही शक्ति थी जितनी उनके विचारों में। उन्होंने अपने शब्दों के माध्यम से युवाओं के भीतर देशभक्ति की भावना जगाई और लोगों को अपने अधिकारों, अपने कर्तव्यों और स्वतंत्रता के महत्व के प्रति जागरूक किया।
1: बिल्कुल पूजा, उनका जीवन संघर्षों से भरा हुआ, लेकिन उन संघर्षों के बीच भी उनका आत्मविश्वास कभी कम नहीं हुआ। देश के लिए उनका समर्पण और उनके भीतर का साहस ही उनकी सबसे बड़ी पहचान बना। इसी अटूट हिम्मत और दृढ़ निश्चय की वजह से लोग उन्हें सम्मान पूर्वक वीर सावरकर के नाम से याद करते हैं।
0: दोस्तों, उनके जीवन से हमें सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि जीने की प्रेरणा भी मिलती है। वे हमें सिखाते हैं कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, लेकिन अगर मन में विश्वास हो, विचारों में स्पष्टता हो और लक्ष्य के प्रति समर्पण हो, तो कोई भी कठिनाई रास्ता कभी नहीं रोक सकती।
1: बिल्कुल, और आज उनकी जयंती हमें उनके योगदान को याद करने का अवसर देती है, साथ ही यह सोचने का भी कि हम अपने समाज, अपने देश और अपने भविष्य के लिए क्या कर सकते हैं।
0: तो आइए वीर विनायक दामोदर सावरकर जी को श्रद्धापूर्वक नमन करें और उनके जीवन से प्रेरणा लेते हुए साहस, समर्पण और देश प्रेम की उस भावना को अपने भीतर जीवित रखें,
1: क्योंकि ऐसे व्यक्तित्व हमें सिर्फ इतिहास से नहीं जोड़ते, बल्कि ये भी बताते हैं कि अपने विचारों पर विश्वास रखना और अपने उद्देश्य के लिए डटे रहना कितना जरूरी है।
0: बिल्कुल, और यही प्रेरणा पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहती है। शब्द बदलते हैं, समय बदलता है, लेकिन ऐसे लोगों की छाप कभी धुंधली नहीं होती।
1: बिल्कुल दोस्तों, जिस प्रकार से सावरकर जी ने इतने संघर्षों के बाद भी अपने आत्मविश्वास को कभी कम नहीं होने दिया, उसी प्रकार हमारे भारतीय सेना भी इतने संघर्षों के बाद भी अपना आत्मविश्वास कम नहीं होने देती और हमारी सुरक्षा करती है।
2: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के, अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
3: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है,

0: पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज़ जन जन तक।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: दोस्तों अक्सर ऐसा होता है कि घर में या कॉलेज में किसी एक को सर्दी खांसी या जुकाम

0: देखते दो तीन दिन में आसपास के कई लोग बीमार पड़ जाते हैं। हम इसे बहुत आम मानते हैं, लेकिन विज्ञान की भाषा में इसे ही संक्रामक रोग यानी कि इन्फेक्शियस डिजीज कहा जाता है।
1: देखो पूजा, संक्रामक रोग का सीधा मतलब है ऐसी बीमारियां जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती है। ये बीमारियां अकेले नहीं रहती, इन्हें आगे बढ़ना पसंद होता है। ये छोटे छोटे कीटाणु जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया या फंगस के कारण होते हैं, जैसे कि जुकाम, बुखार, मलेरिया, टाइफाइड या त्वचा का कोई इन्फेक्शन।
0: यानी ये एक शरीर से दूसरे शरीर में जगह बदलती रहती है। लेकिन दिशा, ये फैलती कैसे है? हवा के जरिए या किसी और तरीके से?
1: इसके कई रास्ते हैं पूजा। सबसे पहला रास्ता है हवा। जब कोई बीमार व्यक्ति बिना मुंह ढके खांसता या छींकता है तो उसके कीटाणु हवा में फैल जाते हैं। जब कोई दूसरा इंसान वहां सांस लेता है तो वो कीटाणु उसके अंदर चले जाते हैं। इसके अलावा दूषित पानी पीने से या खुला हुआ या खराब खाना खाने से और मच्छरों के काटने से भी ये बीमारियां एक दूसरे में पहुंच जाती है।
0: बिल्कुल दोस्तों, आप सोच रहे हैं कि हमारी तो इम्यूनिटी अच्छी है, तो इम्यूनिटी अच्छी होना बहुत अच्छी बात है और इससे बीमारी से लड़ने से मदद भी मिलती है। लेकिन कीटाणु किसी की उम्र या फिटनेस देखकर हमला नहीं करती, और एक बात जो बहुत जरूरी है, हो सकता है कि आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो तो आप बहुत ज्यादा बीमार ना पड़ो, लेकिन आप उस बीमारी को अपने शरीर में कैरी करके अपने घर ले जा रहे हैं, जहाँ छोटे बच्चे या बुजुर्ग दादा दादी हैं, उन्हें यह इन्फेक्शन बड़ी आसानी से लग सकता है। इसीलिए सतर्क रहना सबके लिए जरूरी है।
1: ये तो तुमने पते की बात कही पूजा, यानी खुद का बचाव करना तो जरूरी है, उससे पहले दूसरों को भी सुरक्षित रखना है। तो फिर इन संक्रामक रोगों से बचने के लिए हमें रोजमर्रा में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
0: दिशा, इनके लिए बहुत मुश्किल काम नहीं करने, बस चार छोटी छोटी आदतें अपनानी है। सबसे पहले हाथ धोना। कुछ भी खाने से पहले, बाहर से आने के बाद हाथों को साबुन पानी से अच्छी तरह धोए। दूसरा, खांसते या छींकते समय हमेशा मुंह पर रुमाल या टिश्यू रखे।
1: दोस्तों, हमेशा ढका हुआ या ताजा खाना खाएं। पानी हमेशा साफ स्रोत से या उबालकर ही पिए। आसपास की सफाई यानी कि अपने घर के आसपास पानी इकट्ठा न होने दे ताकि मच्छर न पनपे।
0: दोस्तों, ये छोटी छोटी आदतें और बड़ा बचाव है। अच्छा ऐसा, अगर किसी को ऐसे लक्षण दिखे जैसे लगातार तेज बुखार आना, बहुत ज्यादा कमजोरी लगना, तो उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए?
1: सबसे पहली बात तो ये है कि खुद से कोई भी दवा नहीं खरीदनी चाहिए, जिसे हम सेल्फ मेडिकेशन कहते हैं। कई बार लोग मेडिकल स्टोर से बिना पर्ची के दवा ले आते हैं जो नुकसान कर सकती है। तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, सही सलाह लें और सरकारी अस्पताल या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जांच करवाएं।
0: बिल्कुल दोस्तों, बीमारी को छुपाने या खुद डॉक्टर बनने से बहुत बेहतर है कि आप डॉक्टर को सही दिखा के आए।
1: और मुझे उम्मीद है कि हमारे दोस्त इन छोटी बातों का ध्यान जरूर रखेंगे।
0: तो दोस्तों, संक्रामक रोगों से बचने का सबसे बड़ा मंत्र है सफाई और सतर्कता। साफ रहिए, सेहतमंद रहिए।

बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक, युवाओं से लेकर किसानों तक और किसानों से लेकर जवानों तक, हर दिल की आवाज बना आकाशवाणी का जादू।

तो रेडियो से आगे बढ़कर पॉडकास्ट और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आपके सुनहरे कल की कहानियां दोबारा सुनाने को है तैयार। आकाशवाणी।

तो हमेशा सुनिए रेडियो रेडियो महसूस कीजिए रेडियो रेडियो रेडियो क्योंकि आप सवार हैं

आकाशवाणी का 90 साल में प्रवेश। कोशिश रहेगी अब से प्रसारण का हर लम्हा होगा आपके लिए अति विशेष।

0: पूजा, आज सुबह मैंने आसमान में सूरज की दिशा देख के समय का अंदाजा लगाना सीखा था, और मैं सोच रही थी कि अगर घड़ी ना होती तो लोग समय कैसे पता करते होंगे।
1: सच में दिशा, मैंने तो कभी भी इसके बारे में सोचा ही नहीं है। शायद लोग अनुमान लगाते होंगे।
0: नहीं नहीं, सिर्फ अनुमान नहीं, हमारे भारत में भी एक ऐसी अद्भुत जगह बनाई गई है जहाँ बिना मोबाइल, बिना घड़ी, बिना आधुनिक मशीनों के भी समय और ग्रह की सही जानकारी पता कर ली जाती थी। उस जगह का नाम है जंतर मंतर।
1: हाँ दोस्तों, जंतर मंतर एक विशाल खगोलीय वैधशाला है। जंतर का मतलब यंत्र और मंतर का मतलब गणना होता है, यानी ऐसे यंत्र जिन्हें खगोलीय गणनाएं की जाए। पुराने समय में वैज्ञानिक और ज्योतिषी इन यंत्रों की मदद से सूरज, चांद, ग्रहों और तारों की स्थिति देखते थे।
0: मतलब ये सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि विज्ञान का खजाना है।
1: बिल्कुल सही, इसे सवाई जयसिंह द्वितीय ने बनवाया था। वे सिर्फ राजा ही नहीं थे बल्कि बहुत अच्छे खगोल वैज्ञानिक भी थे। उन्होंने विज्ञान और गणित में बहुत ही रुचि थी।
0: दोस्तों, उस समय लोग खगोलीय गणनाओं के लिए छोटी छोटी धातु की मशीनों का उपयोग करते थे, लेकिन उनमें कई गलतियां आ जाती थी और ग्रहों की जो स्थिति और समय है वो सही निकलता नहीं था। तब सवाई जयसिंह ने सोचा कि अगर बड़े और स्थिर यंत्र बनाए जाएंगे तो शायद गणनाएं ज्यादा सटीक होगी। इसी सोच के कारण जंतर मंतर का निर्माण हुआ था।
1: और तो और, उन्होंने दुनिया भर के खगोल विज्ञान का अध्ययन किया, अरब और यूरोप की किताबें पढ़ी और फिर भारत में ऐसे यंत्र बनाए जो उस समय के लिए बहुत आधुनिक माने जाते थे।
0: और पूजा, सबसे पहला जंतर मंतर 1724 ईस्वी में दिल्ली में बनना शुरू हुआ था। इसके बाद जयपुर, उज्जैन, वाराणसी और मथुरा में भी जंतर यंत्र बनाए गए थे। शायद लगभग 1734 ईस्वी तक इसका निर्माण कार्य पूरा हो गया था।
1: निशा, बहुत से लोगों को ये लगता है कि जंतर मंतर सिर्फ एक ही जगह है, लेकिन हमारे इतिहास में ऐसे 5 जंतर मंतर बनाए गए थे।
0: हाँ दोस्तों, ये 5 जगह पर बनाए गए थे, वो है दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी और मथुरा।
1: लेकिन दिशा, इनमें सबसे फेमस कौन सा है?
0: पूजा, जयपुर का जंतर मंतर सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी पत्थर की सूर्य घड़ी मौजूद है, जिसे सम्राट यंत्र कहा जाता है।
1: और दोस्तों, ये सूर्य घड़ी बहुत इंटरेस्टिंग है। सूरज की परछाई देखकर ये समय बता देती है। जैसे जैसे सूरज आगे बढ़ता है, परछाई बदलती जाती है और उससे सही समय पता चल जाता है। कहा जाता है कि ये घड़ी केवल कुछ सेकंड का ही अंतर देती है।
0: पूजा, बिना बिजली के इतना सटीक समय सच में कमाल है।
1: सिर्फ यही नहीं दिशा, वहाँ और भी कई यंत्र है, जैसे जयप्रकाश यंत्र, राम यंत्र, मिश्र यंत्र। हर यंत्र का काम अलग अलग है। कोई ग्रह की स्थिति बताता था, कोई ऊंचाई मापता और कोई मौसम की जानकारी देता।
0: पूजा, ऐसा लगता है कि उस समय के लोग विज्ञान में बहुत आगे थे।
1: बिल्कुल, आज हम आधुनिक तकनीक पर गर्व करते हैं, लेकिन हमारे पूर्वजों ने सदियों पहले ही विज्ञान की अद्भुत समझ विकसित कर दी थी, और जंतर मंतर इसका सबसे बड़ा प्रमाण है।
0: और उस समय खगोल विज्ञान सीखने वाले लोग वहाँ अध्ययन करते थे, वहाँ गणनाएं की जाती थी और पंचांग तैयार किए जाते थे। त्योहार और ग्रहों की

0: तिथियां भी इन्हीं गणनाओं के आधार पर तय की जाती थी।
1: तुम्हारा मतलब है दिशा, जंतर मंतर का उपयोग सिर्फ समय देखने के लिए नहीं किया जाता था?
0: बिल्कुल नहीं, इसका उपयोग मौसम, ग्रहण, ग्रहों की चाल, ज्योतिष गणनाओं के लिए भी किया जाता था। उस समय यह विज्ञान और शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र जो था।
1: मुझे तो लगता था कि पुराने समय में लोग सिर्फ कहानियां और मान्यताओं पर विश्वास करते थे, लेकिन यहाँ तो पूरा का पूरा विज्ञान छिपा है।
0: ये तो खास बात है पूजा कि भारत का इतिहास सिर्फ राजाओं और युद्धों का इतिहास नहीं है, बल्कि ज्ञान और विज्ञान का भी इतिहास है।
1: लेकिन क्या आज भी जंतर मंतर काम करता है?
0: हाँ, कुछ यंत्र आज भी सही जानकारी दे देते हैं। हालांकि अब आधुनिक मशीनें आ गई है, लेकिन फिर भी वैज्ञानिक और पर्यटक इन्हें देखने आते हैं।
1: इतना ही नहीं दोस्तों, जयपुर के जंतर मंतर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। ये हमारे देश के लिए बहुत गर्व की बात है।
0: और सोचो, उस समय न कंप्यूटर थे न इंटरनेट, फिर भी लोगों ने आसमान को इतनी बारीकी से समझ लिया।
1: और दिशा, आसमान को समझ लेने की यही विरासत आज भी चांद तारों की चमक में दिखाई देती है।
0: और दोस्तों, इसी चमक को इनकी इसी खूबसूरती के साथ पेश है ये गीत।

0: पूजा, जरा सोचो कि हमारी पृथ्वी इतनी बड़ी है, इस पर इतने सारे देश, शहर और जंगल हैं। अगर तुम्हें पूरी दुनिया में किसी एक अनजान जगह पर पहुंचना हो तो तुम कैसे पहुंचोगी?
1: ये तो बहुत मुश्किल है दिशा। बिना रास्ते के या बिना नाम के तो कोई भी खो जाएगा। लेकिन इसी खोने से बचने के लिए भूगोल यानी कि ज्योग्राफी ने पूरी पृथ्वी पर एक अदृश्य जाल बिछा रखा है।
0: वही जाल ना, जिसे हम कहते हैं अक्षांश और देशांतर, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड।
1: अब ये नाम सुनते ही मुझे स्कूल की भूगोल की क्लास में पढ़ी आड़ी तिरछी लाइनें याद आ जाती है, जिसमें वो बताती थी कि क्या अक्षांश है और क्या देशांतर है।
0: बिल्कुल दोस्तों, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे हम अपनी कॉपी में सीधी और जो खड़ी लाइनें खींचते हैं, वैसे ही ग्लोब पर भी लाइनें खींची जाती है।
1: तो सबसे पहले हम बात करते हैं अक्षांश पर यानी कि लैटिट्यूड्स पर, कि ये क्या होते हैं।
0: सबसे पहले लैटिट्यूड को आप याद रख सकते हैं लेटी हुई लाइनों से। देखिए, जो लाइनें ग्लोब पर लेटी हुई यानी आड़ी यानी हॉरिजॉन्टल होती है, उन्हें हम अक्षांश कहते हैं। ये हमें बताती है कि कोई जगह कितनी उत्तर में है या कितनी दक्षिण में।
1: और दूसरा सबसे खास है भूमध्य रेखा, ये बीच वाली लाइन होती है ना, जिसे 0 डिग्री भी कहा जाता है।
0: हाँ, और भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध।
1: दोस्तों, जैसे जैसे हम उत्तर की ओर जाते हैं अक्षांश बढ़ते जाते हैं, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री और ऐसे ही 90 डिग्री उत्तर तक।
0: और दोस्तों, वैसे ही दक्षिण दिशा में होता है, जैसे कि 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक बढ़ते रहते हैं।
1: मतलब कुल मिलाकर अक्षांश हमें बताते हैं कि कोई जगह भूमध्य रेखा से कितनी ऊपर है या नीचे है।
0: अच्छा दोस्तों, लेटी हुई लाइन में अक्षांश है और जो खड़ी लाइनें होती है उन्हें हम कहते हैं देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड। लॉन्ग मतलब लंबी या खड़ी लाइनें, ये ऊपर से नीचे की तरफ खींची होती है और बताती है कि कोई जगह कितनी पूर्व में है या कितनी पश्चिम में।
1: और दोस्तों, देशांतर वो इमेजिनरी लाइंस है या यूं कहूं कि काल्पनिक रेखाएं हैं जो उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक खींची जाती है। इनकी शुरुआत प्रधान मध्यान रेखा से होती है, जिसे 0 डिग्री देशांतर कहा जाता है।
0: दोस्तों, यह रेखा इंग्लैंड के ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरती है।
1: दोस्तों, देशांतर का मुख्य कार्य समय को निर्धारित करना है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती रहती है, इसीलिए अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय होता है। इसी कारण तो दुनिया में अलग अलग समय क्षेत्र बनाए गए हैं।
0: इसीलिए तो भारत का जो मानक समय है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया जाता है, जिससे पूरे देश में एक समान समय चलता रहता है।
1: लेकिन दिशा इन लाइनों को खींचने का फायदा क्या हुआ? पृथ्वी पर तो ऐसी कोई भी असली लाइन है ही नहीं, ये तो सारी इमेजिनरी लाइंस हैं।
0: ये तो तुमने सही कहा, लेकिन पूजा फायदा तो यह है कि जब एक लेटी हुई लाइन और एक जो खड़ी लाइन है आपस में एक दूसरे को काटती है तो वहाँ एक प्लस का निशान बनता है। वह निशान किसी भी जगह का पक्का पता होता है।
1: अच्छा, तो मैं अब समझी कि ये प्लस का जो निशान है वही समुद्र में चलते हुए जहाज या आसमान में उड़ते हुए हवाई जहाज कभी भी रास्ता भटकने नहीं देते, क्योंकि उनके पास ये पक्का पता होता है।
0: बिल्कुल सही कहा। चाहे हमें कहीं किसी नए शहर का रास्ता ढूंढना हो या फिर मौसम का अंदाजा लगाना हो, ये लाइनें हर जगह काम आती है।
1: सच में दिशा, पुराने समय में यात्राएं करना बहुत कठिन हुआ करता था, लेकिन इन रेखाओं की खोज के बाद दुनिया को समझना बहुत आसान हो गया है। आज आधुनिक तकनीक और मानचित्र प्रणाली भी इन सिद्धांतों पर आधारित है। आज समझ में आया कि भूगोल कितना सिंपल और कितने काम का है, जो कभी भी स्कूल में समझ ही नहीं आया था।
0: बिल्कुल पूजा, तुम्हें याद है कि हमने कार्यक्रम के शुरुआत में कुछ 2 सवाल पूछे थे दोस्तों से?
1: बिल्कुल दोस्तों, आपको तो पता ही है कि थोड़ी ही देर पहले हमने आपसे 2 प्रश्न पूछे थे और कहा था कि इनके जवाब मिलेंगे आपको कार्यक्रम के अंत में। तो दोस्तों,
0: हमारा पहला सवाल है कि 2026 में भारत और जापान के

0: बीच पहला एआई स्ट्रेटेजिक डायलॉग कहाँ आयोजित किया गया? जिसका सही जवाब है मुंबई। मैं अपना उत्तर फिर से दोहराती हूँ, उसका सही जवाब है मुंबई।
1: दोस्तों हमारा दूसरा सवाल, भारत का पहला पेट्रोग्लिफ कंजर्वेशन पार्क किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया गया था? मैं प्रश्न को फिर से दोहरा देती हूँ, भारत का पहला पेट्रोग्लिफ कंजर्वेशन पार्क किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया गया था? इसका सही जवाब है लद्दाख।
0: दोस्तों क्विज के आंसर तो आपने जान ही लिए, इसलिए बढ़ते हैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव की ओर, और जहां हम लेकर आते हैं युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी।
1: दोस्तों इस जानकारी के थ्रू हम आपको बताते हैं अलग अलग वैकेंसीज के बारे में, और आज की वैकेंसी है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि कर्मचारी बोर्ड SSC ने SCGL के लिए कुल 12,256 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस भर्ती के माध्यम से केंद्र सरकार के विभिन्न विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में नियुक्तियां की जाएगी,
0: जो नियुक्ति ग्रुप बी और ग्रुप डी के लिए है। अब बात करें योग्यता और आयु सीमा की, तो उम्मीदवार ग्रेजुएट होना चाहिए और 18 से 32 वर्ष के बीच का होना चाहिए।
1: दोस्तों आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 जून 2026 है, और आपको बता दें कि आवेदन ऑनलाइन ही होगा, तो आवेदन से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप SSC की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in को विजिट कर सकते हैं।
0: तो दोस्तों अगर आप सरकारी सेवा में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं तो यह आपके लिए एक शानदार अवसर हो सकता है, इसलिए तैयारी जारी रखिए और पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए।
1: उम्मीद है आज का शो आपको पसंद आया होगा। मैं हूँ पूजा।
0: और मैं हूँ दिशा।
1: अब आपसे लेते हैं विदा, फिर मुलाकात होगी नए विषय, नई जानकारी और ढेर सारी बातों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।

इधर युवा साथियों का कार्यक्रम युवा वाणी आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर शाम के 5:55 हो चुके हैं। अब सुनिए हमारी इस सभा के कार्यक्रमों का विवरण।

आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से जिले की चिट्ठी शाम 6:42 पर और इसी केंद्र से हम आपको सुनवाएंगे प्रांतीय नाटक रात्रि 10 बजे। ग्रामीण श्रोताओं के लिए कार्यक्रम ग्रामीण जगत होता है शाम 7 बजे। आज कार्यक्रम में सुनिएगा चर्चा, अधिक उत्पादन के लिए कार्बनिक खादों का प्रयोग, स्वस्थ जीवन शैली के सूत्र, गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना, मानसून का गर्भकाल है 9 तपा, साथ ही अन्य जानकारियां और लोक संगीत। कार्यक्रम ग्रामीण जगत शाम 7 बजे। रात्रि 8 बजे ईद उल जुहा पर रेडियो रिपोर्ट, वाचन स्वर है श्री महेश उपाध्याय का, प्रस्तुतकर्ता हैं श्री रेवंत राम लेखा, संयोजन श्री अमित सिंह का है।

लोक संगीत का कार्यक्रम होगा रात्रि 8:30 पर। सुगम संगीत सुनिएगा शाम 7:45 पर और रात्रि 9:30 पर।

था हमारी सभा के कार्यक्रमों का विवरण। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर।

आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर शाम के 6 बज रहे हैं। अब दिल्ली केंद्र से समाचार होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है। श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने पार्टी की राज्यसभा सीट की पेशकश विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दी है। उन्होंने कहा कि वे राज्य की जनता के लिए काम करते रहेंगे। कांग्रेस की विधानसभा चुनावों में जीत के बाद सिद्धारमैया मई 2023 में दूसरी बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने थे। उनके इस्तीफे के साथ ही राज्य में चल रहा लंबा सत्ता संघर्ष समाप्त हो गया है। श्री डीके शिवकुमार को 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका थी। गृहमंत्री अमित शाह ने देश से हर घुसपैठिए की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में आज 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमीशन कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की भी चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृहमंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर आशीष शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। भारतीय जनता पार्टी ने वर्तमान विधायक अभिषेक देवरॉय को पार्टी की त्रिपुरा प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। अभिषेक देवरॉय राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति दी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ माणिक साहा ने बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि देवरॉय के गतिशील नेतृत्व और संगठनात्मक दूरदर्शिता से त्रिपुरा में भाजपा और मजबूत होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कर्नाटक, गोवा और केरलम के तीन दिन

0: के दौरे पर कल रवाना होंगे। उपराष्ट्रपति कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। शनिवार को श्री राधा कृष्ण पणजी में गोवा के राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति 31 मई को बेल्थागंडी के SIRI औद्योगिक पार्क का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने येनेज यांशा को स्लोवानिया का प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वे दोनों देशों के लोगों की साझा समृद्धि और पारस्परिक लाभ के लिए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में स्लोवेनिया और प्रधानमंत्री के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा है कि लोकतंत्र संवाद, विचार विमर्श, आम सहमति और असहमति के वातावरण में फलता फूलता है। श्री बिड़ला ने आज दिल्ली विधानसभा में 1924 से 1930 तक केंद्रीय विधानसभा की सभी 407 बैठकों की कार्यवाही के 89 खंडों के अनूठे संकलन का विमोचन किया। श्री बिड़ला ने कहा कि यह संग्रह भावी पीढ़ियों और लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए अमूल्य मार्गदर्शक साबित होगा। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने आज दिल्ली नगर निगम के भलसवा अपशिष्ट निपटान स्थल संबंधी सुधार कार्यों की समीक्षा की। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने बताया कि अपशिष्ट की मात्रा में उल्लेखनीय कमी आई है। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आज सिंगापुर के रक्षा सचिव जोसेफ लियोंग के साथ 16वीं रक्षा नीति वार्ता की सह अध्यक्षता की। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस वार्ता ने भारत और सिंगापुर के बीच मजबूत द्विपक्षीय रक्षा साझेदारी की पुष्टि की है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु ने अपने अपने वर्ग के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी की पुरुष डबल्स जोड़ी तथा ध्रुव कपिला तनिषा क्रास्टो की मिक्स डबल्स जोड़ी ने भी क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी बीकानेर का ये ढूला मारू चैनल है। शाम के 6:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में सुनिए पुरानी फिल्मों से फिल्मी गीत।

0: मिल गया है पल। जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच।

आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से। और अब सुनिए मोहम्मद रफी मन्ना डे और साथियों को, फिल्म का नाम है तीसरी आंख।

0: श्रोताओं, ये थे महेंद्र कपूर और साथी। फिल्म का नाम देश के दुश्मन, गीतकार वर्मा मलिक और संगीतकार सोनी कोमी। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर शाम के 6:30 हो रहे हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से प्रादेशिक समाचार और उसके बाद जिले की चिट्ठी और फिर राजस्थानी भाषा में प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत विभिन्न गतिविधियां जारी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने CBSE कक्षा 12 की परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया में विसंगतियों से संबंधित छात्रों की सभी शिकायतों के समाधान का दिया आश्वासन। ईद उल अजहा का पर्व प्रदेश भर में अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है और राज्य के ज्यादातर स्थानों पर तेज गर्मी का असर जारी। पश्चिमी भागों में अगले एक दो दिन हीटवेव का दौर जारी रहने का पूर्वानुमान। समाचारों के साथ मैं शिप्रा यादव और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में चल रहे वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इन गतिविधियों का उद्देश्य इस अभियान से ज्यादा लोगों को जोड़ना और जल संरक्षण के प्रति आमजन में जागरूकता बढ़ाना है। इसी कड़ी में झुंझुनू जिले के नवलगढ़ में आज जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में आए लोगों को पौधे वितरित कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। भीषण गर्मी को देखते हुए राहगीरों को जल और शरबत पिलाया गया। जैसलमेर में अभियान के तहत भू जल संरक्षण विभाग की ओर से जल संरक्षण शपथ, पौधारोपण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुए। सवाई माधोपुर में आज वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत जिला कलेक्ट्रेट में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में जल संरक्षण कार्यों में उद्योग जगत, स्वयंसेवी संस्थाओं और सामाजिक संगठनों की सक्रिय सहभागिता पर जोर दिया गया। राजसमंद में उप मुख्यमंत्री और प्रभारी मंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने जिला स्तरीय समीक्षा बैठक लेकर पानी बिजली की आपूर्ति, स्वास्थ्य सुविधाएं और वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने इस अभियान को जन आंदोलन बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। भरतपुर जिले में भी वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान

0: ने विद्यार्थियों को आश्वस्त किया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की ओर से शुरू की गई नई ऑन स्क्रीन मार्किंग ओएसएम प्रणाली अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक प्रगतिशील साधन है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में सीबीएसई अधिकारियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये बात कही। सीबीएसई कक्षा 12वीं की परीक्षा के पुनर्मूल्यांकन पोर्टल में ओएसएम प्रणाली में विसंगतियों और तकनीकी खराबी को लेकर श्री प्रधान ने ये स्वीकार किया कि कुछ मुद्दे सामने आए हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को आश्वासन दिया कि चल रही पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान सभी शिकायतों का समाधान किया जाएगा।
1: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनके आंसर शीट उनके हाथ में आए, ये ओएसएम की व्यवस्था है। पहली बार देश में सीबीएसई ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही, उसको मैं दायित्व लेता हूँ, उसको इसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर्ड क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 परीक्षा की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। एनटीए के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई 6 और 7 जून को आयोजित की जाएंगी। आज होने वाली परीक्षा ईद उल अजहा के कारण पुनर्निर्धारित की गई थी। एनटीए ने बताया कि रविवार को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं और इन्हें एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। 6 और 7 जून को परीक्षा देने वाले शेष उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र भी जल्द ही जारी किए जाएंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय राष्ट्रीय खेल डिजिटल इकोसिस्टम के तहत राष्ट्रीय खेल संघों में सूचना प्रौद्योगिकी सलाहकारों की नियुक्ति करेगा। इस पहल के माध्यम से राष्ट्रमंडल खेल 2030 की तैयारियों को बेहतर बनाया जा सकेगा। खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य विशिष्ट डिजिटल प्रणालियों को सुव्यवस्थित करना और प्रतियोगिताओं, राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविरों, खिलाड़ियों की भागीदारी और वास्तविक समय समन्वय के लिए अधिक प्रभावी योजना बनाने में सक्षम बनाना है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। टीबी मुक्त भारत 100 दिवसीय विशेष अभियान में प्रदेश ने विशेष उपलब्धियां हासिल की हैं। 24 मार्च से शुरू हुए इस अभियान में 2 महीनों में राज्य में करीब 19 लाख लोगों की स्क्रीनिंग की गई है और 35,000 से अधिक नए रोगियों की पहचान की गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि निरामया राजस्थान के विजन के तहत टीबी जैसी गंभीर बीमारी के उन्मूलन के लिए बड़े स्तर पर स्क्रीनिंग, त्वरित जांच, जन जागरूकता और सामुदायिक सहभागिता को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने कहा, जन भागीदारी, तकनीक और संवेदनशीलता के साथ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाकर हम टीबी मुक्त राजस्थान की दिशा में काम कर रहे हैं। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा देशभर में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। प्रदेश में राजधानी जयपुर सहित विभिन्न शहर और कस्बों में सुबह ईदगाह और मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की गई। बाद में लोगों ने एक दूसरे के गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। सूफी संत ख्वाजा की नगरी अजमेर में भी ईद उल अजहा के मौके पर नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: आज मुस्लिम समाज द्वारा ईद उल अजहा का पर्व पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर साल में मात्र 4 बार खुलने वाला जन्नती दरवाजा आज एक दिन के लिए खोला गया, जिसके चलते जन्नती दरवाजा खुलते ही भारी संख्या में अकीदतमंदों की भीड़ दरवाजे के नीचे से गुजरने के लिए उमड़ पड़ी। सुबह से ही ख्वाजा साहब की दरगाह सहित जिले भर की मस्जिदों में अकीदतमंदों द्वारा नमाज अदा कर देश समाज में अमन, चैन और खुशहाली की दुआ मांगी जा रही है। इस दौरान जिला प्रशासन द्वारा भी शांति और कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए सभी पुख्ता इंतजाम किए गए। आकाशवाणी समाचार अजमेर।
0: जोधपुर, सवाई माधोपुर और सिरोही में भी ईद उल अजहा का पर्व अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर बाजारों में त्योहारी खरीदारी और

0: चहल पहल नजर आ रही है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कुलपति पद पर रहते हुए अनियमितताएं करने के आरोप में बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर देव स्वरूप को पद से तत्काल हटाने के आदेश जारी किए हैं। राजभवन से जारी विज्ञप्ति के अनुसार ये आदेश राज्य सरकार के परामर्श के बाद जारी किए गए हैं। वहीं एक अन्य आदेश में राज्यपाल ने राजुवास जोबनेर के कुलगुरु प्रोफेसर त्रिभुवन शर्मा को अपने कार्य के साथ साथ बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय के कुलगुरु का अतिरिक्त कार्यभार संभालने के आदेश दिए हैं। वहीं हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर एन के पांडे को विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। प्रदेश के ज्यादातर स्थानों पर नौतपा के दौरान तेज गर्मी का असर बना हुआ है। सभी शहरों में बढ़ते तापमान और लू के असर से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। दिन के समय सड़कों पर अघोषित कर्फ्यू जैसे हालात बने हुए हैं। पिछले 24 घंटों में राज्य में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस श्रीगंगानगर में रिकॉर्ड हुआ। वहीं राज्य के 25 से अधिक जिलों में पिछले 24 घंटों के दौरान दिन का पारा 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज हुआ। श्रीगंगानगर और भरतपुर में आज दोपहर बाद हल्की बारिश होने से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक डॉ. राधेश्याम शर्मा ने बताया कि प्रदेश के पश्चिमी भागों में अगले एक दो दिन हीटवेव और उष्ण रात्रि का दौर जारी रहने का पूर्वानुमान है।
1: हीटवेव का ये दौर अभी भी अगले 24 से 48 घंटों तक जारी रहने की संभावना है। हालांकि अगले 24 घंटों में एक नया पश्चिम विक्षोभ राज्य के कुछ भागों में सक्रिय होगा। इसके असर से 27-28 मई से ही राज्य के उत्तरी और पूर्वी भागों में मेघ गर्जन तेज हवाओं के साथ में हल्की बारिश की संभावना है। 29 से 31 मई के दौरान इस सिस्टम का प्रभाव और बढ़ेगा। इस दौरान राज्य के कई भागों में तेज मेघ गर्जन तेज अंधड़ तेज हवाओं के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। आंधी बारिश के असर से तापमान में अगले 2-3 दिनों में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने और हीटवेव से राहत मिलने की प्रबल संभावना है।
0: मानसून के आने से पहले कोटा जिले में वन विभाग ने बड़े स्तर पर पौधा रोपण की तैयारी शुरू कर दी है। जिले के मंडारा रेंज में इस बार पारंपरिक तरीके के साथ साथ आधुनिक तकनीक का प्रयोग कर हरियाली बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्रों में हरियाली को बढ़ाने के लिए 5 लाख सीड बॉल तैयार की जा रही है। इन तैयार बीज की गेंदों को ड्रोन और श्रमिकों के माध्यम से जिले के वन क्षेत्रों में फैलाया जाएगा। इन सीड बॉल्स में अर्जुन रौंज खैर और कुमठा जैसी स्थानीय प्रजातियों के पौधों के बीज शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि मिट्टी गोबर और राख के मिश्रण से तैयार ये बॉल्स बीजों को धूप कीड़ों और पक्षियों से सुरक्षित रखती हैं। बंजर और दुर्गम इलाकों के लिए ये तकनीक बेहद सस्ती और प्रभावी साबित हो रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत विभिन्न गतिविधियां जारी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने CBSE कक्षा 12 की परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया में विसंगतियों से संबंधित छात्रों की सभी शिकायतों के समाधान का दिया आश्वासन। ईद उल अजहा का पर्व प्रदेश भर में अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। और राज्य के ज्यादातर स्थानों पर तेज गर्मी का असर जारी। पश्चिमी भागों में अगले एक दो दिन हीटवेव का दौर जारी रहने का पूर्वानुमान। इसके साथ ही प्रादेशिक

ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप जितेंद्र सिंह पूनिया से जयपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख क्षेत्रीय समाचार एकांश जयपुर की ओर से तैयार किया गया है। कुर्बानी का प्रमुख इस्लामिक पर्व ईद उल अजहा आज जिले भर में अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। सुबह फर्ज की नमाज के बाद से ही विभिन्न मस्जिदों में ईद की विशेष नमाज अदा करने का सिलसिला शुरू हुआ, जो रात तक जारी रहा। दिल्ली रोड स्थित ईदगाह में शहर की मुख्य नमाज अदा की गई, जिसमें बड़ी संख्या में नमाजी शामिल हुए। वहीं एमआई रोड और

बाबरी बाजार सहित सभी ईदगाहों में अकीदतमंदों ने नमाज अदा कर एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी और देश में अमन, खुशहाली और तरक्की की दुआएं मांगी। घर घर में कुर्बानी की रस्म अदा की गई। शहर की बकरा मंडियों में भी जबरदस्त उत्साह दिखाई दिया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गंगा दशमी के अवसर पर बीसलपुर बांध से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 का शुभारंभ किया। 25 मई से शुरू हुआ यह अभियान 5 जून तक चलेगा। इस अभियान को जन आंदोलन का रूप देने के लिए जल संरक्षण और स्वच्छता से संबंधित कई गतिविधियां आयोजित कर ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस अभियान से जोड़ा जा रहा है। इसके लिए प्रदेश भर में ग्राम स्तर तक नुक्कड़ नाटकों, पोस्टर, चित्रकला प्रतियोगिता, संगोष्ठी और कार्यशाला जैसे कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास की अध्यक्षता में शासन सचिवालय में कल मिशन हरियालू राजस्थान की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में आगामी मानसून के दौरान प्रदेश भर में किए जाने वाले वृक्षारोपण अभियान की तैयारियों और पिछले सालों में लगाए गए पौधों के सत्यापन कार्यों की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने हरियालो ऐप के माध्यम से पौधों की जियो टैगिंग एवं लाइव फोटो अनिवार्य रूप से अपलोड करवाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को लगाए गए पौधों की जीवितता को सुनिश्चित करने तथा औद्योगिक क्षेत्रों में भी पौधरोपण को प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए। इस मानसून में 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश भर में जून माह एंटी मलेरिया माह के रूप में मनाया जाएगा। इसका उद्देश्य मलेरिया उन्मूलन की दिशा में जन जागरूकता, सामुदायिक सहभागिता, मजबूत सर्विलांस और समय पर जांच तथा उपचार सुनिश्चित करना है। इसके लिए सभी मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आगामी जून माह में प्रदेश में व्यापक स्तर पर रोकथाम एवं जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि ग्राम स्तर पर जन जागरूकता गतिविधियां, रैली, विद्यालयों में कार्यक्रम, प्रचार कार्यों के द्वारा मलेरिया के कारण और बचाव के उपायों की जनता को जानकारी दी जाएगी। जयपुर में डॉ भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कानून की शिक्षा सीधे तौर पर समाज से जुड़ी शिक्षा है। इसका उपयोग विद्यार्थी जरूरतमंद, पीड़ित और वंचित वर्ग के कल्याण के लिए करें। उन्होंने विधि शिक्षा में राष्ट्र और समाज हितों को प्राथमिकता देने और इस दिशा में उच्च संवैधानिक मूल्यों के साथ प्रदेश को अग्रणी बनाने का आह्वान किया। दीक्षांत समारोह में राज्यपाल ने दीक्षा प्राप्त कर 25,000 से अधिक विद्यार्थियों की डिग्रियां डिजी लॉकर में कंप्यूटर का बटन दबाकर लाइव की। महिला और बाल विकास राज्य मंत्री डॉ मंजू बाघमार को ब्रिटेन की संसद के पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर में आयोजित होने वाले 10वें अवार्ड समिट के लिए विशेष आमंत्रण प्रदान किया गया है। ये आमंत्रण उन्हें वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की ओर से दिया गया है। सवाई मानसिंह स्टेडियम में बीते दिनों फिट इंडिया साइकिल संडे कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस वर्ष आयोजन की थीम कॉमनवेल्थ डे 2030 रखी गई, जिसमें खिलाड़ियों, अधिकारियों, युवाओं और फिटनेस प्रेमियों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण स्टेडियम परिसर के चारों ओर आयोजित साइकिल रैली रही। इस रैली का उद्देश्य नागरिकों में शारीरिक स्वास्थ्य, स्वस्थ जीवन शैली और कॉमनवेल्थ खेल 2030 के प्रति जागरूकता फैलाना था। इसके साथ ही जयपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

पहले आज री खास खबर प्रदेश माए वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान रे तहत न्यारी न्यारी गतिविधियां जारी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सीबीएसई कक्षा 12 री परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया माए विसंगतियां सु संबंधित पड़ेसरियां री सगली शिकायतां रे समाधान रो दियो आश्वासन। ईद उल अजहा रो पर्व प्रदेश भर माए अकीदत और एहतराम रे साथ मनायो जा रियो है और राज्य री घनकर ठोड़ा माथे तेज गर्मी रो असर जारी। पश्चिमी

समाचार साथ है मैं संगीता शर्मा और अब है समाचार विगतवार। प्रदेश में चल रिया वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत न्यारी न्यारी गतिविधियां राखी जा रही है। आ गतिविधियां रो लखस इन अभियान सू 32 लोगों ने जोड़नो

0: द्वार प्रदेश में चल रहा वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत न्यारी न्यारी गतिविधियां राखी जारी है। आ गतिविधियां रो लखस इन अभियान सु 32 लोगों ने जोड़नो और जल संरक्षण रे प्रति जागरूकता बढ़ानो है। इन्हीं कड़ी माए झुंझुनू जिले रा नवलगढ़ माए जन जागरूकता कार्यक्रम राख्या गया। कार्यक्रम माए आया लोगों ने पौधा बांट पर्यावरण संरक्षण रो संदेश दियो गयो। भीषण गर्मी ने देखता थका राहगीरां ने पानी और शरबत पिलायो गयो। जैसलमेर माए अभियान रे तहत भू जल संरक्षण महकमारी कानीसू जल संरक्षण शपथ पौधारोपण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। सवाई माधोपुर माए आज वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान रे तहत जिला कलेक्ट्रेट माए कार्यशाला राखी जी। इन कार्यशाला माए जल संरक्षण कामा माए उद्योग जगत स्वयंसेवी संस्थावां और सामाजिक संगठनारी सक्रिय सहभागिता माथे जोर दियो गयो। राजसमंद माए उप मुख्यमंत्री और प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जिला स्तरीय समीक्षा बैठक ने लेर पानी बिजली री आपूर्ति स्वास्थ्य सुविधावां और वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान री प्रगति री समीक्षा करी। वणा इन अभियान ने जन आंदोलन बनावण री जरूरत माथे जोर दियो। भरतपुर माए भी वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान रे तहत न्यारी न्यारी गतिविधियां राखी जारी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पडेसरिया ने आश्वस्त करयो कि सीबीएसई री कानीसू शुरू करी जी ऑन स्क्रीन मार्किंग ओएसएम 32 पारदर्शिता पक्की करने रे लखसू शुरू करी जी है। एक चौखी पहल है। श्री प्रधान नवी दिल्ली माए सीबीएसई रा अहलकारा रे साथे बैठक रे पाछे खबर नवीसासू बंतल माए आ बात कही। सीबीएसई कक्षा 12वीं री परीक्षा रे पुनर्मूल्यांकन पोर्टल माए ओएसएम माए विसंगतियां और तकनीकी खराबी ने लेर वणा पडेसरिया ने आश्वस्त करयो कि पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया रे चालता सगली शिकायतां रो समाधान करयो जावेला।
1: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए, ये ओएसएम की व्यवस्था है। पहली बार देश में सीबीएसई ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही है, इसको मैं दायित्व लेता हूँ, उसको इसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर्ड क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 परीक्षा री संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। एनटीए रे मुजब परीक्षावां अब 31 मई 6 और 7 जून ने राखी जावेली। आज होवन वाली परीक्षा ईद उल अजहा रे कारण पुनर्निर्धारित करी जी है। एनटीए बतायो कि दीतवार ने परीक्षा देवन वाला उम्मीदवारों रा प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है और अने एनटीए री आधिकारिक वेबसाइट सु डाउनलोड करया जा सके है। 6 और 7 जून ने परीक्षा देवन वाला बाकी उम्मीदवारों रा प्रवेश पाना भी बेगाई जारी करया जावेला। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय राष्ट्रीय खेल डिजिटल इकोसिस्टम रे तहत राष्ट्रीय खेल संघा माए सूचना प्रौद्योगिकी सलाहकारारी नियुक्ति करेला। इन पहल रे माध्यम सु राष्ट्रमंडल खेल 2030 री तैयारियां ने चोखो बनायो जा सकेला। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया कहो कि इन पहल रो लखस विशिष्ट डिजिटल प्रणालियां ने सुव्यवस्थित करनो और होड़ा राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविरा और खिलाड़ियां री भागीदारी और साचे वक्त रे समन्वय खातिर 32 प्रभावी योजना बनावण माए सक्षम करनो है। ऐ समाचार आप आकाशवाणी रा जयपुर अजमेर केंद्र सु सुन रिया हो। टीबी मुक्त भारत 100 दिवसीय विशेष अभियान माए खास उपलब्धियां हासिल करी है। 24 मार्च से शुरू हुआ इन अभियान माए 2 महीना माए राज्य माए करीब 19 लाख लोगों की स्क्रीनिंग करी जी और 35,000 से 32 रोगियों की पहचान करी जी है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहो कि निरामया राजस्थान रे विजन रे तहत टीबी जड़ी गंभीर बीमारी रे उन्मूलन खातिर स्क्रीनिंग तुरंत जांच जन जागरूकता और सामुदायिक सहभागिता रे प्राथमिकता दी जा रही है। वणा कहो कि जन भागीदारी तकनीक और संवेदनशीलता रे साथ है स्वास्थ्य सेवावां मुहैया करार आपा टीबी मुक्त राजस्थान री दिशा माए काम कर रिया हां। कुर्बानी रो तिवार ईद उल अजहा देश भर माए धार्मिक उचास रे साथ मनायो जा रियो है। प्रदेश माए जयपुर समेत प्रदेश रा न्यारा न्यारा शहर कस्बा माए सुवारे ईदगाह और मस्जिदा माए ईद री नमाज अदा करी जी। बाद में लोगा एक दूजे सु गले मिलर ईद री मुबारकबाद दी। सूफी संत ख्वाजारी नगरी अजमेर माए भी ईद उल अजहा रे मौके माथे नमाज रे पाछे लोगा एक दूजे ने मुबारकबाद दी। और ब्यूरो माणा खबर नवी सु
2: आज मुस्लिम समाज द्वारा ईद उल अजहा का पर्व पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर साल में मात्र

0: बार बार खुलने वाला जन्नती दरवाजा आज एक दिन के लिए खोला गया, जिसके चलते जन्नती दरवाजा खुलते ही भारी संख्या में अकीदतमंदों की भीड़ दरवाजे के नीचे से गुजरने के लिए उमड़ पड़ी। सुबह से ही ख्वाजा साहब की दरगाह सहित जिले भर की मस्जिदों में अकीदतमंदों द्वारा नमाज अदा कर देश समाज में अमन चैन और खुशहाली की दुआ मांगी जा रही है। इस दौरान जिला प्रशासन द्वारा भी शांति और कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए सभी पुख्ता इंतजाम किए गए। आकाशवाणी समाचार अजमेर।
1: जोधपुर, सवाई माधोपुर और सिरोही माए भी ईद उल अजहा रो पर्व अकीकत रे साथ मनायो जा रही है। इन मौके माथे बाजारा माए त्योहारारी खरीदारी और चहल पहल नजर आ रही है। राज्यपाल हरिबाऊ बागड़े कुलपति पद पर रहता थका अनियमितता रे कारण आरोप माए बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय रा कुलगुरु प्रोफेसर देव स्वरूप ने पद सू तुरंत हटाने रा हुक्म जारी करया। राजभवन सू जारी विज्ञप्ति रे मुजब ए आदेश राज्य सरकार रे परामर्श रे पाछे जारी करया गया है। वठीने एक दूजे आदेश माए राज्यपाल राजूवास जोबनेर रा कुलगुरु प्रोफेसर त्रिभुवन शर्मा ने काम रे साथे साथे बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय रा कुलगुरु ने अतिरिक्त कार्यभार संभालने रा हुक्म दिया है। वठीने हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय रा कुलगुरु प्रोफेसर एन के पांडे ने विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय रो अतिरिक्त कार्यभार दियो गयो है। और अबे मौसम, प्रदेश रे घनकर ठोड़ा माथे नो तपारे चालता तेज गर्मी रो असर बनियोड़ो है। सगड़ा शहरा माए बदता तापमान और लू रे असर सू जनजीवन प्रभावित हुए रियो है। दिन रे बखत सड़का माथे अघोषित कर्फ्यू जड़ा हालात बनियोड़ा है। लाड़ला 24 घंटा माए प्रदेश माए सबसे बत्ती तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस श्रीगंगानगर माए दर्ज करी जो। वठीने राज्य रा 25 सू 32 जिला माए लाड़ला 24 घंटा रे चालता दिन रो पारो 42 डिग्री सेल्सियस सू ऊपर दर्ज हुयो। श्रीगंगानगर और भरतपुर माए आज दोपहरा पाछे हल्की बिरखा होने सू लोगा ने गर्मी सू थोड़ी घनी राहत मिली है। मौसम केंद्र जयपुर रा निदेशक डॉक्टर राधेश्याम शर्मा बतायो के प्रदेश रा पश्चिमी हल्का माए आवता एक दो दिन हीट वेव दौर जारी रहने की आस है।
2: इवनिंग का ये दौर अभी भी अगले 24 से 48 घंटों तक जारी रहने की संभावना है। हालांकि अगले 24 घंटों में एक नया पश्चिम विक्षोभ राज्य के कुछ भागों में सक्रिय होगा। इसके असर से 27-28 मई से ही राज्य के उत्तरी और पूर्वी भागों में मेघगर्जन तेज हवाओं के साथ में कहीं हल्की बारिश की संभावना है। 29 से 31 मई के दौरान इस सिस्टम का प्रभाव और बढ़ेगा। इस दौरान राज्य के कई भागों में तेज मेघगर्जन तेज अंधड़ तेज हवाओं के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। आंधी बारिश के असर से तापमान में अगले 2-3 दिनों में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने और ऋतु से राहत मिलने की प्रबल संभावना है।
1: मानसून रे आवन सू पहलिया कोटा जिला माए वन महकमो मोटे स्तर माथे पौधा रोपण री तैयारी शुरू कर दी है। जिले रा मंडाणा रेंज माए इन बार पारंपरिक तरीका रे साथे साथे आधुनिक तकनीक रो प्रयोग करर हरियाली बधाने रो लक्ष्य राख्यो गयो है। इन रे तहत दुर्गम और पहाड़ी खेतरा माए हरियाली ने बधाने खातिर 5 लाख सीड बॉल तैयार करी जा रही है। आ तैयार बीज री गेंदा ने ड्रोन और मजूरा रे मार्फत सू जिला रे वन खेतरा माए फैलायो जावेला। आ सीड बॉल्स माए अर्जुन रोंज खैर कमुठा जड़ी स्थानीय प्रजातियां रा पौधा रा बीज भेड़ा है। ध्यान जोग है कि मिट्टी गोबर और राख रे मिश्रण सू तैयार आ बॉल्स बीजा ने धूप कीड़ा और पंछियां सू सुरक्षित रखे है। बंजर और दुर्गम इलाका खातर आ तकनीक बेहद सस्ती और प्रभावी साबित वेरी है। प्रदेश माए 1 से 30 जून ताई बाल श्रम बाल बंधुआ मजदूरी और बाल तस्करी रे खिलाफ विशेष अभियान उमंग 7 चलायो जावेला। इन अभियान रो लक्ष बाल श्रम और बाल तस्करी जड़ी गंभीर सामाजिक बुराइयां माते प्रभावी नियंत्रण स्थापित करनो और पीड़ित टाबरा रो पुनर्वास पक्को करनो है। अभियान रे प्रभावी संचालन रे खातिर सगला जिला रा पुलिस अधीक्षका ने हुक्म दिया गया है। अभियान रे तहत होटल ढाबा ईंट भट्टा फैक्ट्रियां रेलवे प्लेटफॉर्म बस स्टैंड धार्मिक स्थल अस्थाई बस्तियां माए रह रिया टावरारी स्क्रीनिंग करी जावेली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई ने आकाशवाणी सू मन की बात कार्यक्रम माए आपरा विचार साझा करेला। आ इन मासिक रेडियो कार्यक्रम री 134वीं कड़ी वेला। इन रे खातिर श्रोता आपरा टोल फ्री नंबर 1800117800 माथे भेज सके है। नरेंद्र मोदी ऐप और माय जीओवी ओपन फोरम रे माध्यम सु भी विचार भेजा जा सके है। ए सुझाव कल ताई स्वीकार करया जावेला। अजमेर रा किशनगढ़ एयरपोर्ट सू हवाई यात्रियां रे खातिर इंडिगो जुलाई माह सू 2 नवी उड़ान सेवावां शुरू करन जा रियो है। किशनगढ़ ने दिल्ली और नोएडा सू जोड़न वाली आ नवी फ्लाइट्स रे शुरू होने सू अजमेर किशनगढ़ ब्यावर और आसे पासे री बड़ी आबादी ने बेहतर और तेज हवाई कनेक्टिविटी मिल सकेली।

एयरपोर्ट डायरेक्टर बीएस मीणा बतायो कि 1 जुलाई सु दिल्ली किशनगढ़ दिल्ली फ्लाइट सेवा शुरू वेली आ उड़ान सप्ताह माए 4 दिन सोमवार बुधवार शुक्रवार और रविवार ने संचालित करी जावेली। इनरे अलावा 2 जुलाई सु नोएडा किशनगढ़ नोएडा फ्लाइट सेवा भी शुरू करी जावेली। आ सेवा सप्ताह माए 3 दिन मंगलवार गुरुवार और शनिवार ने संचालित वेली। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय रे माए भारत केंद्र कानीसू सवाई माधोपुर माए वीर सावरकर जयंती मनाई जी। छात्रपति शिवाजी युवा मंडल री कानीसू राखी जो जयंती जलसे माए सावरकर रे राष्ट्र निर्माण माए योगदान ने याद करता हुआ संगोष्ठी और चित्रकला होड समेत न्यारी न्यारी गतिविधियां राखी जी। होड माए विजेतावा ने स्मृति चिन्ह देर सम्मानित करो गयो। जैसलमेर माए भी सावरकर जयंती माथे न्यारी न्यारी होड़ा और संगोष्ठी राखी जी। इन मौके माथे घनी तादाद माए मौजूद युवावा ने पर्यावरण संरक्षण शपथ भी दिलाई जी। और खास खास खबर आखिर में एक कर फेरू सुनो। प्रदेश माए वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान रे तहत न्यारी न्यारी गतिविधियां जारी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सीबीएसई कक्षा 12 री परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया माए विसंगतियां सु संबंधित प्रदेशरिया री सगली शिकायतां रे समाधान रो दियो आश्वासन। ईद उल अजहा रो पर्व प्रदेश भर माए अकीदत और एहतराम रे साथे मनायो जा रियो है। अर राज्य री घनकर ठोड़ा माते तेज गर्मी रो असर जारी। पश्चिमी हल्का माए आवता 1-2 दिन हीट वेव रो दौर जारी रहन रो पूर्वानुमान। साथे ही प्रादेशिक समाचार आरो ओ बुलेटिन अठे ही पूरो हो। मानो आगलो समाचार बुलेटिन काले सुमारे 9 बजे हिंदी माए प्रसारित करियो जावेला। नमस्कार।

मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 7 बज चुके हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण श्रोताओं के लिए कार्यक्रम ग्रामीण जगत।

0: और ग्रामीण जगत कार्यक्रम रे उडीक में बैठा सगला किसान भाई बहना ने आपरे भाई तोड़ा राम आर
1: संदीप परिखरा घना घना राम राम
0: राम राम।
1: तो भाई देखो चौपाल में बहुत दिन बाद आप सुन लो हो रहे, सब खैरियत है, कुशल मंगल है?
0: बिल्कुल, देखो चौपाल में आन सारू देखो दाऊड़ जी को लाए तपड़ी है नी, बिन चक्कर में घर से निकलने को नहीं भाई।
1: हाँ।
0: और अब यहाँ सोचांग भी देखो हताई बिना तो पार पड़े को नहीं,
1: पड़े को
0: नहीं पड़े क्या करें।
1: हाँ तो देखो थोड़ा भाई बिल्कुल सच्ची बात मन रही बात जी है नहीं।
0: हाँ।
1: बात है कह दी भी हताई बिना तो देखो पार पड़े, आप देखो घर में जी भाई हैं लुगे हैं बन ये दोस्त देवा कमियां हमें भी है
0: बिल्कुल। और देखो फिर चौपाल अपारी जी की चौपाल है, इरी अताई रो तो देखो कहना ही क्या है।
1: बिल्कुल
0: बिल्कुल, सांतरी अताई हो है और सांतरा गीतरला सुनने मिले।
1: बिल्कुल, और काम की बात जी की है नी बे हो है, और बात ऐसी है जी की आपने घर परिवार से जुड़ी रही हुए, खेती बाड़ी से जुड़ रही हुए, आपने जो को पशुधन है दीनों धापो है भी से जुड़ी रही
0: बात। बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो आज की बात करनी है, बाकी है बात बताओ।
0: आज बात तो वही करनी है कि स्वास्थ्य में जुड़ी हुई है।
1: हाँ
0: हा। आ बात है माटी रे स्वास्थ्य में जुड़ी हुई है, अपारे खेती रे खेतरी माटी जी की है, खेत में
1: बात है। हाँ। हाँ। देखो किसान भूई है कि भी आप को जो को डील है नी बिंगो तो हर कोई थोड़ो घणो ध्यान रखे है, पर आज जकी धरती माता है जके सो अपन नाज ल्यावा करे बिंग स्वास्थ्य की चिंता करना बिंग बात करनी अब मोटी बात है
0: भाई। कई बार देखो क्या करे है कि भाई आप घनी दवाइयां लेवानी व्यापार शरीर ने नुकसान करिया करे, आ बात है कि दवाई बीती लेनी जीती आप शरीर ने जरूरत हुए, या फिर देसी दवाइयां भी किया करे बियारो शरीर ने नुकसान आलो कोई उपाय हुए को नहीं।
1: कोई
0: तो ई तरह ही आप जिकी माटी है नी खेतरी इरे वास्ते भी

0: घणी जी पेस्टिसाइड है घना जिका छिड़काव करा आप दवाई और रासायनिक छिड़काव ए जिका छिड़काव है ए आपरी माटी ने खराब करे दूषित करे और मेरे पर होने वाली फसल ने भी खराब करे।
1: अब एक चीज मैं थान कहूं देखो आप चौपाल में बात करा तो ये नहीं किसी फूटी फूटी और चौकी चौकी बात करा भी आप किसान अब आप बाण तो आपान में घाली गई है देखो आपने जगह पूर्वजा मैं बापड़ा कट्ठे आ रासायनिक चीजें मैं आ चक्रम पड़ेगा
0: बिल्कुल
1: पर धीरे धीरे आपन बिन फुर गया फुर गया जब बा बट गफलत आप में होगी कि अनाधुंध जगह है नहीं आप अभी चीज ने उपयोग में ले लग गया।
0: देखो एक फूरन वाली बात कही नहीं जाना मैंने अच्छी तरह समझ में आया कि फूरनो तो पाछो पड़सी
1: आप हाँ फूरनो तो है
0: पड़सी और फूरने की अपारी आदत है मान लो आप संभल सका तो भाई फिर आप पाछा अपारी जी की जड़ा है नी बठी ने फूरनो अपारा ठीक रहसी कि भाई आप जितनी भी कार्बनिक खाद है आप घर में भी तैयार कर सका अपार खेत में तैयार कर सका और बिना लागत में या कम कम लागत में तैयार कर सका तो खेती की लागत भी कम और आपर जी की खेत की माटी है नी आमी बिल्कुल अच्छी और स्वस्थ रहसी।
1: बिल्कुल मिलार बात आए बक्के के रहने की जागो तभी सवेरा तो अब भी वगत है आप थोड़ा सो चेतो कर लिया कि जकी कार्बनिक खाद है बिंगी होड़ को नी और ज्यादा ज्यादा ऐसी कार्बनिक खाद है या जीवाणु खाद है ये आपने काम में लेनी है ताकि आपने खेत की जी माटी है जो स्वास्थ्य है वो और ज्यादा नहीं बिगड़े।
0: बिल्कुल बिल्कुल तो कार्बनिक खाद रो मतलब आ हो गयो कि भाई आपा जी की गोबर की खाद तैयार करा या खेत में जी का अपशिष्ट हुआ है मियासो जी की खाद तैयार करा बिना कार्बनिक खाद ही भूलिया करा।
1: बिल्कुल गोबर की खाद है कंपोस्ट खाद है वर्मी कंपोस्ट है केंचुआरी खाद है हरी खाद है जितनी भी खाद है नी ज्यादा ज्यादा इस्तेमाल जो आपा ने
0: करना चाहिए। अब देखो करण वाली बात है कि भाई लोग
1: मनड़ी बात समझ गयो थोड़ा राम भाई तो देखो हाजिर है आप भी सुना और कार्यक्रम सुने जिकी भी सगली बहना और भाई है सगला सुना मीठो सो चंपा मेथी रो गाड़ो गीतड़
0: सुनाओ सा

0: गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: मतगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत मतगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: मतगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

0: साओ तो हो संदेश और पहली जो को आप गीत सुनो गाइडो हो
1: चंपा मिथी रहे और अब देखो आप रे बात कर रहे हैं नहीं कि भई माटी रोज को स्वास्थ्य है खेतरी माटी रोज को स्वास्थ्य मेरी बात कर रहा अब आप रे खुद रे जीवन वास्ते भी आप बता है कि भई आपने खुद ने स्वस्थ रहना भई क्या करे लू पड़ रही है गर्मी चल रही है बाहर ना निकलो ना तो ये बातें जी की है ये गर्मी ये रेसी देखो सर्दी भी बीनी पड़ सी पर मनुख जी को है बिना आप रख जून सारू काम करना ही पड़ी तो भी काम करन सारू अपने कई कई चीजा रो ध्यान रखनो चाहिए और अपरो शरीर जी को है वो भाग तो दौड़ तो रहे ये सारू भी अपने कई कई काम करना
0: चाहिए बिल्कुल बिल्कुल हाँ नहीं नहीं अब देखो आपने देखा बुजुर्ग है नहीं थोड़ा भाई कहता भी पहला सुख निरोगी का है और इनके पीछे वजह भी आ है कि आपने जीवन में जित

0: भी जिम्मेदारियां है या आपाधापी है, भाग दौड़ है, बस सगला सूबी आप पार पा सका जो डील सावड़ रहा है, है? तो वो शरीर चुको है उसमें पहले आपने स्वस्थ रखना है, आप प्रयास होना चाहिए कि आपनो जीवन चुको है वो कोई भी कष्ट ग्रसित नहीं हुए जड़ तय आपने चाल सके
1: बिल्कुल
0: है? और इन सब मोटी बात है कि पहली बात तो आप जो खान पान है ध्यान दे देखो क्यों है कि जब आप जवान हुआ और जब घर की जिम्मेदारियां हुआ तो भी आपा धापी में खान पान का नहीं आपको ध्यान जावक होनी क्योंकि काम है तो कदी पूरो खायो तो नहीं खायो और कदी मान लो चूक भी गया तो आ गफलत बाजी पहली बात तो नहीं करनी और जो कोई भोजन करा नहीं वो संतुलित होना चाहिए।
1: हाँ देखो कई बातें है इसी पुरानी जी की कहता नहीं बे संदीप भाई बातें है कभी पहली रा लोग क्या करता कि मोटो खाओ और मोटो सोचो
0: और मोटो पैरो
1: मोटो पैरो तो मोटो अनाज खाना मेरा मतलब ही आई है कि आपारो शरीर जो पाचन तंत्र है वो अच्छो बनियोड़ो रहे। फिर आजकल एक अंग्रेजी में थे तो मारूम ज्यादा बनियोड़ा हो अच्छी तरह समझ सो फर्मेंटेड फूड बोलिया करे। हाँ आपने पुराना लोग जी कहानी वे छाछ में बाजरी रो आटो बिको रख देता और दिनों में तैयार करता राबड़ी बिना बोले फर्मेंटेड फूड बिना फर्मेंटेड के देनी जान तो देखो
0: पिस्ता
1: चोखो लागे और आप राबड़ी की दा जानते राबड़ी
0: राबड़ी
1: और राबड़ी री हंसी उड़ावे के भाई के राबड़ी के ब्याह में
0: बरतो चीज और है देखो थोड़ा भाई कि यहाँ कह रहे जे मान लो संजय बनाई जी की रोटी है नी सुबह बाद दही साग खावे नी बिंगी होड़ को नी
1: बिंगी होड़ को नी
0: एक चीज है देखो मैं कई बार मैं सोचूं बैठे बैठे कभी एक लो बैठे हो मानसले बैठे हो आश्रम तो यहाँ सोचूं कि भी देखो आप ऐ जगी बात है आज वैज्ञानिक जगह ये बात न मान रहे आप में पुरुष इन हिसाब कितना बड़ा विद्वान
1: बिल्कुल बहुत हाँ वे अपारा जी का भी काम करियो डानी वे इतनी खोज कर चुके हा कि भाई अपार आउनाली पीढ़ी है नी बहुत रिसर्च कर रही है।
0: हाँ दोबारा भी पर
1: भी पर काम
0: कर रही है। हाँ क्यों है कि
1: है के बाकी हाँ। अपारा बडेरा तो वे सब काम कर छोड़ गया
0: छोड़ अब देखो ये भाई अमेरिका रा नासा रा कहे कि अठो सूरज की दूरी इतनी है अरे आपने तो विद्वान लोग पहले बता गया
1: बिल्कुल
0: है कितना योजन दूर है आपने तो हनुमान चालीसा में लिखियोड़ो है
1: आप पर जी को कम पढ़ियोड़ो लिखियोड़ो आदमी है नी वो ही बता देख सूर्य ग्रहण कद है
0: कद है
1: तो आप पर पुरानी जी की चीज है नी देखो संदीप भाई बिल्कुल बहुत अच्छी है और क्या करे है कि भाई आप पर जी को योग है घूमने फिरने रो काम है ए आप पर बडेरा अपन बता गेवड़ा है आर मोटे खाने की बात कर ली तो ताजी सब्जियां खाने की भी बात है हरी पत्तेदार सब्जियां खाने की बात है
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: और फली वाली जी की सब्जियां हुए ना
0: हाँ।
1: खाने की बात है तो ये सब चीजें ऐसी है जी की आप स्वास्थ्य ने अच्छो रखना
0: अब दो तीन बात और ध्यान रखा कि एक तो है कि नींद पूरी लेवा नींद लेवांगा तो भूख भी अच्छी लगेगी भूख अच्छी लगेगी तो आपनो स्वास्थ्य जी को वो सही रहेगा और मानसिक रूप से भी आप स्वस्थ रहवांगा क्योंकि आज के जमाने में क्या है थोड़ा राम भाई कि शरीर तो कई देखा स्वस्थ है और मानसिक रूप से क्या है कि स्वस्थ को
1: भाई मानसिक रूप स्वस्थ रहना है नी तो एक उपाय तो वो है कहते ओ जी को हाथ में पकड़ी उड़ो है नी
0: हाँ हाँ
1: जितना दूर रसो नी वो भाई रसो
0: अरे मैं तो मगो थे मेरे गेडियो को
1: तो गेडियो तो देखो डांगर गेरे ने काम आते हैं खुदरे बात से
0: काम आते हैं
1: पर ओ जी को मोबाइल है नी वो अपने मानसिक रूप से देखो घणो परेशान करे
0: बिल्कुल लेकिन एक चीज मैं बताऊं
1: हाँ
0: सब मोटी बात है मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए कि कोई हर्जस चुके नहीं वो सुन
1: लिया बिल्कुल
0: सुनो साहब हर्जस
1: सुनाओ देखो

यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है। जलवायु और स्वास्थ्य, यह एक संदेश है यूनेस्को की तरफ से। जलवायु परिवर्तन इंसानी स्वास्थ्य के लिए खतरा है। यह साफ हवा, सुरक्षित पानी, स्वस्थ भोजन और सुरक्षित घर पाना मुश्किल बना देता है। ज्यादा तापमान की वजह से हीट स्ट्रोक, हवा में प्रदूषण और मलेरिया डेंगू जैसे रोग बढ़ते हैं, क्योंकि मच्छर नए इलाकों में फैल जाते हैं। जैव विविधता का नुकसान और प्राकृतिक आवास का विनाश नई महामारियों को जन्म दे सकता है। इसका सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है गरीब लोगों और बच्चों पर, क्योंकि उनके पास इलाज की सुविधा कम होती है। क्या आप जानते हैं, 2019 में मलेरिया ने दुनिया भर में 22.9 करोड़ लोगों को प्रभावित किया और लगभग 4,09,000 मौत हुई।

0: Kahani hai suna rahi Akashvani. फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन. कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल. जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल.
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ.

90 साल और एक फानी सफर आकाशवाणी जिसने संगीत नाटक कविता और अपनी बातों के माध्यम से पूरे भारत को

बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक, युवाओं से लेकर किसानों तक और किसानों से लेकर जवानों तक, हर दिल की आवाज बना आकाशवाणी का जादुई माइक।

और अब तो रेडियो से आगे बढ़कर पॉडकास्ट और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आपके सुनहरे कल की कहानियां दोबारा सुनाने को है

तो हमेशा सुनिए रेडियो रेडियो रेडियो, महसूस कीजिए रेडियो रेडियो रेडियो रेडियो, क्योंकि आप सवार हैं आकाशवाणी।

आकाशवाणी का 90वें साल में प्रवेश। कोशिश रहेगी अब से प्रसारण का हर लम्हा होगा आपके लिए अति विशेष।

0: तो भाई देखो, संदेशों पहली आप सुन रिया हा, कालूराम प्रजापति रे गयड़ो काया ने सिंगार कोयलिया अर्जस। और देखो काया ने सिंगार नी आप बाई बात कर रिया कि खान पान आप अच्छो है तो काया सिंगारियोड़ी रे जावे, पर जिको अबारा जिको भगत चालियो नी जिको नो तपाड़ो ई भगत में देखो काया रो ध्यान जिको है वो सगीड़ो राखने की जरूरत है।
1: देखो बात तो आपकी सही है, लेकिन एक चीज है देखो, वो जो भगत है नो तपो है नी, वो एक धरती में सिंगार को एक कार्यक्रम है, कह रहे भी जितो तपे को नी वितो आगे बरसे
0: को
1: तो तपो भी घणो जरूरी है। और कह के देखो जीवन में सुख जो है नी वो तप करें पछे मिले नी, वो वास्तव में सुख है। तो वो जो को नोत पाए जी आपने कह रहे कि जेठ महीने में सूर्य जो को है नी वो रोहिणी नक्षत्र में जाया पछे इन बाज का नौ दिन है, अब आज जगह नौ दिन चाल
0: लाग रही
1: है। हाँ तो वो जो है वो नौ तप है। और वो देखो जून की 2 तारीख तक हो रहा है, तो वो जो

0: इन वक्त जो सूरज की किरणा जी है सीधी पृथ्वी पर पड़े जो जो कह रहे हैं भी गर्मी जी है तापमान है वो बढ़ जावे और एक तरह से इन कह रहे हैं जो मानसून को गर्भकाल है
1: गर्भकाल है। और आज की थे बात कही नहीं कि जितो ज्यादा तपे बितो ज्यादा बरसे तो लोग अब भी कह कर रहे कि नौ तपे में खाली तपनी चाहिए बरसनो
0: नहीं छाट नहीं पड़नी चाहिए।
1: हाँ
0: बात तो सही है। अब देखो आपने जगह बुजुर्ग कह गया है नहीं तुलाराम भाई वे बात आज भी सच्ची है। अब आजकल का जगह वैज्ञानिक है वे आपका उपकरण लगा के जकी बात के बा अलग बात है पर ज्यादातर आपने गांव में तो देखो ये है कि जका भी पुराना रीति रिवाज है जका भी टोटका करके माने है नहीं हिसाब हूँ आज ये बात सही हुआ है।
1: सही हुआ बिल्कुल भी है टोटका नाम दे दिया पर बे टोटका इतना कारगर
0: है
1: वैज्ञानिक पद्धति में जुड़े जुड़ा टोटका होता और देखो इतना कारगर है बिल्कुल। और अब कारगर वाली बात करो नी जन देखो एक अर्जस है वो सुना दियो थे
0: मैं देखो तो रामदेव जी सुना दे
1: बिल्कुल सुनो सा।

0: देखो थारी पसंद पर राम दे जीरो और मीठो सो हरजस तो मैं सुनवा दियो।
1: बिल्कुल। और अब जी की बात है नी बा आ है कि भाई देखो अपा एक चर्चा करन लाग रिया कि भाई खेती बाड़ी है नी बीर मायने आपा परंपरागत जी की खेती लेवा मेरे साथे साथे जे बागवानी वाली फसलां भी लेनी शुरू कर दा। कई भाइयों ने मान लो खेती में बेर री खेती कर सके, कई सांगरी जिकी है खेजड़ी लगा बी तरह री खेती भी कर सके, तो ई तरह रो विचार भी अपारे खेती बाड़ी करने वाला लोगों ने सोचनो चाहिए।
0: देखो बात तो बिल्कुल सच्ची है और इनके पीछे वजह आ है, कई बार सोचा भी बागवानी करनी खेजड़ी। अब खेजड़ी में सुने इसी सी किस्म आईडी है जेकी में पानी की, तो देखो खेजड़ी भी दरकार को नहीं है, लेकिन उत्पादन जो को है नी तुलाराम भाई उत्पादन बहुत अच्छा मिल रहा है। और दूसरी बात आ है कि इन प्रकारों कोई कार्यक्रम आपा अपने खेत में करना चाहवा तो सरकार का नियो अनुदान के रूप में आर्थिक मदद जकी है बाबी मिला करे और प्रति पौधा भी बहुत सस्ता मिल जाए
1: करे। और देखो बस जानकारी लेने की जरूरत है और कार्यक्रम ने आगे बढ़ाने की भी आपने जरूरत है।
0: जरूरत है। देखो मैं तो आज थे को तो हर जैसे सुनाती हूँ।
1: सुनाओ
0: सुनो साहब।

0: गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
1: जी हाँ, अपने उत्पादों, सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
0: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
1: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
0: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
1: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
0: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
1: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
0: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज़ जन जन तक।
2: तो संदेशों भी सुन लियो और हरजस भी सुन लियो,
3: लेकिन मन रोकन भरियो,
2: मन रोकन भरियो। पण अब देखो कार्यक्रम रो भगत जी को है नी, वो अपने भाई लोगा सो सीख लेने रो जरूर गया करे। तो लेरमा सीख गणान गणा मोकला मोकला
3: राम राम
2: राम राम।

ये था ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम ग्रामीण जगत, आकाशवाणी बीकानेर का ये ढूला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 7:45 हुए हैं। लीजिए सुनिए सुगम संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में शुरुआत में सुनिए ये नात। गायक कलाकार हैं अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन।

0: असलम साबरी कव्वाल और साथियों के गाए इस नात के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बजे हैं। लीजिए सुनिए ईद उल जुहा पर्व पर रेडियो रिपोर्ट। वाचन स्वर है श्री महेश उपाध्याय का, प्रस्तुति है श्री रेवंत राम लेखा की, संयोजन श्री अमित सिंह का।
1: त्याग, भाईचारे और आस्था का पर्व ईद उल अजहा उत्साह के साथ मनाया गया। त्याग और बलिदान का त्यौहार ईद उल अजहा की नमाज आज प्रातः 8 बजे नया शहर स्थित बड़ी ईदगाह में सामूहिक रूप से अदा की गई। ईद की नमाज शहर काजी जनाब शाह नवाज हुसैन ने अदा करवाई। सुनिए एक झलक।

0: अब सुनिए, ईदगाह कमेटी के अध्यक्ष हाफिज फरमान अली ने ईदगाह के आसपास रहने वाले हिंदू भाई बहनों, प्रशासन और पुलिस व्यवस्था की तारीफ करते हुए बीकानेर में फैल रहे नशे की लत पर चिंता करते हुए इसे रोकने का आह्वान किया।
1: आज ईद उल जुहा का त्यौहार बड़े ही मोहब्बत के साथ में, बड़ी अकीदत के साथ में हम सब लोगों ने मिलकर मनाया, और आसपास के जो हमारे पड़ोसी जो है हिंदू भाई है, वो लोग हमारे साथ सदियों से, सालों से हमारे साथ मदद करते आ रहे हैं। पड़ोसी लोग, जिला प्रशासन हो, यहाँ के पड़ोस के लोग हो, यहाँ के लोग, उन सबको मैं ईद की मुबारकबाद देता हूँ। और मैं ये कहता हूँ कि पूरा हिंदुस्तान बीकानेर बन जाए। बीकानेर जो है एक ऐसी तहजीब का एक मरकज़ किला है कि जहाँ पे मुस्लिम भाई जो है हिंदू भाई के यहाँ पे दीपावली के मौके पर जाता मिठाई खाने के लिए, और वहाँ के हिंदू भाई जो होते हैं ईद के मौके पे हमारे यहाँ पे शिरकत करते हैं, ईद में शामिल होते हैं, और होली का मौका होता है तो हम लोग जाते हैं। इमाम हुसैन की शहादत का गम होता है तो उस गम में भी ये लोग हिस्सा लेते हैं। तो ये बीकानेर शहर है, बीकानेर की पहचान है। तो मैं आप मीडिया कर्मियों के माध्यम से ये पैगाम देता हूँ एक, कि अभी जो शहर का जो माहौल बिगड़ा हुआ है, फिजा बिगड़ी हुई है, ऐसा माहौल बिगड़ा हुआ है कि मझधार में फंस रहा है ये शहर। नौजवान तबके के जो लड़के हैं, नशा, पता नहीं क्या क्या नई नई चीज़ें लेके आ रहे हैं। हालांकि प्रशासन बहुत ही इस चीज़ में एक्टिव है, वो तो हर तरह से अपने पूरी कोशिश करेंगे कि शहर को नशे से बचाया जाए। माँ बाप को चाहिए, सबसे पहले जो क्लास है वो माँ बाप को लेना चाहिए कि अपने औलादों पर कंट्रोल करें। तो आज का मेरा ये मकसद है कि नशे पर थोड़ा सा आवाम तक पैगाम पहुँचाए, नशा वो गंदी चीज़ है, इससे बचें, और तमाम लोगों की ईद की मुबारकबाद हो। दो रकअत नमाज ईद उल अजहा हाफिज शाहनवाज हुसैन साहब ने, शाही इमाम साहब ने पढ़ाई, बड़ा सुकून से पढ़ाई। इनके लड़के ने बड़े ही मुख्तसर अंदाज के अंदर कुर्बानी का मतलब बताया, कुर्बानी क्या है, कुर्बानी का मकसद क्या है, वो आने वाले लोगों को बताया यहाँ पे। तो उम्मीद है कि आने वाला कल जो इस जो बच्चा है शायका जी बन के बीकानेर के अंदर एक अच्छा बेशकीमती हीरा बन के चमकेगा। आज़ादी से लेकर आज तक हमारे बीकानेर में ईद, होली, दीपावली मिलकर मनाते हैं। आज ईद उल फितर का त्यौहार बड़े शौक से, बड़ी खुशी से, बड़े एक साथ मिलजुल के मनाया। आसपास के पड़ोस के लोग क्या, आसपास के हर कास्ट के लोग क्या, सनातन समाज के तबके के लोगों ने भी हमारे साथ हमेशा देते हैं, और उनके वो भी हमारे दुख में सुख में हमारे साथ मिले हुए रहते हैं, हम भी इनके साथ हैं। तो हम उस खुदा से, अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि खुदा हमारा इसी तरह से इस बीकानेर शहर में अमन शांति बना रखे, मुसलमान दीपावली के मिठाई खाने के लिए जाए और हिंदू भाई ईद के सवैयाँ खाने के लिए जाए, ये मिसाल हमारी कायम रहे ता उम्र तक, जब तक सूरज चांद रहेगा। शहर बीकानेर में इसी तरह से शांति, अमन, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में इसी तरह से मिलकर के हम खुशियाँ मनाएंगे, ये हमारा एक पैगाम है और ये पैगाम आगे तक जाएगा, हम दुआ करते हैं।
0: बड़ी ईदगाह में नमाज अदा कराने वाले शहर काजी जनाब शाहनवाज हुसैन ने अपने संदेश में बधाई दी और जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक का माकूल व्यवस्था के लिए शुक्रिया भी किया।
2: हिंदुस्तान वासियों को पहले तो मैं ईद उल अजहा की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, छत्तीस को, हमारे भाई भाई सबको ईद उल अजहा की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और बड़े ही इत्मीनान के साथ बड़ी ईदगाह में ईद उल अजहा की नमाज अदा करवाई गई, दो रकात नमाज माए छः तकबीरों के साथ। और प्रशासन, कलेक्टर साहब, एसपी साहब ने बड़ा ही इत्मीनान के साथ अच्छा माकूल व्यवस्था इंतजाम किया, उनके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद।
0: और आइए अब सुनते हैं, पूर्व मंत्री श्री बीडी कल्ला ने शहरवासियों को बुराइयों को दूर करने का संकल्प लेने की बात करते हुए क्या कहा।
3: ईद उल अजहा के इस मौके पर मैं तमाम अकलियत के भाइयों को हार्दिक मुबारकबाद देता हूँ। ये त्याग, तपस्या और बलिदान का याद दिलाता है, और खास तौर से आज के दिन उनको अपने अंदर व्याप्त बुराइयों को दूर करने का संकल्प लेना चाहिए। हमारी संस्कृति, गंगा जमुनी तहजीब हमारी हमेशा रही है, हम मिलजुल कर त्यौहार मनाते हैं। ईद के दिन हम उनको मुबारकबाद देने आते हैं, तो दिवाली के दिन हमारे अकलियत के भाई हम सबको मुबारकबाद देते हैं। तो ये साझा संस्कृति हमारी बनी रहे, और आज के दिन मैं दुआ करता हूँ कि हमारे देश की एकता और अखंडता बनी रहे।

0: ईद उल जुहा के अवसर पर पूरे शहर के साथ साथ बड़ी ईदगाह पर भी पुलिस और प्रशासन की माकूल व्यवस्था की गई थी। हमने बात की अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर श्री रमेश देव से।
1: सभी को ईद मुबारक। सभी नमाजियों ने अकीदत से नमाज पढ़ी, अनुशासित ढंग से सारी व्यवस्थाएं थी। जगह जगह पर पुलिस हमारे पिकेट्स रेडी रख रखे थे और छोटी मोटी व्यवस्थाएं सभी जो है वो नगर निगम द्वारा और बीकानेर विकास प्राधिकरण द्वारा की गई थी। साफ सफाई की व्यवस्थाएं ठीक है और शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा की गई, सब ठीक है।
0: बीकानेर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर श्री चक्रवर्ती सिंह राठौड़ ने बीकानेर की सभी मस्जिदों पर माकूल पुलिस इंतजाम की बात कहते हुए ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू करने के बारे में भी बताया।
2: देखिए, ईद का त्यौहार जो है एक बड़ा त्यौहार है और हर वर्ष की तरह माकूल जो है पुलिस बंदोबस्त किया गया है। ईदगाह मुख्य ईदगाह पर मुख्य नमाज होती है। नमाज के अलावा भी जिन जिन और भी मस्जिद जहाँ पर भी है वहाँ पर भी नमाज अदा होती है। सभी जगह माकूल पुलिस व्यवस्थाएँ की गई है, ट्रैफिक व्यवस्था को भी सुचारू रखा गया है। उसके अलावा शहर में जगह जगह जो है फिक्स पिकेट लगाए गए हैं ताकि किसी को भी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो और पुलिस प्रशासन की तरफ से सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद।
0: और आइए अब सुनते हैं ये युवा रेहान क्या कहता है युवा पीढ़ी को।
3: मेरा नाम मोहम्मद रेहान है, मैं 12th में पढ़ता हूँ और मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि ईदी कुर्बानी ये सिर्फ कुर्बानी नहीं है, हमें अपने अंदर जो कि भरी हुई है हमें उसे कुर्बान करना चाहिए। हमारा अहंकार हमें उसे कुर्बान करना चाहिए। हमारे अंदर जो अनयूजुअल चीज़ें हैं, जैसे हमारे अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें भी पसंद नहीं है, हमें उन्हें त्यागना चाहिए, हमें एक नई शुरुआत करनी चाहिए। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जो ये नशा है इसे आप इस दिन कुर्बान कीजिए और अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत कीजिए।
0: बीकानेर के शायर श्री असद अली असद ने ईद उल अजहा की महत्ता बताते हुए अपने अंदर की बुराई और घमंड रूपी राक्षसों को खत्म करने की बात कहते हुए बीकानेर की गंगा जमुनी संस्कृति की चर्चा भी की।
4: आज का दिन बेहद खुशी का दिन है, अपने अंदर व्याप्त बुराइयों को कुर्बान करने का दिन है, अपने अहंकार को, अपने घमंड को, अपने अंदर जो राक्षस है उसको खत्म करने का दिन है। जानवर की कुर्बानी करना मकसद नहीं है, मकसद ये है आज के दिन का कि हम अपने अंदर जो शैतान है, जो घमंड है, जो अहंकार है, जो विमिनशीलता है, जो सांप्रदायिकता है, जो इंसान को इंसान से अलग करती है, उसको दूर करने का, उसको ज़िबा करने का, उसको कुर्बान करने का दिन है। आज के दिन का मैसेज भी यही है। बहुत शुक्रिया। आज के दिन का मैसेज भी यही है कि हम अपने अंदर के शैतान को ख़त्म करें, अपने अंदर के शैतान से जिहाद करें और ना सिर्फ जिहाद करें बल्कि उसको नेस्त नाबूद कर दें, ख़त्म कर दें, ताकि इन फ्यूचर वो वापस सर ना उठा सके। और इस तरह का अगर इस मैसेज को लेकर अगर हम समाज में जाते हैं तो एक बहुत साफ सुथरा समाज हमारे सामने आता है और साफ सुथरा समाज अगर सामने आता है तो सब कुछ साफ साफ स्वच्छ क्लीन हो जाता है। और रही बात बीकानेर की संस्कृति सबका साझा, दुआ है मेरी आज के दिन की बीकानेर की संस्कृति सबका साझा सीर, दौज मेरे देवता नोगज मेरे पीर, दौज मेरे देवता नोगज मेरे पीर। साथ में ये भी कि मंदिर की घंटी बजी गूंजी उधर अजान, शहर मेरा पढ़ने लगा गीता और कुरान, शहर मेरा। ये हमारी बीकानेर शहर की थाती है, धरोहर है, इस धरोहर को बचाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। अरे हिलाल ईद ला तू मेरे अरमानों की ईद, इश्क के शेदाई यों उल्फत के परवानों की ईद, मेरे हिंदुस्तान में आए सारे ही इंसानों की ईद, ये न कह दे कोई है ये मुसलमानों की ईद।
0: श्रोताओं अब सुनिए ईद उल जुहा पर बड़ी ईदगाह पर नमाज अदा करने आए नमाजी क्या कहते हैं ईद उल अजहा के बारे में।
5: मेरा नाम है इंसाफ अली, ठीक है, और ईद भी बहुत अच्छी रही, सबको ईद की मुबारक हो, सबको सलाम है।
6: ईद उल अजहा का त्यौहार के मौके पर मैं पूरे देशवासियों, प्रदेशवासियों, शहरवासियों को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये वो त्यौहार है जो त्याग तपस्या बलिदान का त्यौहार है। बलिदान का त्यौहार हम यूँ कहेंगे, अल्लाह ताला का हुक्म हुआ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, आप अपनी प्यारी से प्यारी चीज़ कुर्बान कीजिए। उस ज़माने में धन और दौलत, ज़मीन जायदाद तो हुआ नहीं करती थी,

0: अपनी औलाद ही सबसे प्यारी हुआ करती थी। आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने की नीयत से एक पहाड़ी पर ले गए, जहाँ पर उनको कुर्बान करने के लिए लेटाया। लेटाने के बाद हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनके अपने वसीयत के अनुसार, बेटे की वसीयत के अनुसार, आँखों पर पट्टी बांधी और छुरी उनके हलक पर रखी। लेकिन अल्लाह का हुक्म हुआ, अल्लाह ने उस कुर्बानी को कबूल फरमाया, उसकी जगह अल्लाह ने जन्नत से एक डुम्बा भेज दिया। वो छुरी उनके बच्चे पे नहीं चलकर बल्कि डुम्बे पे चली गई और अल्लाह की राह में वो कुर्बानी कबूल हुई। उस दिन से हर मुसलमान पर एक जो साहिब निसाब है उस पर कुर्बानी वाजिब कर दी गई है। मैं कुर्बानी से मतलब जानवर से कुर्बानी से नहीं है, उनकी नीयत ये थी अल्लाह की राह में अगर आपके पास धन है तो आप धन की मार्फत जो गरीब लोग हैं, मिस्कीन लोग हैं, उन लोगों की खिदमत करें। आप अपने देश के लिए अगर धन लगा सकते हैं और देश की एकता अखंडता को कायम रख सकते हैं और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की एकता को कायम रख सकते हैं और अपने स्वार्थ को त्याग कर अपने देश के लिए बलिदान कर सकते हैं, यही सच्ची कुर्बानी है। इस मौके पर मैं कहूँगा कि त्याग तपस्या बलिदान का त्यौहार है, हम सब लोगों अपना स्वार्थ छोड़ करके और अपने देश हित में और अपने समाज हित में, अपने परिवार हित में काम करना चाहिए। मैं इस मौके पर सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को ईद उल अजहा की मुबारकबाद पेश करता हूं, परवरदिगार से दुआ करता हूं, अल्लाह ताला से दुआ करता हूं हमारे देश में और विदेश में पूरे दुनिया में एकता कायम रहे और सभी अमन और चैन से रहें। जय हिंद, जय भारत।
1: पहले तो ईद उल अजहा की मैं न सिर्फ बीकानेर वालों को बल्कि तमाम हिंदुस्तान को मैं मुबारकबाद देता हूँ, तमाम दुनिया वालों को मुबारकबाद देता हूँ। देखिए, ईद के माने हैं खुशी, ये खुशी का मौका है, इसके साथ जुड़ी हुई है कुर्बानी। इस कुर्बानी का मकसद ये है, खुदा ने जो कंसेप्ट दिया है कुर्बानी का, उसका मकसद ये है कि जब भी वक्त पड़े हमें अपनी प्यारी से प्यारी चीज़ कुर्बान करने से पीछे नहीं हटना चाहिए, चाहे वो कुर्बानी हमारा समाज मांगे, हमारा मुल्क मांगे, हमारी संस्कृति मांगे, हमें कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये खुदा की तरफ से कुर्बानी का कंसेप्ट इसलिए रखा गया है। दूसरी बात, बीकानेर की गंगा जमुनी संस्कृति, माफ़ कीजिएगा मैं इस शब्द में यकीन नहीं रखता, क्योंकि ये न सिर्फ बीकानेर की बल्कि हमारे पूरे देश की जो संस्कृति है, जो हमारे मुल्क की तहजीब है, वो सिर्फ गंगा और जमुना तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे जो मुल्क की तहजीब है वो सागरीय संस्कृति है। हमारा मुल्क, हमारे मुल्क की तहजीब एक सागर है, जहाँ दुनिया की तमाम संस्कृतियाँ, दुनिया की तमाम तहजीबें आकर मिलती हैं। तो हम तो उस सागर के रहने वाले हैं, हमारी सागरीय संस्कृति है, और यहाँ आकर तमाम भेद ख़त्म हो जाते हैं, चाहे वो मज़हब के भेद हों, चाहे वो ज़ात के भेद हों, चाहे वो इलाके के भेद हों, ज़बान के भेद हों, नस्ल के भेद हों, हमारा मुल्क इन तमाम तफरकों को ख़त्म करके पूरी दुनिया को पैगाम देता है कि अगर कहीं इंसानियत का कंसेप्ट है, इंसानियत को जिया जाता है, तो वो सरजमीन मुल्क हिंदुस्तान है। एक बार फिर ईद उल अजहा की तमाम मुल्क को मुबारकबाद।
2: सांगी लाल वर्मा मेघवाल, आज ईद के मौके पे सभी मुस्लिम भाइयों को ईद की बहुत बहुत मुबारक। ये बीकानेर का एक बहुत बड़ा त्यौहार है, जैसे हिंदू दीपावली और होली मनाते हैं उसी प्रकार ये ईद का त्यौहार है। आज ईद का पे हम आकर के हमेशा इनको ईद मुबारकबाद देते हैं। ये हमारी संस्कृति है हिंदू मुस्लिम भाइयों की, ये बनी रहे और ये भारत में एकता और अखंडता के साथ हम बधाई देते हैं उनको।
3: आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। ये त्यौहार त्याग और कुर्बानी का त्यौहार है, हमें हमारे अंदर जो भी बुराइयां हैं उन सब का त्याग करना चाहिए, यही इस त्यौहार का संदेश है। हमें आप सबको एक बार फिर से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं।
4: आज के दिन का जिलहिज्जा का ये महीना है और हिजरी कैलेंडर के हिसाब से ये आखिरी महीना कहलाता है, और इस दिन आज के दिन हज होता है, वो मक्का शरीफ के अंदर 5 दिन वहाँ इबादतें की जाती है। और कुर्बानी के मायने ये है कुर्ब हासिल करना, यानी अल्लाह ताला से, पाक परवरदिगार से, समस्त सृष्टि के विधाता से मोहब्बत हासिल करना। यानी कुर्बानी के मायने ये नहीं है कि खालिस आपने किसी एक जानवर को ज़िबा कर दिया और यहाँ मामला कंप्लीट हो गया, ऐसा नहीं है। कुर्बानी के मायने है आपके अंदर जो अहंकार भरा हुआ है उसको आप त्याग कर दो, आपके अंदर जो घमंड है, गुरूर है, चाहे वो माल का हो, चाहे वो औलाद का हो, चाहे वो महलात का हो, चाहे वो हुकूमत का हो, चाहे किसी चीज़ का हो, हर चीज़ को कुर्बान कर देना चाहिए। और समस्त सृष्टि का विधाता जो आपको हुक्म देता है उसको

0: उसके उस पर आपको पूरी तरीके से अमल करना चाहिए, ये चाहता है मालिक। इंसान को दौलत दे के आजमाता है, किसी को औलाद दे के आजमाता है, किसी को पैसा दे के आजमाता है, किसी को हुकूमत दे के आजमाता है। तो यहाँ एक आजमाइश है और मालिक तरफ सिर्फ ये देखना चाहता है कि मैंने इसको कुछ दिया है तो ये मेरी राह में वापस रिटर्न कितना करता है। यानी उसने सब्र और शुक्र का मामला दिखाया है। यानी आप उसके सामने झुक जाओ, जो कुछ उसने दिया है उसको आप उसका शुक्राना अदा करो। ये मायने कुर्बानी के ये भी मायने हैं कि आपके अपने पड़ोसियों का, अपने अजीज व करीब का, जो अनाथ हैं, जो कमज़ोर हैं, जो विधवाएं हैं, जो बिल्कुल लाचार है, उन लोगों की आज के दिन खुलकर मदद करने का भी एक मैसेज दिया गया है। तो ये है कुर्बानी, सही मायने में अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करना और उसे मोहब्बत हासिल करना। ये पॉसिबल तभी होगा जब हम दुनिया के मानवता का काम करेंगे और जिस समझ शक्ति के विधाता के सामने सरदा करते रहेंगे, उसके नाम से कुर्बानी करते रहेंगे, यही असल में कुर्बानी है।
1: चंद्रशेखर चावरिया, ईद के इस मुबारक मौके पर मैं अकलियत के लोगों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। भारत में ये त्यौहार गंगा जमुना संस्कृति बनाए रखें, इसको लेकर के अकलियत के लोगों को हम हिंदू लोग उनको बधाई देने आते हैं और हमारे त्यौहारों पर अकलियत के लोग हम लोगों को भी हार्दिक शुभकामनाएं देने आते हैं। तो ये हमारी गंगा जमुना कल्चर है जो बना रहे हैं, इसको लेकर के हम सब लोग ईद और होली और ये दीपावली का त्यौहार एक सांप्रदायिक एकता के साथ मनाते हैं।
2: आज कुर्बानी का दिन है और आज बहुत बड़ा दिन है इस्लाम में। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चे की परीक्षा ली थी अल्लाह के हुक्म से और उसमें निश्चित ही उनका जो बेटा था वो भी नबी थे और आप भी नबी थे, तो उन्होंने कुर्बानी के लिए उनको ख्वाब के बारे में बताया था कि मुझे ख्वाब भी आया है तो उसमें मैं आपकी कुर्बानी दे रहा हूँ। तो वो जल्दी से तैयार हो गए थे और वो तुरंत उन्होंने जो आप कहोगे वो तैयार हैं, तो उन्होंने कुर्बानी के लिए अपना किया था। उसी कुर्बानी को देखते हुए आज जो कुर्बानी हो रही है और वो जो कुर्बानी का मतलब एक है कि हम किसी के प्रति कुर्बान हो सकते हैं और सबसे बड़ा ये मैसेज है कुर्बानी भी किसी तरह भी कुर्बानी हो सकते हैं। ये माहौल अच्छा माहौल के लिए भी हम किसी के ऊपर कुछ ना कुछ चीज़ को कुर्बान कर देते हैं तो वो भी एक बहुत बड़ी कुर्बानी कहलाती है। हमारा यहाँ का माहौल, बीकानेर का जो माहौल है, सद्भाव है, वो वास्तव में देखने लायक है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इंसानियत, मानवता, यही सब कुछ है और सबको यही मैसेज देना चाहता हूँ।
3: बड़ी शांति और सौहार्दपूर्ण ईद बीकानेर में मनाई गई है माशाल्लाह और बहुत ही भाईचारे के साथ मनाई गई है। आज कुछ भी हार्दिक शुभकामनाएं हमारी तरफ से और बीकानेर का भाईचारा बस अल्लाह इसी तरह कायम रखे। हम तो यही दुआ कर रहे हैं कि भगवान की ये कृपा हमारे ऊपर बनी रहे बस बीकानेर वालों पे।
4: सभी देशवासियों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं और बीकानेर का जो शहर है बड़ा मिला जुला शहर है, संगीत में भी बड़ा प्रेम है, लोगों में भी बहुत प्रेम है और सुर इसीलिए मीठा बोलता है बीकानेर का, तो लोग बहुत मीठे हैं यहाँ के।
5: सबसे पहले तो ईद की हमारे सभी भाइयों को बहुत बहुत बहुत मुबारक हो और सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि बीकानेर की जो संस्कृति है वो गंगा जमुना संस्कृति अपने आप में एक मिसाल है। यहाँ पे हर त्यौहार, चाहे ईद है, चाहे होली है, चाहे दिवाली है, चाहे मुहर्रम है, सारे जो है सभी संप्रदाय के, चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान है, सब मिलके मनाते हैं और आज के इस शानदार पर्व में जहाँ ये हमारे साथ में ईद मना रहे हैं तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है और ये अच्छी बात है कि हम सारे एक साथ इकट्ठे होकर के और इस खुशी के पर्व में शरीक हो रहे हैं। सबको बहुत बहुत बहुत बहुत ईद मुबारक का ये पावन पर्व है।
6: हिंदू मुस्लिम भाईचारे और एकता का प्रतीक तो है ये और इस ईद के पर्व पे मैं पूरे प्रदेश और देशवासियों को और विशेष तौर अपने शहर बीकानेर वासियों को ईद की तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। सबको ईद की खुशियाँ पूरे जीवन में बनी रहे।
7: श्रोताओं, ईदगाह के आसपास रहने वाले हिंदू भाइयों द्वारा गर्मी के इस मौसम में पानी आदि की सेवा भी लगाई गई। क्या कहते हैं ये सेवादार?
8: राजीव पंचारी, हमारे यहाँ नमाज पढ़ी जाती है हर साल, साल में दो बार। हम इनके साथ हर चीज में सपोर्ट में रहते हैं और पानी की सेवा, इनके साथ घुल मिल कर रहना, हम एकता का प्रतीक चाहते हैं। सब हम एक मिलके रहेंगे तभी राष्ट्र बनेगा। तो ये ईद हर साल हम मिलके बनाएं और सबकी यही भागीदारी रहे, मैं यही चाहता हूँ।

0: इस प्रकार अपनी कौमी एकता के लिए पहचाने जाने वाले शहर बीकानेर में आपसी प्रेम, सौहार्द और पारंपरिक गंगा जमुनी तहजीब के साथ ईद उल अजहा का पर्व धूमधाम से मनाया गया। रिपोर्ट के संयोजक थे श्री अमित सिंह, प्रस्तुति थी श्री रेमुतराम लेगा की, वाचक स्वर था महेश उपाध्याय का।
1: अभी श्रोता सुन रहे थे ईद उल जुहा पर रेडियो रिपोर्ट, वाचन स्वर था श्री महेश उपाध्याय का, प्रस्तुतकर्ता श्री रेवंतराम लेघा, संयोजक श्री अमित सिंह। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्स और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्स पर।
2: मैं आकाशवाणी 90 साल की

90 साल और एक स्वर्णिम सफर आकाशवाणी, आकाशवाणी जिसने संगीत, नाटक, कविता और अपनी बातों के माध्यम से पूरे भारत को

बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक, युवाओं से लेकर किसानों तक और किसानों से लेकर जवानों तक हर दिल की आवाज बना आकाशवाणी का जादुई माइक। और आकाशवाणी का ये माइक भारत की सभी भाषाओं में

और अब तो रेडियो से आगे बढ़कर पॉडकास्ट और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आपकी सुनहरे कल की कहानियां दोबारा सुनाने को है तैयार आकाशवाणी।

तो हमेशा सुनिए रेडियो रेडियो रेडियो, महसूस कीजिए रेडियो रेडियो रेडियो, क्योंकि आप सवार हैं आकाशवाणी के संस्कृति रूपी स्वर्ण रथ पर, जो दमकता है और प्रतिभा के अनमोल हीरों से चमकता है।

आकाशवाणी का 90वें साल में प्रवेश। कोशिश रहेगी अब से प्रसारण का हर लम्हा होगा आपके लिए अति विशेष।

रील्स के शो में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है, आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर रात्रि के 8:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए लोक संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम की शुरुआत में सुनिए सुमन नायक का गाया ये लोकगीत।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम और अब सुनिए वीना रस्तोगी का गाया ये

सुनील कुमार तंवर, इनके गए इस लोक भजन के साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर रात्रि के 8:45 हो रहे हैं। अब श्रोता सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या और उसके बाद न्यूज़ एट 9।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर देश से निकालने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने त्याग पत्र दिया, कहा राज्य की सक्रिय राजनीति में बने रहेंगे। केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। प्रसिद्ध उर्दू शायर बशीर बद्र का भोपाल में 91 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में आज से गर्मी और लू में कमी का अनुमान व्यक्त किया। वर्षा और आंधी के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गर्मी से राहत। और दो भारतीय पहलवान वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचे। समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठी की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में आज 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर आज श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धरमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है।
2: दो बार के मुख्यमंत्री और दो बार विपक्ष के स्थान पर काम कर चुके सिद्धरमैया ने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया। अहिंदा यानी अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदाय के नेता के तौर पर जाने वाले सिद्धरमैया ने कहा कि हाईकमांड के आदेश अनुसार उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की समाचार सुनने के बाद कई जगहों पर आज राज्य में विरोध प्रदर्शन हुआ। दूसरी तरफ डीके शिवकुमार के समर्थकों द्वारा खुशी मनाई गई। दोनों नेता दिल्ली की ओर निकले हैं जहां वह हाईकमांड के साथ संसदीय नेता के चयन और मंत्रिमंडल की रचना पर चर्चा करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में वर्तमान विधायक अभिषेक देबरॉय को पार्टी के प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री अभिषेक देबरॉय राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति दी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ माणिक साहा ने बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि श्री देबरॉय के गतिशील नेतृत्व और संगठनात्मक दूरदर्शिता से त्रिपुरा में भाजपा और मजबूत होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन कल कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। उपराष्ट्रपति कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। शनिवार को श्री राधा कृष्णन पणजी में गोवा के राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति 31

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारे जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र इस अभियान में एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। एफकैट 1 ऑफ 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
4: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
5: 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। अब तक इस योजना के अंतर्गत केवल ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए। शहरी आवास योजना के मकान अलग है, उनको मिला के तो 4 करोड़ बहुत पहले पूरे हो चुके हैं। तो राज्यों को मैंने अपील की है कि समय पर लक्ष्य पूरा करें और जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन उपलब्ध कराने का काम करें।
4: महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मुख्यालय में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में बोर्ड की कक्षा 12वीं की परीक्षाओं के मूल्यांकन और परिणाम के बाद की प्रक्रियाओं से संबंधित विषयों की समीक्षा की गई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को छात्रों की समस्याओं का समय पर पारदर्शी और छात्र हितैषी तरीके से समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पाठ्यक्रम में व्यापक सुधार के लिए उद्योग जगत के साथ मिलकर काम कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में AI पाठ्यक्रम कार्यबल के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में AI शिक्षा को भविष्य की तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने पर चर्चा हुई। कोयला खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि कोयले से गैस बनाने की योजना देश के औद्योगिक और आर्थिक परिवर्तन का एक प्रमुख स्तंभ बन रही है। नई दिल्ली में कोयला और लिग्नाइट से गैस बनाने की परियोजनाओं को प्रोत्साहन से जुड़े प्रदर्शनी के दौरान श्री रेड्डी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भरता और सुरक्षित ऊर्जा व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि लोकतंत्र संवाद, विचार विमर्श, आम सहमति और असहमति के वातावरण में फलता फूलता है। श्री बिरला ने आज दिल्ली विधानसभा में 1924 से 1930 तक केंद्रीय विधानसभा की सभी 407 बैठकों की कार्यवाही के 89 खंडों के अनूठे संकलन का विमोचन किया। श्री बिरला ने कहा कि यह संग्रह भावी पीढ़ियों और लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए अमूल्य मार्गदर्शक साबित होगा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने राजौरी जिले के गंभीर मुगला क्षेत्र के दोरीमाल इलाके में घने जंगलों में जारी आतंकवाद रोधी अभियान के आज छठे दिन भी संदिग्ध आतंकी ठिकानों पर गोलीबारी और ग्रेनेड लॉन्चर से हमले किए। 2 से 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों के इस क्षेत्र में छिपे होने की आशंका है। छिपे आतंकवादियों को मार गिराने के लिए संदिग्ध ठिकानों पर गोलीबारी की गई। आतंकवादियों की गतिविधियों पर लगातार कड़ी नजर रखी जा रही है और क्षेत्र में अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजे गए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

अपने स्कीम के टेली लोन नए बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लोन के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: शहर में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यनेज यांशा को स्लोवेनिया का प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वे दोनों देशों के लोगों की साझा समृद्धि और पारस्परिक लाभ के लिए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं। महान उर्दू शायर बशीर बद्र का आज मध्य प्रदेश के भोपाल में निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। उन्होंने दोपहर करीब 12 बजे अंतिम सांस ली। आकाशवाणी समाचार की श्रद्धांजलि।
2: उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए।
3: उर्दू अदब और गजल की दुनिया आज उस वक्त गहरे सन्नाटे में डूब गई जब मशहूर शायर बशीर बद्र ने हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह दिया। 15 फरवरी 1935 को जन्मे बशीर बद्र की गजलों में मोहब्बत, तन्हाई, रिश्तों की नजाकत और इंसानी जज्बात की गहरी झलक दिखाई देती है।
2: हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, उम्रें बीत जाती हैं दिल को दिल बनाने में।
3: जी हाँ, ऐसे ही कालजई अशरार ने उन्हें करोड़ों दिलों तक पहुंचाया। उनके योगदान के लिए सरकार ने उन्हें पद्मश्री से अलंकृत किया। उर्दू अदब की ये आवाज भले ही खामोश हो गई हो, लेकिन उनकी शायरी हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी।
2: अजब चराग हूँ, दिन रात जलता रहता हूँ, मैं थक गया हूँ, हवा से कहो बुझाए मुझे।
1: मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया है कि आज से उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में लू की स्थिति में कमी आने की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज वर्षा और आंधी के कारण लोगों को भीषण लू से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 41.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस रहा। विभाग के अनुसार कल राजधानी में बादल छाए रहने के साथ साथ हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव ने देश के कुछ अन्य क्षेत्रों में भी भीषण गर्मी से राहत का अनुमान व्यक्त किया है।
4: जो हीटवेव कंडीशन उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत का लगा हुआ पूर्वी भारत और दक्षिण पश्चिम भारत कुछ क्षेत्रों में कंटिन्यू चल रही थी, उसमें आज के बाद से कमी होने की संभावना है। थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी का एक्सपेक्टेशन है जो कि मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी का हो सकता है, और नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया और जो पूर्वी भारत है उसमें 28 से 31 तारीख के बीच में चेतावनी जारी की गई है। अधिकतम तापमान में भी 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक की गिरावट हो सकती है और हीटवेव कंडीशन से राहत मिलने की पूर्वानुमान जारी किया गया है।
1: वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के दो पहलवानों ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। पुरुषों के 45 किलोग्राम ग्रीको वर्ग में आज सचिन कलप्पा शिरोल ने जॉर्डन के समी अहमद अल उबेद को, वहीं 110 किलोग्राम वर्ग में रुद्र किरण निम्हान ने श्योक मेहिम को हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय पहलवानों के शानदार प्रदर्शन पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पुरुष फ्री स्टाइल और महिला कुश्ती टीमों ने चैंपियनशिप में टीम खिताब जीते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर देश से निकालने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने त्याग पत्र दिया, कहा राज्य की सक्रिय राजनीति में बने रहेंगे। केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। प्रसिद्ध उर्दू शायर बशीर बद्र का भोपाल में 91 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में आज से गर्मी और लू में कमी का अनुमान व्यक्त किया। वर्षा और आंधी के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गर्मी से राहत। और दो भारतीय पहलवान वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचे।

0: Spotlight. This is Akashvani. In the program Spotlight, now we bring you a discussion on Supreme Court's verdict on special intensive revision, strengthening electoral
1: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर रात्रि के 9:15 हो चुके हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में सबसे पहले सुनिए सोहनी महिवाल फिल्म से मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर को। गीतकार हैं शकील बदायूनी, संगीतकार नौशाद,

फिल्म का नाम सनम बेवफा। गायिका लता मंगेशकर, गीतकार सावन कुमार और संगीतकार महेश किशोर। और अब सुनिए पवित्र पापी। इस फिल्म से प्रेम धवन की इस रचना को गाय कलाकार हैं मोहम्मद रफी।

जब तक साफ है दिल का शीशा, जब तक साफ है दिल का शीशा, दुनिया से ना डरता। अल्लाह ही अल्लाह।

हम दोनों। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर रात्रि के 9:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए सुगम संगीत के कार्यक्रम में गजलें। कार्यक्रम के प्रारंभ में सुनिए आबिदा परवीन की गाई ये गजल।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर
1: करते हुए फील्डर से नहीं रुकी है गेंद सीमा रेखा के बाहर,
0: मन की बात के संवाद तक
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आप

आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से आप सुन रहे हैं सुगम संगीत के कार्यक्रम में गजलें। और अब सुनिए भूपेंद्र सिंह की गाई ये गजल।

अभी श्रोता सुन रहे थे सुगम संगीत का कार्यक्रम आकाशवाणी बीकानेर का। ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर रात्रि के 10 बज रहे हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से प्रांतीय नाटक कार्यक्रम।

एक नाटक निर्णय हम नहीं लेंगे बेटी, निर्णय तो आप ही को लेना है। पूरी राष्ट्रीय जाति का हित अहित कर निर्णय आपको लेना है, और वो भी सुबह से पहले। ध्यान रहे, आप हमारी ही नहीं बल्कि पूरे मेवाड़ की बेटी हैं। मेवाड़ की बेटी, मेवाड़ की बेटी।

आलोक श्री कृष्ण कुमार टिक्कू, निर्देशक श्री मदन शर्मा। तो सुनिए नाटक

0: दवाई दिया था। मैं तो समझी थी कि माँ आ गई है ना, लेकिन माँ आ भी जाए तो क्या है, अपने मंदिर पर कहीं तो चित्र देख रही थी महारानी की। और फिर अब तो विवाह हमें भी 4 ही दिन बचे हैं।
1: लेकिन हंसा, तू अभी तो मुझे क्यों महारानी कह रही है?
0: क्यों ना कहूँ? याद है जब जयपुर के राज पुरोहित ने आपकी गोद भरी थी तब क्या कहा था?
1: क्यों कहा था?
0: आयुष्मान भव, राजकुमारी जी आपका विवाह जयपुर के श्रेष्ठ महाराज मान सिंह जी के साथ 2 माह बाद होगा, किंतु आप इसी क्षण से स्वयं को जयपुर की महारानी बन गए। और राणा जी अभी मेवाड़ की राजकुमारी नहीं, जयपुर की महारानी के रूप में आपके पास हमारी अमानत है। 2 माह बाद हम जयपुर नरेश की बारात लेकर आपसे अपनी अमानत लेने आएंगे।
1: अरे वाह, तुझे तो कोई अभिनेत्री होना चाहिए था।
0: हाँ, अभिनेत्री ही बन जाऊंगी। और कैसे जाने
1: मिल जाएगा
0: तो फिर हम आपके साथ क्यों रहेंगे भला? हम अपने दूल्हे के

0: क्यों नहीं पढ़ती है?
1: मेरा गृहस्थ तो हम हैं ही, लेकिन अपनी रानी के महलों में तो हम सिर्फ एक प्रेमी पुजारी ही हैं। अब देवी की आज्ञा के बिना भला पुजारी कैसे अंदर आ सकता है?
0: लगता है आज आप ठिठोली करने पधारे हैं यहाँ। किंतु हमें अभी संध्या पूजन को जाना है भगवान एकनाथ के मंदिर में।
1: वो तो हम आपके हाथ में पूजा का थाल देखकर ही समझ गए थे रानी जी। हम तो ये कहने आए थे कि आज हमने कृष्णा को देखा तो दंग रह गए। आपने तो हल्दी चढ़ा चढ़ा कर हमारी बेटी को साक्षात वसंत ऋतु सा कर दिया है।
0: सच कह रहे हैं, कुंदन से दमकने लगी है हमारी कृष्णा। जब तुम्हारे उसे देखेंगे तो स्वयं अपने भाग्य पर आश्चर्य करेंगे। राणा जी, दिन में चार बार उसकी नजर उतारती हूँ मैं।
1: अच्छा, एक बात कही हूँ आपसे।
0: कही ना।

0: कृष्णा को देखकर हमें वो दिन याद आ गया जब हमने पहली बार अपनी दुल्हन का कुंवरट उठाया था। बिल्कुल आप पर गई है आपकी बेटी।
1: चुनी कर दी आपने ठिठोली।
0: अच्छा नहीं करती ठिठोली।
2: हुजूर महामंत्री जी पधारे हैं, कहलवाया है इसी समय हुजूर के दर्शन करना आवश्यक है।
1: महामंत्री जी इस समय?
0: विवाह की तैयारी में ही कुछ बात करनी होगी, अब चार ही तो दिन शेष बचे हैं, कल से तो अतिथियों का आना भी शुरू हो जाएगा। सेवक
2: आज्ञ महाराज।
0: तुम महामंत्री जी को भीतर भेज दो।
2: जो
0: आप भी कुछ देर यही रुक जाइए महारानी जी, संभव है आपसे भी कोई परामर्श लेना हो।
3: मेरा शिरोमणि की जय हो। आइए महामंत्री, प्रणाम स्वीकार करें महारानी जी।
1: आसन ग्रहण कीजिए महामंत्री जी।
3: आप कदाचित मंदिर पधार रही है।
1: हाँ किंतु अभी समय है, आप चाहे तो अपनी बात कह सकते हैं।
3: जो आज्ञा राणा जी। मैं
0: क्या बात है अजीत, तुम कुछ घबराए से हो।
3: अन्नदाता बड़ा अशुभ समाचार है।
0: क्या श्री जी कहो अजीत, क्या हुआ है?
3: अन्नदाता जयपुर नरेश
0: क्या हुआ है? जयपुर नरेश को
3: अन्नदाता जयपुर नरेश नहीं रहे।

0: घर में जल्दी तेरी बेटी बैठी चार दिन बाद विवाह के लग में ऐसे समय में ये बीच बात
1: ये समय रोने का नहीं महारानी, ये समय है विचार करने का। ये नगाड़े और सहनाइयां बंद करवा दो, महलों को सजावट की सारी रोशनियां बुझवा दो, जनाने महलों में कहलवा दो कि ये गीत नृत्य सब बंद कर दिए जाए।

0: भी बात छेद कर दी और हम अपना धर्म बनाए हुए हैं
1: और हम कर भी क्या सकते हैं।
2: किंतु राणा जी, एक और कठिन समस्या है।

0: माँ का जो रिपोर्ट है उसमें इसका रिजल्ट पहले ही होगा।
1: क्या कह रही हैं आप?
0: आप तो कुल की यही नहीं थे राणा जी, एक बार हल्दी चढ़ जाने पर लड़की का बिना लक्षित नहीं पकड़ना होता है। हल्दी चोरी बेटी पिता के घर नहीं रह सकती।
1: किंतु राणा जी, लगने तो केवल चार दिन शेष है, इतने कम समय में हम राजकुमारी के लिए योग्य वर कहां से लाएंगे? और विधाता, आज्ञा हो तो मैं कुछ अर्ज करूं, आप भी कुछ सलाह दीजिए। मंत्री जी, हमारी तो समझ नहीं आता कि अब क्या करें। अन्नदाता, राजकुमारी जी के लिए जयपुर के अलावा जोधपुर नरेश का भी तो प्रस्ताव आया था।

0: नरेश को हाँ या नहीं का कोई भी जवाब नहीं दिया।
1: हाँ
0: अन्नदाता, इस समय वही आपकी समस्या का समाधान है।
1: आपका मतलब है कि?
0: हाँ मेवाड़ शिरोमणि, जयपुर के बाद जयपुर से अच्छा कोई संबंध राजकुमारी और

0: यही उचित होगा। आपने तो हमें उबार लिया मंत्री जी।
1: महामंत्री जी, हमारा पत्र लेकर दूत को जोधपुर रवाना करो। हम राजा मकरंद सिंह को बारात लेकर निश्चित मुहूर्त पर पहुंचने का निमंत्रण भेजेंगे। राजाओं की तैयारी में समय नहीं लगता। दूत से कहना रातों रात हमारा पत्र जोधपुर नरेश तक पहुंचाए और उनका जवाब लेकर कल तक यहां वापस लौटे।
2: जो आज्ञा अन्नदाता। आप पत्र लिखिए, मैं

0: आचार्य, मेवाड़ में आपका स्वागत है।
1: मैं जयपुर महाराज का एक आवश्यक संदेश लेकर उपस्थित हुआ रहा हूँ।
0: आपको जो भी कहना हो शीघ्र कहिए दीवान जी। जोधपुर नरेश की बारात भी किसी भी क्षण आ सकती है।
1: उस बारात को वापस लौटा दीजिए मेरा नरेश।
0: क्या क्या कह रहे हैं आप?
1: जयपुर नरेश का यही संदेश है कि आप जोधपुर वालों की बारात वापस लौटा दीजिए।
0: बारात वापस लौटा दी? हमसे यह कहने का साहस कैसे हुआ आपका? आपके राजा को हमारे परिवार के मामले में दखल देने का क्या अधिकार है?
1: वो अधिकार आप ही ने जयपुर नरेश को दिया है। लेकिन
0: हमने अधिकार दिया है? हम आपकी बात समझ नहीं पा रहे हैं दीवान जी।
1: आप अगर क्रोध छोड़कर शांति से मेरी बात सुने तो सब समझ जाएंगे। फिर आप स्वयं ही फैसला कीजिएगा कि आपको जोधपुर की बारात लौटनी चाहिए या नहीं।
0: लेकिन आप कुछ कहिए तो सही।
1: अर्ज करता हूं, राजकुमारी कृष्णा का संबंध आपने जयपुर नरेश मान सिंह जी से किया। हमारे राजपुरोहित ने स्वयं आकर उनकी गोद भरी और उन्हें जयपुर की महारानी घोषित किया।

0: ठीक है, ये सब ठीक है, लेकिन मान सिंह जी के स्वर्गवास के बाद इन बातों का कोई अर्थ नहीं रह जाता।
1: क्यों नहीं रह जाता राणा जी? प्रिया सतन के विवाह संबंधी व्यक्तियों के बीच नहीं, दो राजघरानों के बीच होते हैं, दो रियासतों के बीच होते हैं। राजा मान सिंह के निधन से जयपुर की राजगद्दी सुन नहीं मिले। आज राजा मुकुंद सिंह जयपुर नरेश हैं और अपने राजपुरोहित के वचनों के अनुसार निश्चित लग्न मुहूर्त पर जयपुर की महारानी को, जो आपके पास

0: इसी लिए राजा मानसिंह की मृत्यु के शोक के बावजूद सभी लोगों के पास बारात लेकर आए हैं।
1: कलिंगनाथ, क्या होगा?
0: जयपुर नरेश की बारात खाली हाथ घूमने तो

0: जोधपुर की बारात आ गई है महाराज। जोधपुर की बारात आ गई है।
1: हाँ हाँ हाँ सुनाजी
0: जी महाराज,
1: तुम बारात के यहीं ठहरने का प्रबंध करो। कह दो नगर प्रवेश का कल सुबह से पहले अच्छा मुहूर्त नहीं है, हम महलों में जा रहे हैं, तुम वहीं आओ।
0: जो आज्ञा महाराज।

0: अब क्या होगा राणा जी? हे प्रभु, ये कैसा संकट आ पड़ा है हम पर। इधर जोधपुर की बहन तैयार खड़ी है और ये जयपुर की सेना, अब हम क्या करें? आप ही कुछ कहिए ना मंत्री जी।
1: मैं क्या कहूँ महारानी जी, मैंने तो जोधपुर और जयपुर दोनों ही राजाओं के हाथ जोड़कर अपनी व्यवस्था बताई, पर दोनों ही अपनी जिद पर अड़े हैं। जोधपुर नरेश कहते हैं कि स्वयं महाराजा ने उन्हें विवाह का निमंत्रण देकर बुलाया, अब उनकी चढ़ी बरात के सामने कोई दूसरा मेवाड़ की राजकुमारी को ब्याह कर ले जाए, इससे पहले उनका हर सिपाही अपना सिर कटा देगा। वो यहां से लौटेंगे तो राजकुमारी को लेकर, अन्यथा लाशों का ढेर लग जाएगा। यह भी चंद्र नरेश की भी है।
0: लेकिन वो अपनी एक बेटी को दो बारातों में कैसे बांटी? आप कुछ क्यों नहीं बोलते रहना जी? कल किसे आप क्या जवाब देंगे? आप
1: जवाब, हाँ जवाब तो देना ही पड़ेगा। सूरज
2: हाजिर ना दादा।
1: राजकुमारी को संदेश भेजो कि हम इसी समय उनसे मिलना चाहते हैं।
0: आप कृष्णा को बुला रहे हैं?
1: हाँ रानी जी, अब हमें क्या करना है इसका फैसला

0: आपका प्रस्ताव स्वीकार किया था तब ये सोचा था कि आपको तो अच्छा वर और घर मिलेगा ही, साथ ही मेवाड़ पर छाए संकट के बादल भी छट जाएंगे।
1: मेवाड़ पर संकट?

0: तक मेवाड़ की सीमाओं की रक्षा नहीं कर सकती, किंतु यदि जयपुर जैसी ताकतवर रियासत से हमारे संबंध हो जाते तो फिर किसी का हमारी ओर आंख उठाने का साहस भी नहीं होता।
1: ये तो आपने ठीक ही विचार किया पिताजी,
0: पर ऐसा हुआ नहीं। विवाह के चार दिन पूर्व मैं सिंह जी का स्वर्गवास हो गया।

0: पुत्रों के रक्त से स्नान करेगी। तीनों की रियासतों के सैकड़ों राजपूतों की लाशों का ढेर लग जाएगा। यहां से तुम्हारी डोली झूझ ले जाएगा, उसे अपनी ही कौम के खून की बनी दलदल से होकर गुजरना पड़ेगा। हजारों राजपूत बालाएं विद्या हो जाएंगी तुम्हारी मांग के संदेश के लिए, असंख्य बच्चे अनाथ हो जाएंगे तुम्हारा घर बसाने के लिए। और मेरा कर क्या होगा फिर?
1: नहीं पिताजी, नहीं। यदि मेरे विवाह मंडप में सुंदर गीते की जगह विद्याओं का क्रम दूंगी, यदि मेरी डोली हजारों वीर राजपूतों की लाशों को लांग कर गुजरे, तो धिक्कार मुझे विवाह पर। सिर्फ मेरे कारण इतना विनाश? नहीं पिताजी, नहीं। आप तीनों राजाओं से कह दीजिए कि मैं विवाह ही नहीं करूंगी।
0: बेटी, ये भी तो संभव नहीं है। अब हम भी चढ़ी कन्या घर में बैठी है और दरवाजे पर बारात खड़ी हो तो विवाह नहीं चलेगा। हम कहे भी तुम्हें नहीं मानेंगे।

0: कुछ नहीं, कुछ नहीं। तुम मुझे कुछ देर अकेला छोड़ दो जा। अच्छा घंटे के बाद आ, जो आगे
1: हम चाहे जयपुर वालों को मोटे या जोधपुर वालों को, ये निश्चित है कि ये धरती राजपूतों के रक्त से स्नान करेगी।
0: यहाँ
1: से तुम्हारी
2: कुछ ना कुछ तो निर्णय लेना ही पड़ेगा आपको। निर्णय निर्णय तो राजकुमारी ने ले ही लिया होगा।
3: महारानी, महारानी, अनर्थ हो गया, महारानी अनर्थ हो गया।
0: क्या हुआ बताना, क्या हुआ
3: राजकुमारी, राजकुमारी
0: क्या हुआ, राजकुमारी
3: राजकुमारी ने

0: मामा करें कुछ तो करिए।
1: रोना बंद कीजिए रानी जी, आपकी बेटी है, मेरा की बेटी है, अपना बलिदान देकर राजपूतों के गौरव में इतिहास को गंगा की पवित्रता दी है।

अभी जाकर जयपुर और जयपुर नरेशों को सही ये कहिए कि हमारी बेटी के विवाह मंडप में तो हम समूह में से किसी को भी नहीं बुला सकते। अब किंतु हमारी बेटी के अंतिम संस्कार में ये दोनों ही आमंत्रित हैं। जाइए अब मेवाड़ की

0: अभी आप श्री कृष्ण कुमार टिक्कू का लिखा ये नाटक सुन रहे थे। इसके निर्देशक थे श्री मदन शर्मा। भाग लेने वाले कलाकार थे श्री दीपक जोशी, श्रीमती पूनम भू, श्री रमेश सनाथे, श्री अतुल्य कीर्ति व्यास, श्री राजेश चड्ढा, कुमारी करुणा कुमावत और श्रीमती ममता सुखवाल।
1: इसका प्रसारण
2: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 10:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम। सुनिए कार्यक्रम का पहला गीत। फिल्म का नाम है

फिल्म से बढ़कर कौन, इस फिल्म से अभी आपने सुना भूपेंद्र की आवाज में गीत, गीतकार जसविंदर रावल और संगीतकार राम लक्ष्मण। अब सुनिए फिल्म हम साया से मोहम्मद रफी को, बोल हैं शिवान रिजवी के और संगीत ओपी नैयर का।

इस फिल्म से अभी आपने सुना लता मंगेशकर को, मूल साहिर लुधियानवी के और संगीत रोशन का। अब सुनिए आर डी बर्मन की तर्ज पर गुलजार का ये गीत। फिल्म का नाम है इजाजत। इसे गाया है आशा भोंसले ने।

अंजोली। इस फिल्म से अभी आपने सुना मोहम्मद रफी और आशा भोंसले को। गीतकार आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का आखिरी गीत। फिल्म का नाम है जाग उठा इंसान। इसे गाया है लता मंगेशकर ने।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। रात्रि के 11 बज रहे हैं। अब श्रोता सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। गृह मंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठिए की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में आज 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
2: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने

0: क्षमा करे।
1: गृहमंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर आज श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है।
2: दो बार के मुख्यमंत्री और दो बार विपक्ष के स्थान पर काम कर चुके सिद्धरमैया ने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया। अहिंदा यानी अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदाय के नेता के तौर पर जाने वाले सिद्धरमैया ने कहा कि हाईकमांड के आदेश अनुसार उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की समाचार सुनने के बाद कई जगहों पर आज राज्य में विरोध प्रदर्शन हुआ। दूसरी तरफ डीके शिवकुमार के समर्थकों द्वारा खुशी मनाई गई। दोनों नेता दिल्ली की ओर निकले हैं, जहां वह हाईकमांड के साथ संसदीय नेता के चयन और मंत्रिमंडल की रचना पर चर्चा करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में वर्तमान विधायक अभिषेक देवराय को पार्टी की प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री देवराय राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति दी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ. माणिक साहा ने बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि श्री देवराय के गतिशील नेतृत्व और संगठनात्मक दूरदर्शिता से त्रिपुरा में भाजपा और मजबूत होगी। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे। महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। महान उर्दू शायर बशीर बद्र का आज मध्य प्रदेश के भोपाल में निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। उन्होंने दोपहर करीब 12 बजे अंतिम सांस ली। बशीर बद्र लंबे समय से स्मृति दोष से पीड़ित थे। साहित्य संगीत नाटक अकादमी में योगदान के लिए उन्हें 1999 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही 1999 में ही उन्हें काव्य संग्रह आस के लिए उर्दू साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। श्री मोदी ने कहा कि जनजातीय समुदाय के प्रति मंच का समर्पण वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान जनजातीय समुदाय के विकास और सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई। हांगकांग में आज से शुरू हुई 22वीं एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के पहले दिन भारत की युवा महिला धाविका निपम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीत लिया। निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में 11.62 सेकंड समय के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। निपम के नाम अंडर 20 महिला 100 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी दर्ज है। 4 दिवसीय यह चैंपियनशिप 31 मई को संपन्न होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।